अभी आप सुन रहे थे राग रंग में पंडित सी आर ब्यास को। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। सुनते हैं स्वर संहिता में सुगम संगीत अशोक खोसला की आवाज़ में।

अभी आप सुन रहे थे अशोक खोसला से स्वर सरिता। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। आइए चलते हैं दिल्ली के केंद्र, जहां से आप सुनेंगे समाचार प्रभात अब से कुछ ही पलों में।

0: अमरीका और ईरान होर्मूज जलडमरू मध्य पर जारी विवाद को सुलझाने के लिए आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता करेंगे और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर 1 जुलाई से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मंत्रालय के अनुसार पश्चिम एशिया संकट के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, लेकिन सरकार ने आम लोगों को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमत में बढ़ोतरी नहीं की। इससे खुदरा और थोक कीमतों में अंतर आ गया है। इसी वजह से 12 जून में अस्थायी प्रतिबंध लगाए गए थे। इसके तहत एक ग्राहक या वाहन को एक दिन में अधिकतम 200 लीटर डीजल देने की सीमा तय की गई थी। इसका उद्देश्य काला बाजारी और जमाखोरी रोकना तथा सभी उपभोक्ताओं को पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना था। मंत्रालय ने कहा कि अब देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सामान्य हो गई है, इसलिए जनहित में इन अस्थायी प्रतिबंधों को वापस लेने का फैसला लिया गया है। अमन की रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में UCC लागू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में घोषणा की कि विधेयक की मसौदा गुरुवार को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। गुजरात, उत्तराखंड और असम की तर्ज पर सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन देसाई के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि समिति विवाह, तलाक सहित कुल 9 विषय पर अध्ययन करेगी और 4 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया है कि अनुसूचित जनजातीय, आदिवासियों, कुर्मी और प्राचीन स्वदेशी समुदाय को इस कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: सरकार ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 2 महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में ये निर्णय लिए गए। एक रिपोर्ट।
3: इन फैसलों का उद्देश्य भारतीय सिनेमा को वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना और फिल्म निर्माण के लिए बेहतर माहौल तैयार करना है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय अध्ययन समूह का गठन किया है। ये समूह भारतीय सिनेमा के सामने मौजूद अवसरों और चुनौतियों का अध्ययन कर उद्योग को मजबूत बनाने के सुझाव देगा। मंत्रालय ने राज्यों के लिए आदर्श राज्य सिनेमा विनियम भी तैयार किए हैं और उन्हें अपनाने का अनुरोध किया है। सरकार का कहना है कि इससे देश में आधुनिक, मजबूत और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी फिल्म उद्योग के विकास को बढ़ावा मिलेगा। अमन यादव की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के आंध्र प्रदेश दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज विजयनगरम में स्थित केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के 1st दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति का कल अनंतपुरम में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के भी प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाणा का दौरा करेंगे और खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में शामिल होंगे। कृषि मंत्री किसानों से सीधे बातचीत करेंगे। श्री चौहान का वहां एक प्रदर्शनी में भी भाग लेने का कार्यक्रम है। इसके बाद कृषि मंत्री पूर्वोत्तर के 2 दिन के दौरे पर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांवों और बुनियादी ढांचे की क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। श्री चौहान कल अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई और जमीनी सर्वेक्षण करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी केंद्रीय सरकारी विभागों और संस्थानों को आज से आवारा कुत्तों के हमलों से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। सभी संबंधित विभागों से तय समय सीमा के भीतर दिशा निर्देश लागू करने को कहा गया है। यह आदेश पिछले वर्ष सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद जारी किया गया है। इसका उद्देश्य विशेष रूप से बच्चों और मरीजों के लिए सार्वजनिक स्थानों को अधिक सुरक्षित बनाना है। दिल्ली सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी है। इसके अंतर्गत 30 लाख रुपए तक की इलेक्ट्रिक कारों पर सड़क कर और पंजीकरण शुल्क नहीं लगेगा।

0: नीति के अनुसार पुराना वाहन स्क्रैप कर नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 1,00,000 रुपए प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये नीति 1 जुलाई से अगले 4 वर्षों में चरणबद्ध ढंग से लागू की जाएगी। इसका उद्देश्य 31 मार्च 2030 तक दिल्ली को प्रदूषण मुक्त और शून्य उत्सर्जन परिवहन वाला शहर बनाना है। उन्होंने कहा कि सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास पर 8,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी।
1: पूरी की पूरी पॉलिसी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर केंद्रित है। इस पूरी ईवी पॉलिसी के अंतर्गत हमारा 7,000 करोड़ का खर्च तो मात्र इन 4 सालों में होगा और इसके अलावा 8,000 करोड़ अन्य हम लोग इस ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने में और जो साल दर साल रोड टैक्सेस जो माफ होंगे उसमें हमने कैलकुलेट किया है, तो लगभग 15,000 करोड़ का लाभ दिल्ली की जनता को इस ईवी पॉलिसी के माध्यम से होने वाला है।
0: और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मतदाताओं को गणना प्रपत्र घर घर पहुंचाने का अभियान भी आज से शुरू हो रहा है। मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक हर घर जाकर प्रपत्र वितरित करेंगे और भरे हुए प्रपत्र भी प्राप्त करेंगे। उन्होंने बताया कि दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दर्ज कराई जा सकेंगी। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 36 नागरिकों की मौत और 163 लोगों के घायल होने की खबर है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान की यह कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। मंत्रालय ने कहा कि यह पाकिस्तान के गैर जिम्मेदाराना रवैये को दर्शाता है। भारत ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की है। भारत ने अफगानिस्तान की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भी अपना समर्थन दोहराया है। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा हाल में घुसपैठ कर शिविर स्थापित करने संबंधित खबरों का खंडन किया है। सेना ने कहा कि ऐसी खबरें तथ्यहीन और निराधार हैं। अमेरिका और ईरान के बीच होर्मूज जलडमरू मध्य को लेकर विवाद पर आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता होगी। ये बातचीत हाल के सैन्य तनाव और अस्थायी युद्ध विराम के बाद हो रही है। एक रिपोर्ट।
2: विश्व के लगभग 20% कच्चे तेल का परिवहन इसी जलमार्ग से होता है। हाल के दिनों में दोनों देशों के बीच मिसाइल हमलों के कारण होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही और व्यापार प्रभावित हुआ। हालांकि दोनों देशों ने कल अस्थायी युद्ध विराम पर सहमति जताई है। इस महीने हुए समझौता ज्ञापन की अलग अलग व्याख्या के कारण दोनों देशों के बीच फिर तनाव बढ़ गया था। दोनों देशों के बीच होने वाली इस वार्ता में सुरक्षित नौवहन व्यापार क्षेत्र में तनाव कम करने के उपायों पर चर्चा होने की संभावना है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: 3 जुलाई से शुरू हो रही पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर और पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। 57 दिन की इस यात्रा से पहले श्रद्धालुओं का पहला जत्था जम्मू पहुंचने लगा है। जम्मू में सीसीटीवी कैमरों और आधुनिक निगरानी प्रणाली को सक्रिय कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने तैयारियों का जायजा लेने के लिए एक मॉक ड्रिल भी आयोजित की है। सुरक्षा एजेंसियों ने श्रद्धालुओं से निर्धारित मार्ग का पालन करने और सुरक्षा बलों के निर्देशों का सहयोग करने की अपील की है। झारखंड में आज हूल दिवस मनाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये दिवस जनजातीय क्रांतिकारियों सिद्धो कान्हो चांद भैरव और फूलो झानो के बलिदान के स्मरण में मनाया जाता है।
3: झारखंड के साहिबगंज जिले के भोगनाडी में हूल दिवस के अवसर पर हजारों लोग संथाल हूल के अमर शहीदों सिद्धू कान्हू चांद भैरव फूलो और झानो को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। 30 जून 1855 को भोगनाडी से सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में अंग्रेजी शासन और महाजनी प्रथा के खिलाफ संथाल हूल का बिगुल फूका गया था। क्रांतिकारियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को कई मोर्चों पर कड़ी चुनौती दी और आंदोलन लगभग 1 वर्ष तक चला। इस संघर्ष के दौरान चांद और भैरव शहीद हो गए, जबकि बाद में सिद्धू और कान्हू को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर फांसी दे दी। झारखंड में हूल दिवस स्वाभिमान प्रतिरोध और जनजातीय अस्मिता का प्रमुख प्रतीक माना जाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और गृह मंत्री अमित शाह ने हूल दिवस के अवसर पर क्रांतिकारियों और संथाल विद्रोह के अमर वीरों तथा वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की है।

0: मौसम विभाग ने आज देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, बिहार, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ओडिशा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिकाल में भी कल तेज बारिश की संभावना है। दक्षिण पश्चिम मानसून के कल गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। जम्मू कश्मीर, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, मराठवाड़ा, आंध्र प्रदेश और लक्षद्वीप में बिजली कड़कने और आंधी आने का अनुमान है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में 5 बार की चैंपियन ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। अमेरिका के ह्यूस्टन में खेले गए मुकाबले में गैब्रियल मार्टिनेली ने अतिरिक्त समय में विजयी गोल दागा। अब अंतिम 16 में ब्राजील का सामना आइवरी कोस्ट या नॉर्वे से होगा। एक अन्य मुकाबले में पराग्वे ने जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
1: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से छपे प्रमुख समाचार पत्रों ने आज दिल्ली में 1 जुलाई से लागू होने वाली नई ईवी नीति को अपने मुख पृष्ठ पर जगह दी है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, दिल्ली की नई ईवी नीति जारी, खरीद पर बम्पर छूट मिलेगी। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, ईवी पॉलिसी, रोड टैक्स, रजिस्ट्रेशन जीरो। दैनिक भास्कर ने छापा है, 30 लाख रुपए तक की ई कार टैक्स फ्री, पुरानी कार स्क्रैप करने पर 1 लाख रुपए। दैनिक जागरण ने इसी खबर पर संपादकीय आलेख में लिखा है, सर्दियों के दिनों में दिल्ली सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में शामिल हो जाती है, ऐसे में आवश्यक था कि राजधानी में प्रभावी ईवी नीति हो ताकि इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को प्रोत्साहित किया जा सके। दिल्ली सरकार को ऐसे वाहन चार्जिंग प्वाइंट बनाने चाहिए जो वाहनों की बैटरी को तेजी से चार्ज करने में सक्षम हो। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 10वीं कक्षा के मौजूदा सत्र के विद्यार्थियों पर त्रिभाषा नीति लागू न करने का फैसला भी कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान के बोल हैं, 10वीं के मौजूदा सत्र पर त्रिभाषा नीति लागू नहीं होगी। पंजाब केसरी ने लिखा है, त्रिभाषा नीति पर छात्रों को बड़ी राहत। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में राजस्थान पत्रिका ने फैजाबाद बार एसोसिएशन का फैसला छापा है। पत्र लिखता है, वकील नहीं लड़ेंगे आरोपियों का केस, संत बोले आस्था पर आघात। वीर अर्जुन लिखता है, आरोपियों का केस लड़ने वाले वकीलों पर लगेगा 5 लाख का जुर्माना। 3 जुलाई से शुरू होने वाली पवित्र श्री अमरनाथ जी यात्रा पर भी समाचार पत्रों की नजर है। दैनिक ट्रिब्यून ने बाबा बर्फानी के प्रथम दर्शन को सचित्र प्रकाशित किया है। नवभारत टाइम्स ने भी पवित्र दर्शन का मनोरम चित्र मुखपृष्ठ पर छापा है। ओडिशा में भगवान जगन्नाथ मंदिर के सामने बड़ी संख्या में आए श्रद्धालुओं की तस्वीर भी अमर उजाला ने छापी है।
0: धन्यवाद सरफिरोजी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से पेट्रोल और डीजल की बिक्री और वितरण पर लगे अस्थायी प्रतिबंध हटाए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, राज्य में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा की। दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दी। 30 लाख रुपए तक की कारों को सड़क कर और पंजीकरण शुल्क से छूट दी जाएगी। अमेरिका और ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य पर जारी विवाद को सुलझाने के लिए आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता करेंगे। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Center to withdraw temporary restrictions on sale and distribution of petrol and diesel from the 1st of July. West Bengal government to implement uniform civil code in the state, says Chief Minister Shubhendu Adhikari. Information and Broadcasting Ministry announces major decisions to boost Indian film industry. Delhi government clears electric vehicle policy, cars under 30 lakh rupees to be exempted from road tax and registration fees. India strongly condemns Pakistan air strikes in residential areas of Afghanistan that killed 36 civilians and injured 163 others. US and Iran to hold talks in Qatar's capital Doha today to resolve their dispute over Strait of Hormuz. And in football, Brazil enter round of 16 at the FIFA World Cup after 2-1 victory over Japan in Houston, US. The government has decided to withdraw the temporary regulatory measures governing the sale and distribution of petrol and diesel. The Ministry of Petroleum and Natural Gas said that with effect from the 1st of July, that is tomorrow, the temporary measures will be lifted from motor spirit and high-speed diesel through retail outlets of public sector oil marketing companies. We have more from a correspondent.
3: According to the statement, during the period of disruptions arising from the West Asia crisis, the government continued to shield retail consumers from the sharp increase in the international fuel prices by maintaining stable retail prices of petrol and diesel. This led to a significant price difference between retail fuel prices and those applicable to bulk consumers. The ministry said that to address this situation, the temporary regulatory measures introduced on 12th of this month prescribed a temporary limit of 200 liters of high-speed diesel per consumer or vehicle per day at retail outlets and required industrial, institutional and commercial consumers. The measures were aimed at preventing black marketing, hoarding and diversion of fuel while ensuring uninterrupted availability of petrol and diesel to retail consumers. Following a review of the supply situation of petroleum products in the country, the government has concluded that the temporary regulatory measures are no longer required in the public interest. The temporary measures help ensure adequate availability of petrol and diesels across the country while safeguarding the interest of retail consumers. Their withdrawals reflects the improvement in the supply situation and the restoration of normal supply arrangements. Aditya Pratap Singh, Akashwani News, Delhi.
2: West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari has said that the Uniform Civil Code UCC will be implemented in the state. We have more from a correspondent.
4: Chief Minister Shubhendu Adhikari announced in the Assembly that a draft proposal of the bill will be presented at the scheduled State Cabinet meeting on Thursday. Following the models of the Gujarat, Uttarakhand and Assam, a committee has been formed under the leadership of retired Supreme Court Judge Justice Ranjana Desai. Chief Minister stated that the committee will conduct a study on the total of 9 subjects including marriage, divorce, adoption and submit its report within 4 weeks, based on which the state government will formulate the code. However, he clarified that scheduled tribes, Adivasis, Kurmis and ancient indigenous communities will be kept outside the purview of this law. Sandipan Dashgupta, Akashvani News, Kolkata.
2: Union Information and Broadcasting Ministry has announced 2 major decisions aimed at boosting the Indian film industry. The decisions were taken at a high-level review meeting chaired by Information and Broadcasting Minister Ashwani Vaishnav in New Delhi yesterday. We have a report.
5: The meeting focused on measures to enhance film production, improve distribution networks and integrate emerging technologies into the Indian cinema ecosystem. The ministry said the initiatives are intended to make Indian cinema more globally competitive while encouraging investment in cinema infrastructure, particularly in smaller towns and rural areas. A high-level study group under the chairmanship of Prasar Bharati Chairman Prasoon Joshi has been formed, which will study the opportunities and challenges before Indian cinema. It will suggest ways to strengthen the sector and recommend measures to make Indian films more competitive globally. The ministry has also prepared a model state cinema regulations for adoption by the states. The rules have been sent to all state governments with a request to adopt them. This move will help build a strong, modern and globally competitive Indian film industry. With Soumya and Aman, this is Chirag Jha from News Desk.
2: Delhi government has approved an ambitious electric vehicle EV policy. As per the new policy, EV cars priced up to 30 lakh rupees have been exempted from registration fees and road taxes. The new policy also offers a 1 lakh rupee incentive for purchasing new EVs while scrapping old vehicles, and mandates that only electric two-wheelers can be registered starting April 2028. Addressing a press conference in New Delhi, Delhi Chief Minister Rekha Gupta said that the government has devised a comprehensive plan to execute this in phases over the next 4 years.
6: सच में बहुत ही ऐतिहासिक दिन है.
7: दिस इज ट्रूली अ हिस्टोरिक डे. दिल्ली ईवी पॉलिसी विच वी एम टू इम्प्लीमेंट स्टार्टिंग जुलाई 1st 2026 फॉलोइंग द एलजी अप्रूवल द पॉलिसी विल रिमेन इन इफेक्ट अंटिल March 31st 2030. इट फोकसेस इंटायरली ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स स्पेशली जीरो इमिशन व्हीकल्स विद द अल्टीमेट गोल ऑफ ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्मिंग दिल्ली इंटू अ पॉल्यूशन फ्री सिटी फॉर द बेनिफिट ऑफ इट्स रेसिडेंट्स. वी हैव डिवाइड Our comprehensive plan to execute this

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और गृह मंत्री अमित शाह ने हुल दिवस पर क्रांतिकारी सिद्धो कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो और संथाल विद्रोह के अमर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। राज्यभर में आज कई जगह होंगे श्रद्धांजलि कार्यक्रम। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने झारखंड की 3245 किलोमीटर की सड़क परियोजनाओं की गुणवत्ता, रखरखाव और प्रगति की समीक्षा की। झारखंड में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान आज से हो रहा है शुरू। बीएलओ घर घर जाकर मतदाता सूची का करेंगे सत्यापन। मौसम विभाग ने झारखंड में अगले 4 दिनों तक मॉनसून के पूरी तरह सक्रिय रहने का जताया अनुमान। गरज चमक और वज्रपात की संभावना। तापमान में आएगी गिरावट। और चीन में आयोजित होने वाली वर्ल्ड स्कूल वॉलीबॉल चैंपियनशिप के लिए भारतीय अंडर 18 वॉलीबॉल टीम के असिस्टेंट कोच के रूप में दुमका के अमित कुमार का किया गया चयन। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में हर साल 30 जून को आदिवासी क्रांति के नायकों सिद्धो कान्हू, चांद भैरव और फूलो झानो के बलिदान को याद करने के लिए हुल दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और गृह मंत्री अमित शाह ने हुल दिवस के अवसर पर क्रांतिकारी सिद्धो कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो और संथाल विद्रोह के अमर वीरों तथा वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक रिपोर्ट।
1: झारखंड के साहिबगंज जिले के भोगनाडी में आज हर वर्ष की तरह हुल दिवस के अवसर पर हजारों लोग संथाल हुल के अमर शहीदों सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो और झानो को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। 30 जून 1855 को भोगनाडी से सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में अंग्रेजी शासन और महाजनी प्रथा के खिलाफ संथाल हुल का बिगुल फूका गया था, जिसे जनजातीय इतिहास के कई अध्येता भारत का पहला संगठित स्वतंत्रता संग्राम मानते हैं। इतिहासकारों के अनुसार इस आंदोलन में करीब 20,000 लोगों की सभा के बाद अंग्रेजी शासन के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष शुरू हुआ, जिसमें संथालों के साथ कई अन्य स्थानीय समुदायों ने भी भागीदारी निभाई। तीर धनुष और पारंपरिक हथियारों से लैस क्रांतिकारियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को कई मोर्चों पर कड़ी चुनौती दी। इस संघर्ष के दौरान चांद और भैरव शहीद हो गए, जबकि बाद में सिद्धू और कान्हू को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर फांसी दे दी। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में कल झारखंड में 3245 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की गुणवत्ता, रखरखाव और प्रगति की समीक्षा की। श्री गडकरी ने टिकाऊ और कुशल राजमार्ग अवसंरचना के विकास के लिए रखरखाव कार्यों के समय पर निष्पादन, उच्चतम गुणवत्ता मानकों का कड़ाई से पालन और आधुनिक निर्माण तकनीकों को अपनाने की जरूरत पर जोर दिया। झारखंड में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान SIR आज से शुरू हो रहा है। इस अभियान के तहत BLO घर घर जाकर मतदाताओं को गणना प्रपत्र देंगे और उनका सत्यापन करेंगे। यह अभियान 29 जुलाई तक चलेगा। इधर रामगढ़ जिले के उपायुक्त ऋतुराज ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की विस्तृत जानकारी दी।
1: झारखंड के
2: रामगढ़ जिला में जो हमारी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन 2026 की प्रक्रिया है, इसमें हाउस टू हाउस विजिट BLO के द्वारा किया जाएगा। हाउस टू हाउस विजिट जो होगी 30 जून 2026 से लेकर के 29 जुलाई 2026 तक, अर्थात एक माह तक किया जाएगा। इसमें हमारे BLO के द्वारा गणना पत्र का डिस्ट्रीब्यूशन सभी वोटर्स को किया जाएगा और उसके बारे में वोटर्स को जागरूक किया जाएगा।
0: झारखंड की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने VBG रामजी योजना में केंद्र और राज्य के बीच 60% और 40% की हिस्सेदारी के निर्णय पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन के दूसरे दिन कहा कि इससे झारखंड पर भारी आर्थिक बोझ बढ़ेगा। मंत्री ने केंद्र से महात्मा गांधी के नाम से एक नई जनहित की योजना शुरू करने की भी मांग की। कल्याण विभाग की ओर से कल रांची के 10 विद्यालयों के 693 छात्र छात्राओं को निःशुल्क साइकिल दी गई। मौके पर कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने कहा कि हर छात्र तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार X handle @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक

0: समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रदेश भाजपा के महामंत्री अमर कुमार बाउरी ने झामुमो की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 12 साल के कार्यकाल पर सवाल उठाने पर करारा पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि झामुमो और उसकी सहयोगी पार्टी कांग्रेस और राजद का राजनीतिक इतिहास घपले घोटालों से भरा है।
1: जमकर मुद्रा मोचन पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा आज जो ज्ञान की डींगे हांक रही है वो पूरी तरह से बेबुनियाद है। सीजीएल का पेपर लीक होता है, उत्पाद सिपाही का पेपर लीक होता है तो इनके मुंह में दही जम जाता है। उस पर कोई जांच न किसी प्रकार की कार्रवाई, उल्टे उस पर लिपा पोती है उसको बचाने का काम, और अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं।
0: राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने केंद्र सरकार से रांची में एम्स अस्पताल की स्थापना करने की मांग की। नई दिल्ली में कल केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद की बैठक में उन्होंने बताया कि झारखंड सरकार रिम्स 2 की स्थापना की दिशा में कार्य कर रही है। इसके लिए उन्होंने केंद्र से 2000 करोड़ रूपये का सहयोग मांगा। उन्होंने चतरा, गढ़वा, गोड्डा, गुमला, पाकुड़, रामगढ़, सिमडेगा और साहिबगंज में मेडिकल कॉलेज बनाने की मांग की। इससे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कई डिजिटल पहलों का शुभारंभ किया। पेश है एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 सालों में कई नई पहलें शुरू की गई हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया है और उन्हें देश में सस्ता और सुलभ बनाया है। इसमें 62 करोड़ लोग शामिल हैं और अब भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है।
0: झारखंड में दक्षिण पश्चिम मॉनसून सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश और वज्रपात की संभावना है। बारिश के कारण तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आ सकती है। दुमका जिले के रामगढ़ प्रखंड स्थित +2 उच्च विद्यालय के शारीरिक शिक्षा के शिक्षक अमित कुमार का चयन चीन में आयोजित होने वाली वर्ल्ड स्कूल वॉलीबॉल चैंपियनशिप के लिए भारतीय अंडर-18 वॉलीबॉल टीम के असिस्टेंट कोच के रूप में किया गया है। उनकी इस उपलब्धि पर झारखंड वॉलीबॉल संघ, झारखंड शिक्षा परियोजना और विभिन्न संगठनों ने उन्हें बधाई दी है। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित होने वाले सभी प्रमुख अखबारों ने राज्य के 1042 सहायक आचार्यों को नियुक्ति पत्र मिलने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। इसके अलावा हिंदुस्तान ने आज से झारखंड में SIR शुरू होने की खबर को पहले पेज पर प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने राज्य के सभी जिलों में भूमि सर्वे पूरा करने की समय सीमा तय किए जाने के हाईकोर्ट के निर्देश की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया। दैनिक भास्कर ने राज्य के नए सूचना आयुक्तों का कल लोक भवन में शपथ ग्रहण होने की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट का तुरंत सुनवाई से इनकार किए जाने की खबर को पहले पेज पर प्रमुखता दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और गृह मंत्री अमित शाह ने हुल दिवस पर क्रांतिकारी सिद्धो कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो और संथाल विद्रोह के अमर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। राज्यभर में आज कई जगह होंगे श्रद्धांजलि कार्यक्रम। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने झारखंड की 3245 किलोमीटर की सड़क परियोजनाओं की गुणवत्ता, रखरखाव और प्रगति की समीक्षा की। झारखंड में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान आज से शुरू हो रहा है। BLO घर घर जाकर मतदाता सूची का करेंगे सत्यापन। मौसम विभाग ने झारखंड में अगले 4 दिनों तक मॉनसून के पूरी तरह सक्रिय रहने का जताया अनुमान। गरज चमक और वज्रपात की संभावना, तापमान में आएगी गिरावट। और चीन में आयोजित होने वाली वर्ल्ड स्कूल वॉलीबॉल चैंपियनशिप के लिए भारतीय अंडर-18 वॉलीबॉल टीम के असिस्टेंट कोच के रूप में दुमका के अमित कुमार का किया गया चयन। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक

वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है। वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।

ये आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र है FM 103 MHz पर। आइए सुनते हैं गीत गुंजन। गीत गुंजन सुनने वाले तमाम श्रोताओं को पिंकी वर्मा की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं पिक्चर के गाने हम साथ साथ हैं के गानों से। तो आइए सुनते हैं फिल्म हम साथ साथ हैं का ये गाना।

अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद अजीज की आवाज़ में फिल्म रामतार का ये गाना। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं गीत गुंजन। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं फिल्म साजन का ये गाना।

0: और इसी गीत के साथ गीत गुंजन से हमें आज्ञा दीजिए, फिर मिलेंगे। नमस्कार। ये आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र है FM 103 में घर पर। आइए सुनते हैं जोहार पलामू।
1: जोहार पलामू।

जो आर पलामो सुनने वाले तमाम श्रोताओं को पिंकी वर्मा की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हम आज के सुविचार से। हमारे आज के सुविचार इस प्रकार से हैं,

कहते हैं हार मान लेना आसान है पर चलते रहना मुश्किल। जीत हमेशा उसी की होती है जो चलता रहता है। जी हाँ, इसी सुविचार के साथ हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं ये प्यारा सा गाना।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हमारा दैनिक कार्यक्रम जो हर पल वो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बातें करते हैं मौसम की। तो आज का अधिकतम तापमान है 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम है 27 डिग्री। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं प्यारा सा गाना।

अभी आप सुन रहे थे जोहार पलामू, खेल विज्ञान एवं स्वास्थ्य संबंधी जानकारी पर आधारित ये कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश।
1: और मैं हूँ आपका मित्र अजीत। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ, जिसे हमें भेजा है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने। लिखते हैं,
2: आंगन का पेड़ घर की शान, देता है छाया, सुख और सम्मान।
1: बहुत सुंदर था आपका सुविचार, बहुत ही शानदार। आप सबको हमारा बहुत बहुत आभार। आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है गांव खिंदासर, तहसील कोलायत, जिला बीकानेर, राजस्थान से कानाराम चौहान जी का।
2: संबलपुर कांकेर से फगुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
1: संजय मार्केंडे जी ने लिखा है, गुजरे सप्ताह हमने सुना दोस्त की पहचान, गौरा देवी और पहली उड़ान। ये भी जानिए मैं लाहौल स्पीति का शीत मरुस्थल। सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगे। सभी उमंग कार्यक्रम के परिवार को बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद और शुक्रिया अदा करते हैं हम।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे, हनुमान बोड़खे और उत्तम जमदाड़े।
1: और ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू।
2: धन्यवाद आप सबका संदेशों के लिए।
1: स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में। इस मनोरंजक ज्ञान श्रृंखला में हम लेकर आते हैं ढेर सारी जानकारियाँ,
2: इतिहास की, भूगोल की, साहित्य और विज्ञान के साथ साथ और भी अनेकानेक जानकारियाँ। तो अजीत जी, इस सप्ताह हम क्या चर्चा करने जा रहे हैं?
1: विमलेश जी, आज हम चर्चा करेंगे कुछ ऐसी चीजों की जिनका उपयोग हम अपने जीवन में तो करते हैं, लेकिन उनके बारे में जानते बहुत कम है।
2: ऐसी कौन सी चीजें हैं भला?
1: विमलेश जी, वो चीजें हैं हमारे खनिज पदार्थ।
2: जी,
1: जरा सोचिए तो, क्या उनके बिना हमारा जीवन आसानी से चल पाता?
2: जी सचमुच, कोयला, लोहा, तांबा जैसे पदार्थों के बिना तो सचमुच हमारा जीवन ही कठिन हो जाए। तो श्रोताओ, इस सप्ताह हम चर्चा करेंगे कुछ खनिज पदार्थों की। लेकिन अजीत जी, पहले ये तो जान लें कि खनिज पदार्थ किसे कहते हैं।
1: जी, ये तो हमें जानना ही चाहिए। देखिए, खनिज शब्द संस्कृत के खनि शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है धरती या धरती के भीतर का भंडार। इसी शब्द से खान या बोलचाल की भाषा में खदान निकला है।
2: जी श्रोताओ, खनिज को सरल शब्दों में यदि परिभाषित करें तो कहेंगे, प्राकृतिक रूप से पृथ्वी की सतह या अंदर से प्राप्त ऐसे पदार्थ जिनकी एक निश्चित रासायनिक संरचना और भौतिक गुण होते हैं, वे खनिज पदार्थ कहलाते हैं। इन्हें खोद कर निकालने की प्रक्रिया को खनन कहते हैं।
1: जी, तो विमलेश जी, ये तो हुई खनिज की बात। अब ये तो बताइए कि आज हम किस खनिज की बात करने जा रहे हैं?
2: अजीत जी, आज हम बात करेंगे कोयले की। ये बहुत जरूरी खनिजों में गिना जाता है। मानव सभ्यता के विकास में कोयले का बहुत महत्व रहा है। ये ऊर्जा का प्रमुख स्रोत रहा है। अनेक ताप संयंत्रों में बिजली उत्पादन के लिए इसका उपयोग होता रहा है। ये बहुत सारे उद्योगों का आधार है।
1: जी, हम इसे अर्थव्यवस्था का आधार भी कह सकते हैं। ये सब

0: ऊष्मा या गर्मी के रूप में मुक्त कर रहे होते हैं। तो अजीत जी, रोचक बात यह है कि कोयला मात्र एक खनिज नहीं है, लेकिन ये पृथ्वी के प्राचीन वन इतिहास का जीवित प्रमाण है।
1: जी विमलेश जी, बिल्कुल सही। इसीलिए तो हम कोयले को जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल कहते हैं, क्योंकि ये जीवित पेड़ पौधों के रासायनिक अवशेष हैं।
0: जी।
1: तो श्रोताओ, ये थी मनोरंजक वैज्ञानिक कथा कोयले की उत्पत्ति की। अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, कोयले को जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल क्यों कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: कोयले को जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल क्यों कहते हैं?
1: आप हमारे प्रश्न का उत्तर और अपने संदेश हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर भेज सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे ईमेल पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
0: आप सोशल मीडिया पर भी, यानी इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं।
1: तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो सुनते हैं सबसे पहला कार्यक्रम सीखो।
0: ये संगीत कार्यक्रम कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित है, जिसमें कवि संदेश देता है कि हमें प्रकृति से बहुत कुछ सीखना चाहिए।
1: तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ।
2: फूलों से नित हंसना सीखो,
3: फूलों से नित हंसना सीखो,
2: भौरों से नित गाना,
3: भौरों से नित गाना,
2: तरु की झुकी डालियों से नित,
3: तरु की झुकी डालियों से नित,
2: सीखो शीश झुकाना,
3: सीखो शीश झुकाना,
2: सीख हवा के झोंकों से लो,
3: सीख हवा के झोंकों से लो,
2: कोमल भाव बहाना,
3: कोमल भाव बहाना,
2: दूध तथा पानी से सीखो,
3: दूध तथा पानी से सीखो,
2: मिलना और मिलाना,
3: मिलना और मिलाना,
2: सूरज की किरणों से सीखो,
3: सूरज की
2: सूरज की किरणों से सीखो,
3: सूरज की किरणों से सीखो,
2: जगना और जगाना,
3: जगना और जगाना,
2: लता और पेड़ों से सीखो,
3: लता और पेड़ों से सीखो,
2: सबको गले लगाना,
3: सबको गले लगाना,
2: दीपक से सीखो जितना,
3: दीपक से सीखो जितना,
2: हो सके अंधेरा हरना,
3: हो सके अंधेरा हरना,
2: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
3: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
2: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
3: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
2: सच्ची सेवा करना,
3: सच्ची सेवा करना,
2: जलधारा से सीखो आगे,
3: जलधारा से सीखो आगे,
2: जलधारा से सीखो आगे,
3: जलधारा से सीखो आगे,
2: जीवन पथ में बढ़ना,
3: जीवन पथ में बढ़ना,
2: और धुएं से सीखो हरदम,
3: और धुएं से सीखो हरदम,
2: ऊंचे ही पर चढ़ना,
3: ऊंचे ही पर चढ़ना।
1: अभी आपने सुना इस कविता का आदर्श वाचन। आइए अब सुनते हैं इस कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

0: तो सुना बच्चों ये गीत कैसा लगा? अच्छा लगा ना? हमने सुना कि फूलों से, पक्षियों से, नदी से, दूध और पानी से और धुएं से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, है ना? सच तो ये है कि पूरी प्रकृति से हम कुछ ना कुछ जरूर सीख सकते हैं, बस जरूरत है ध्यान से देखने और सोचने की, है ना? इतना ही नहीं, हम अपने मित्रों से और बड़ों से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि पता है हम जिससे भी मिलते हैं ना, उसे कुछ ना कुछ ऐसा जरूर मालूम है जो शायद हमें मालूम नहीं है। तो बच्चों, अब आपके लिए एक काम, पूरी कविता एक बार फिर से पढ़िए और पता लगाइए कि जिनका वर्णन कविता में है उन्हें छोड़कर और कौन कौन सी चीजें प्रकृति में हैं जिनसे हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। तो जरा सोचिए और पता कीजिए और अपने बड़ों और मित्रों से साझा कीजिए। श्रोताओ, अभी सुना आपने ये खूबसूरत गीत सीखो, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम एकल खोर पपीहा।
1: ये कार्यक्रम एक जनजातीय लोक कथा पर आधारित है जिसके द्वारा मुख्य रूप से ये संदेश दिया गया है कि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, किसी कार्य को सिद्ध करने के लिए हमें सबका साथ चाहिए।
0: जी,
2: एक सुबह जंगली मुर्गा बोला, फिर चहके बाकी पंछी भी, धीरे धीरे करके फिर बोल उठे सारे पशु पक्षी। बहुत ही था न्यारा उस दिन का सवेरा, सारे जंगल वालों ने जब मिलकर ठाना था, अपने जंगल में खोदेंगे तालाब बड़ा सा।
3: खोदेंगे भाई खोदेंगे,
4: हम सब मिलकर एक बार, गर्मी में प्यासे न मरेंगे ना होंगे बेहाल।
3: खोदेंगे भाई खोदेंगे, हम सब मिलकर एक बार, गर्मी में प्यासे न मरेंगे ना होंगे बेहाल।
2: बारिश का मौसम था वैसे भी, भर सकता था ताल बड़ा सा भी।
3: खोदेंगे भाई खोदेंगे, हम सब मिलकर एक बार, गर्मी में प्यासे न मरेंगे ना होंगे बेहाल।
5: बस अब थोड़ी देर करें आराम, फिर निपटाए जाए बाकी काम।
6: राजन, अभी बहुत सा काम बचा है, जल्दी निपटिए जाए यही अच्छा।

0: है। बारिश जाने कब हो जाए खत्म, जल्द खोद ले ताल, काम करे खत्म।
1: ठीक कहा हाथी तुमने, तो यही करो यही करो।
2: खोदेंगे भाई खोदेंगे, हम सब मिलकर एक ताल, गर्मी में प्यासे न मरेंगे ना होंगे बेहाल।
3: सब पशु पक्षी आओ आओ आओ, गाओ गाओ गाओ।
4: कौवे भैया, हम भी तो गर्मी में इससे प्यास बुझाएंगे, यूं ही नहीं पिएंगे, हम भी हाथ बटाएंगे। क्यों, है ना कोयल बहन? कू कू।
5: हाँ चिड़िया बहन, मैं भी कुछ करना चाहती हूँ, ताल खोदना भी चाहती हूँ, पर काम क्या करूँ समझ नहीं आता। कू कू।
6: मेरा भी कुछ यही हाल है।
3: तो ये बात है, अच्छा बात मेरी तो मानो, करो वही जो करना जानो। काम काम काम।
6: क्या क्या क्या?
3: पूजा सब तक कोयल गाए,
4: नीचा
3: सब तक सांप सुनाए, सबका तुम दो जोश बढ़ाना, तुम सब में उत्साह जगाना। काम
1: हाँ हाँ, यही करो तुम दोनों।
5: जो आज्ञा महाराज।
4: दम लगा के कू।
6: आयशा
3: सभी जुटे हैं, सभी कर रहे हैं काम। अरे पपीहा कहाँ है? करता होगा पड़ा आराम, चलूं उसे भी ले आऊं मैं। ताल खोदना बहुत जरूरी, चलकर उसको समझाऊं मैं। काम काम काम काम काम काम काम। लो ये रहा पपीहा चुप्पा, बैठा गाल फुला कर कुप्पा। काम काम काम। अरे पपीहे, ऐसे क्यों बैठा है भैये? सारा जंगल झूम रहा है, अरे तू कैसा दुख मना रहा है? काम काम काम।
6: तंग मत कर तू मुझको कौवे, जा जा जा मुझसे बतियाने से पहले, अरे तू मुंह तो धोकर आ।
3: काँ, काँ, काँ। मुंह भी धोकर आऊंगा मैं, पानी भी पीऊंगा जी भर, सबके संग मिलता लखोदने, मैं भी मदद करूंगा डट कर। अरे पपी है, अरे पपी है, तुम भी चलो कुछ मदद करो।
6: ताल खोदने में, इस जंगल में खुदेगा तालाब, अरे वाह जनाब। ताल के अंदर मिट्टी होगी, पानी भी गंदा ही होगा, छी छी कौन पिएगा उसको? अरे काले कौवे मुझको बख्शो।
3: का का का।
7: कौवा मदद मांगने आया, पपीहे ने डांट कर उसे भगाया। रिमछिम रिमछिम बरखा आई, पपीहे ने झूम कर गाया।

0: पानी पपीहा ना पिए दूजा पानी, हाँ हाँ पपीहा ना पिए दूजा पानी, पपीहा ना पिए दूजा पानी।
1: काँ, काँ, काँ। अरे इसने तो बस रट ही पकड़ ली।
2: भौ भौ भौ, अरे ये कौवे का मजाक उड़ा रहा है।
1: अरे
2: अरे ये तो इस तरह बोलता ही रहेगा। भौ भौ, कोई इसे कुछ कहता क्यों नहीं।
1: काँ, काँ, काँ। कुत्ते देख नहीं रहे, शेर राजा भी तालाब खोद रहे हैं। अरे कुछ कहना होगा तो वो ही कहेंगे। काँ, काँ। शेर महाराज, अब बहुत हो गया ये सब, आप ही इसे कुछ क्यों नहीं कहते।
3: मैं भी पपीहे की बात सुनकर थक गया हूँ। पपीहे सुन, पानी नहीं पिएगा तू इस ताल का, सबकी मेहनत से खुद कर जो बना, अभी तू इस ताल में भरने वाले पानी को छू तक सकेगा नहीं कभी।
2: इसकी यही सजा हो, इसको यही दंड दो।
4: अब गर्मी का मौसम आ गया था, नदी नाले सब सूखने लगे, भयंकर लू चलने लगी, जंगल में कहीं भी पानी नहीं था सिवाय इस तालाब के। सारे जंगलों के पशु पक्षी अपनी प्यास बुझाने इस तालाब पर आने लगे।
1: काँ, काँ। अरे वो देखो, वो दूर के किसी जंगल से नील गाय आ रही है। काँ।
5: हाँ, और किसी जंगल में पानी नहीं है ना, सारे जानवर यहीं आ रहे हैं। भयानक गर्मी है ना
6: भाई। मैं तो ठहरा कछुआ, दिन रात इसी में पड़ा रहता हूँ ना, इसलिए सबकी बातें सुनता रहता हूँ। कोयल बहन ठीक कह रही है, सब बातें करते हैं और बताते हैं कि पानी कहीं भी नहीं है।
1: अरे कछुए भैया, दूसरे जंगलों के पशु पक्षियों को भी अपने यहाँ तालाब खोदने चाहिए। हाँ
6: हाँ, कल ही किसी जंगल का राजा शेर अपने लूमड़ मंत्री से कह रहा था कि हम भी मिलजुल कर अपने जंगल में तालाब खोदेंगे।
5: क्यों नहीं, मिलजुल कर काम करेंगे तो खोद लेंगे ऐसा तालाब।
1: खाओ, खाओ, खाओ।
5: तुम हंस क्यों रहे हो कौवे, क्या मैंने गलत कहा?
1: अरे नहीं नहीं कोयल, मैं तो ये सोच कर हंस रहा था कि कहीं उनके जंगल में भी पपीहे जैसा कोई हुआ तो क्या होगा। अरे प्यास से मर जाएंगे मगर हाथ नहीं हिलाएंगे।
5: बाप रे, मुझे तो उसका नाम लेते ही उसकी शक्ल नजर आ जाती है। वैसे वो क्या करता है आजकल, इतनी गर्मी में कैसे काम चलता है उसका?
6: हाँ, मैं भी हैरान हूँ। कभी कभी दूर से उसकी आवाज तो आती है रोने जैसे गाने की।
1: काँ, काँ। हाँ, मैंने तो ये भी सुना है कि जिधर से बरसात का आखिरी बादल गया था वो उसी ओर मुंह उठाए ताकता रहता है।

0: सुनो सुनो, दूर से उसकी दर्द भरी आवाज कैसी लग रही है।
1: और इसका जिम्मेदार और कोई नहीं, वो खुद ही है।
2: अच्छा अच्छा, हम पपी हैं के पास जा रहे हैं। कछुए भाई आकर बताएंगे तुम्हें कि वो क्या कह रहा था। आओ कोयल, चलो चले
0: चलो।
2: आओ, कोयल रानी चुपचाप वो सामने वाली डाल पर बैठकर सुनते हैं कि वो क्या कह रहा है।
0: हाँ, चलो।
3: पिए दूजा पानी कब आएगी।
4: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। आइए चलते हैं दिल्ली के केंद्र, जहां से आप सुनेंगे हिंदी में समाचार अब से कुछ ही पलों में।

0: सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पेट्रोल पंप पर 1 जुलाई से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मंत्रालय के अनुसार पश्चिम एशिया संकट के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, लेकिन सरकार ने आम लोगों को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमत में बढ़ोतरी नहीं की। इससे खुदरा और थोक कीमतों में अंतर आ गया है। इसी वजह से 12 जून में अस्थायी प्रतिबंध लगाए गए थे। इसके तहत एक ग्राहक या वाहन को एक दिन में अधिकतम 200 लीटर डीजल देने की सीमा तय की गई थी। इसका उद्देश्य काला बाजारी और जमाखोरी रोकना तथा सभी उपभोक्ताओं को पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना था। मंत्रालय ने कहा कि अब देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सामान्य हो गई है, इसलिए जनहित में इन अस्थायी प्रतिबंधों को वापस लेने का फैसला लिया गया है। अमन की रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
0: सरकार ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 2 महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में ये निर्णय लिए गए। इन फैसलों का उद्देश्य भारतीय सिनेमा को वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना और फिल्म निर्माण के लिए बेहतर माहौल तैयार करना है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय

0: जाएगा। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से दो दिन के आंध्र प्रदेश दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज विजयनगरम में स्थित केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति का कल अनंतपुरम में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के भी प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है। दिल्ली सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी है। इसके अंतर्गत 30 लाख रुपए तक की इलेक्ट्रिक कार पर सड़क कर और पंजीकरण शुल्क नहीं लगेगा। नीति के अनुसार पुराना वाहन स्क्रैप कर नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये नीति 1 जुलाई से अगले 4 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएगी। इसका उद्देश्य 31 मार्च 2030 तक दिल्ली को प्रदूषण मुक्त और शून्य उत्सर्जन परिवहन वाला शहर बनाना है। उन्होंने कहा कि सरकार इलेक्ट्रिक वाहन के विकास पर 8000 करोड़ रुपए खर्च करेगी।
1: पूरी की पूरी पॉलिसी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर केंद्रित है। इस पूरी ईवी पॉलिसी के अंतर्गत हमारा 7000 करोड़ का खर्च तो मात्र इन 4 सालों में होगा और इसके अलावा 8000 करोड़ अन्य हम लोग इस ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने में और जो साल दर साल रोड टैक्सेस जो माफ होंगे उसमें हमने कैलकुलेट किया है, तो लगभग 15000 करोड़ का लाभ दिल्ली की जनता को इस ईवी पॉलिसी के माध्यम से होने वाला है।
0: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मतदाताओं को गणना प्रपत्र घर घर पहुंचाने का अभियान भी आज से शुरू हो रहा है। मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक हर घर जाकर प्रपत्र वितरित करेंगे और भरे हुए प्रपत्र भी प्राप्त करेंगे। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाके में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान की ये कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। फुटबॉल में फीफा विश्व कप 2026 के राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में मोरक्को ने नीदरलैंड्स को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराया। 2 घंटे तक चले रोमांचक मुकाबले में दोनों टीमें 1-1 से ड्रॉ पर थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by V.C. Pramod. The government has decided to withdraw the temporary regulatory measures governing the sale and distribution of petrol and diesel. The Ministry of Petroleum and Natural Gas said that with effect from the 1st of July 2026, the temporary measures will be lifted from motor spirit and high-speed diesel through retail outlets of public sector oil marketing companies. West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari has said that the Uniform Civil Code, UCC, will be implemented in the state. The Chief Minister announced in the Assembly that a draft proposal of the bill will be presented at the State Cabinet meeting on July 2nd. Following the models of Gujarat, Uttarakhand and Assam, a committee has been formed under the leadership of retired Supreme Court Judge Justice Ranjana Desai. Chief Minister stated that the committee will conduct a study on a total of 9 subjects including marriage, divorce and adoption and submit its report within 4 weeks based on which the state government will formulate the code. Lok Sabha Speaker Om Birla has paid tribute to the heroes of the Santhal Hul on the occasion of Hul Day. In a social media post, Mr. Birla remembered the immortal martyrs who made the supreme sacrifice for India's independence, tribal identity and social justice. He also paid homage to thousands of brave tribal men and women who, under the leadership of Sidho and Kanhu, launched the historic Santhal Hul against colonial rule, exploitation and injustice. Lok Sabha Speaker Om Birla has extended greetings to all elected representatives on International Day of Parliamentarism and to democracy across the world. In a social media post, Mr. Birla said that Parliament is the supreme expression of the people's aspirations, rights and trust, where ideas are churned, policies

दोस्तों आदाब, नमस्कार एंड शास्त्रीय काल। हर दिन की अपनी एक रफ्तार होती है। कोई घर से निकलने की तैयारी में है तो कोई दफ्तर पहुंच चुका है, कोई सफर में है तो कोई अपने काम के बीच रेडियो की आवाज पर जरा सा ठहर गया है। और अगर आप भी उन श्रोताओं में हैं जिन्होंने इस पल के लिए कुछ मिनट संभाल कर रखे हैं तो आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों मैं हूं दुर्गेश सारस्वत और अगले एक घंटे तक हम मिलकर सजाने वाले हैं ऐसी महफिल जिसकी मेजबानी करूंगी मैं, लेकिन रंग भरेंगे आप, क्योंकि यहाँ गीत हम नहीं चुनते। यहाँ हर दिन आपके भरोसे, आपकी पसंद और आपकी फरमाइश के साथ हमारे स्टूडियो तक पहुंचती है। तो देखते हैं आइए किस शहर से पहली दस्तक, किस श्रोता ने भेजा है पहला संदेश और कौन सा गीत बनने जा रहा है आज की महफिल की शुरुआत। दोस्तों पहला संदेश हमें आया है नवीन सक्सेना जी का, दिल्ली के आरकेपुरम से। तो आइए सुनते हैं इनकी ही पसंद का ये पहला गीत। पेश है आज की पहली फरमाइश।

0: तुम्हारा कैर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस।

0: बस समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: दोस्तों कितना खूबसूरत गीत था जो हमने पहले बजाया, और सच पूछिए तो अगर शुरुआत ऐसी हो तो यकीन मानिए सफर और भी दिलचस्प हो जाता है। वैसे एक बात पूछूं, क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ गीतों का कोई मौसम नहीं होता, उन्हें सुनने के लिए बस मन का तैयार होना काफी होता है। और शायद यही वजह है कि बरसों पुराने गीत भी आज नए लगते हैं, और नए गीत कभी कभी बरसों का साथ दे जाते हैं। तो बस इसी अपनेपन के साथ चलिए पढ़ते हैं अपना अगला संदेश जो हमें भेजा है भानु प्रकाश, गीतिका खोरवाल, कमला रानी, बोधराज खोरवाल, उत्तम नगर, दिल्ली से। इन्होंने फरमाइश की है थ्री इडियट फिल्म की और बोल हैं जुबी डुबी। चलिए सुनते हैं इन्हीं की पसंद का ये प्यारा सा गीत।

जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आजकल हर किसी के हाथ में मोबाइल है, हर प्लेटफॉर्म पर संगीत मौजूद है, लेकिन रेडियो की बात ना फिर भी अलग है। यहाँ सिर्फ गीत नहीं मिलते बल्कि एक साथ उन्हें सुनने का अपनापन मिलता है, और यही वजह है कि बरसों बाद भी रेडियो की आवाज लोगों के दिलों में उसी गर्मजोशी के साथ बसती है। खैर, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले संदेश की तरफ। ये संदेश हमें आया है इंदिरा नगर भवरपुर से। राधेश्याम देवांगन, चंपा देवांगन, राजू नेहा देवांगन, इन्होंने फिल्म अनाड़ी फिल्म के क्या मौसम आया है गीत की फरमाइश की है। श्रोता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें संदेश भेजने के लिए। हम कोशिश करेंगे आपके गीत को अपने कार्यक्रम में शामिल करने की। अगला संदेश हमें भेजा है सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपक मल्होत्रा, गावाया मल्होत्रा, भाऊ सुच्चा सिंह पाठक, इन्होंने भी हमें किसी भी फिल्म में शामिल करने, किसी भी गीत के साथ शामिल करने की फरमाइश की है। भोपालगढ़ राजस्थान से धमेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा, पूजा परिहार जी भी हमें संदेश भेज रहे हैं। इसके अलावा टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा और स्वीटी छाबड़ा जी ने भी हमें संदेश भेजा है। दोस्तों, आपके संदेश हमारे पास आते जा रहे हैं और हम उन्हें अपने कार्यक्रम में शामिल करने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं, तो आप संदेश भेजते रहिए, आपके संदेश को हम अपने कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे।

भाई हमारे श्रोताओं ने शशि कपूर और मुमताज का तो जिक्र किया, चोर मचाए शोर का नाम भी बता दिया, लेकिन गीत संगीत नहीं बताया। चलिए हम बता देते हैं, गीत संगीत रविंद्र जैन का था। और एक श्रोता ने बताया है कि चेन्नई के मरीना बीच की वे यादें केवल एक शहर की याद नहीं बल्कि परिवार के साथ बिताए गए उन अनमोल पलों की धरोहर हैं जिन्हें याद करके आज भी मन मुस्कुरा उठता है। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि एक बार गोवा गए थे तो उनका फोन जो था पानी में गिर गया और उसके बाद सैंड में दब गया, ढूंढने पर भी नहीं मिला, इनका ट्रिप खराब हो गया। वो वैसे बहुत एहतियात के साथ इस दौरान रहना पड़ता है, समुंदर कई बार आपके साथ अटखेलियां करते करते कुछ ऐसा कर जाता है कि आपने उम्मीद भी नहीं की होती है। एक और श्रोता ने बताया कि भोपाल में आज सुबह से ही बादल और हल्की बारिश का सिलसिला चल रहा है, मौसम बहुत सुहाना है, कभी बरसात के मौसम में आप यहाँ आए तो आपको बहुत मजा आ जाएगा। क्या बात है, हम दुआ करेंगे कि हम जरूर आए। और एक और श्रोता बता रहे हैं कि सूरत में बारिश हो गई, कल रात 10:30 बजे के बाद शुरू हुई, सुबह 10 बजे तक जारी थी, लेकिन मैं राजस्थान में हूं, अभी जमकर बारिश नहीं हुई। एक और श्रोता ने अंडमान निकोबार जाते हुए बे ऑफ बंगाल समंदर हवाई जहाज से 2.5 घंटे का सफर पूरा किया, ये बताया है, नीचे देखो तो नीला समंदर था, मन में डर लग रहा था लेकिन थ्रिल भी लग रहा था। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि आप लोग मुंबई में पानी की बारिश से भीग रहे हैं, सुनकर ही बहुत अच्छा लग रहा है। हम यहाँ बनारस में भी पानी से भीग रहे हैं लेकिन सेल्फ सर्विस पसीने से, दुआ कीजिए। जी बिल्कुल, हम तो हाथ जोड़कर दुआ कर रहे हैं कि जल्दी से ये बादल पहुंचे। मेघदूतों को के बारे में आपने सुना है ना, हमने मेघदूत से कह दिया है कि जल्द से जल्द हमारे सभी साथियों तक पहुंचे। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और गोवा के समुद्र तटों को छोड़कर शेष सभी समुद्र तटों पर हो आए हैं, यहाँ तक कि गंगा सागर भी हो आए हैं, क्या बात है। और एक और श्रोता बता रहे हैं कि अभी इन्होंने वृंदावन की यात्रा की और यमुना की सैर की, सागर के साथ पूरा भारत देखा, दादर की चौपाटी याद आती है। अच्छा, वैसे समुद्र जो है वो कई जगह बड़ा रिझाता है और कई जगह चेतावनी भी देता है। एक और श्रोता कह रहे हैं कि रामेश्वरम के धनुषकोडी और कन्याकुमारी में स्वामी विवेकानंद स्मारक पर तेज हवाओं का सामना करना पड़ा था। और एक और श्रोता ने बताया कि हमारे शहर कटक से पूरी नजदीक होने के कारण अक्सर जब मूड किया चल दिए समंदर की सैर को, क्या बात है। और अब अगला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं, इस गीत को सुनिए और हमें ये बताइए कि ये किस नायिका पर फिल्माया गया है।

वासना फिल्म का एक गाना आपने सुना, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर का गाया हुआ। साहिल लुधियानवी के बोल थे और चित्रगुप्त का संगीत था। और अब आज के सदाबहार नगमे कार्यक्रम की आखिरी प्रस्तुति जब जब फूल खिले फिल्म से। मोहम्मद रफी और नंदा की आवाज़ें हैं, आनंद बख्शी का लिखा गीत, कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं समीर बाखला। राज्य में आज से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR अभियान का आगाज हो गया है। निर्वाचन आयोग के आला अधिकारी खुद फील्ड में उतरकर इस अभियान की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने खूंटी जिले के तुरपा प्रखंड का दौरा किया, जहां उन्होंने कई मतदान केंद्रों पर BLO और बूथ लेवल एजेंटों के साथ बैठक की। उन्होंने मतदाता सूची को त्रुटिहीन बनाने के लिए आयोग की गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया। उधर लोहरदगा जिले में इस अभियान का जायजा लेने आज खुद जिले के उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी संदीप कुमार मीना मतदान केंद्रों पर पहुंचे। उन्होंने बंगला रोड स्थित आयशा कच्छी उर्दू बालिका विद्यालय के विभिन्न बूथों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बूथ लेवल अधिकारियों यानी BLO को गणना प्रपत्रों का जल्द वितरण करने और समय सीमा के भीतर काम पूरा करने का सख्त निर्देश दिया। उपायुक्त ने राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंटों से भी अपील की कि वे आम जनता को इस अभियान के प्रति जागरूक करें।
1: 7 अक्टूबर को फाइनल जो वोटर लिस्ट का पब्लिकेशन होना है, तब तक ये कार्यक्रम चलेगा। अभी हम लोग जो 30 जून से लेकर के 29 जुलाई हमारे सारे BLO जो है एनुमरेशन फॉर्म लेकर के घर घर जाएंगे, और घर घर जाने के बाद जितने भी हमारे मतदाता हैं वो हस्ताक्षर करके वापस करेंगे, और जिनका एनुमरेशन फॉर्म लौटेगा उन्हीं का फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट जो 5 अगस्त को प्रकाशित होगी।
0: भाजपा के वरिष्ठ नेता अश्विनी कुमार चौबे ने रांची में प्रेस वार्ता के दौरान 11 अक्टूबर को पटना में जयप्रकाश नारायण जयंती मनाने का आह्वान किया। उन्होंने झारखंड सरकार पर विकास कार्य रोकने का आरोप लगाया और कांग्रेस को संविधान का हत्यारा बताया।
2: अब यहाँ का पहाड़, यहाँ का पत्थर, यहाँ का गिट्टी और यहाँ के लोगों को 300, उसके अलावा GST वाला बालू का टेंडर नहीं हो रहा। ये विकास अवरुद्ध है, सड़कें टूटी फूटी, बीच में थोड़े बहुत रिपेयरिंग हुए हैं, नहीं तो कोई अच्छी सड़क में आज विकास के लिए पैसे नहीं है। अब आप कटोरा लेकर के भीख मांग रहे हो और यहाँ घोषणा कर दिया कि हम इतना रुपया, ये जो जनता को खरीदने की बात जहाँ जहाँ भी होती है, राजनीति इस रूप में नहीं होनी चाहिए।
0: राज्य के नवनियुक्त सूचना आयुक्तों का शपथ ग्रहण समारोह कल सुबह 11:30 लोकभवन में आयोजित किया जाएगा। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार चारों नवनियुक्त सूचना आयुक्तों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। इस समारोह में राज्य के कई वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और गणमान्य लोग भी मौजूद रहेंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में आज हुल दिवस शौर्य और गौरव के साथ मनाया जा रहा है। संताल विद्रोह के अमर शहीदों को नमन करने के लिए राज्य भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने लोकभवन में हुल क्रांति के महानायक सिद्धो कान्हू के चित्र पर माल्यार्पण कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। दूसरी ओर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी सिद्धो कान्हू, चांद भैरव और फूलो झानो सहित तमाम वीर शहीदों को नमन किया। उधर उपराजधानी दुमका में संताल हुल दिवस के अवसर पर पोखरा चौक स्थित सिद्धो कान्हू और फूलो झानो की प्रतिमाओं पर जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने माल्यार्पण कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। भाजपा नेता सीता सोरेन ने इस अवसर पर सरकार की विकास नीतियों पर सवाल उठाए, जबकि विधायक बसंत सोरेन ने जल जंगल जमीन की रक्षा का संकल्प दोहराया।
3: मैं इतना ही कहूंगा कि आज के दिन को लोग जरूर याद करें, जरूर मनाएं, और उनके द्वारा जो कार्य किए गए हैं उन चीजों को याद करते हुए, उन अनुसरण करते हुए अपने जीवन को प्रेरणा के तौर पर एक उनके द्वारा कार्य जो उन्होंने किए हैं उसको अपने जीवन में लाने का प्रयास करें।
0: रांची के गढ़खंडा में खेत बचाओ अभियान के तहत एक किसान जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें शामिल पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किसानों से वैज्ञानिक और जलवायु अनुकूल खेती अपनाने का आह्वान किया। इस मौके पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा 500 से अधिक जनजातीय किसानों के बीच उन्नत बीज और कृषि किट बांटे गए। जामताड़ा के दुलाडीह स्थित प्रखंड रिसोर्स सेंटर में आज विशेष विकलांगता जांच शिविर का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकार की इस पहल पर सचिव पवन कुमार ने कहा कि सभी दिव्यांग बच्चों का पंजीकरण कर उन्हें जरूरी उपकरण और चिकित्सा सुविधाएं दी जाएंगी। शिविर में विकलांगता प्रमाण पत्र भी बांटे गए। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4:00 प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: सखी सहेली
1: सभी सखी सहेलियों और सखाओं को राजुल का नमस्कार और साथ में है सोनाली, आपको भी नमस्कार।
2: राजुल जी आपको और सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार। क्या हाल चाल है राजुल जी?
1: बस बढ़िया है, आप सुनाइए कैसे हैं?
2: मैं भी बहुत मजे में हूँ। और ये जो बारिश है ना,
1: हाँ,
2: ये किसी छोटे नटखट बच्चे की तरह हो गई है, बीच में से झमाझम बरस जाती है और फिर चुपचाप से छुप जाती है, तो इतनी ज्यादा गर्मी बढ़ जाती है तो हम फिर परेशान हो जाते हैं, और जब हम परेशान होते हैं तो फिर से झमाझम बारिश हो जाती है।
1: तो ये कहो ना कि दरअसल ये जो बारिश है वो आपको परेशान नहीं देख सकती, बस जैसे ही परेशान देखती है कि अरे सोनाली परेशान हो रही, तुरंत आ जाती है। वैसे एक बात बताएं कि हमारे वो मित्र जो कि हमसे दूर हैं, जहाँ पे अभी बारिश नहीं शुरू हुई है, उनके लिए ये चीज बड़ी ही सुन के उनको बहुत वो होता है कि यहाँ तो बहुत तेज गर्मी पड़ रही है और बारिश तो हो नहीं रही है, तो उनको ये बात सुन के बड़ा ही अजीब सा लगता है। लेकिन भाई जहाँ बारिश हो रही है और जहाँ बारिश नहीं हो रही है, वहां पर भी बारिश शुरू हो जाए हम तो यही कहेंगे,
3: बस इंतजार करना जरूरी है क्योंकि इंतजार का फल मीठा होता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मीठा होता है। और इसके साथ ही साथ एक बात ये है कि आज जो हम लोग बातें करने वाले हैं ना, उसमें जो बातें हैं वो बिल्कुल रिमझिम की तरह बरसती हुई एकदम शांत कर देने वाली बातें हैं। जैसे कि हम आज बात करेंगे बुजुर्गों के अकेलेपन के बारे में।
3: अकेलापन जो है ना, ये एक ऐसी अवस्था है जो बहुत परेशान कर देती है, पर जो घर वाले हैं उनकी थोड़ी जिम्मेदारी है कि उनके जीवन में सुकून के पल आए, तो उनसे मिलजुल करना बहुत जरूरी है, उन्हें अपने साथ शामिल करना बहुत जरूरी है। तो बुजुर्गों का अकेलापन ये एक विषय है। साथ ही जैसे मैंने बच्चों का जिक्र किया, तो बातें हल्की फुल्की, तो इसमें छोटे बच्चों की शरारतें, तो छोटे बच्चे जो इतने शरारती होते हैं, तो बहुत सारे हमारे श्रोताओं ने इस विषय पर कमेंट्स लिखे भी हैं, पर उन्होंने आमतौर पर बच्चे शरारती होते हैं इस बारे में लिखा है, पर आपके घर में भी अगर शरारती बच्चे हैं तो उन्होंने क्या शरारती की है? कभी कभी ऐसा था ना राजुल जी कि उन्होंने किसी कुर्सी में है ना अपना सिर फंसा लिया है,
1: हाँ।
3: या फिर उन्होंने जो सीढ़ी के बगल में जो ग्रिल

0: है, सिक्का
1: हाँ
0: निगल लेते हैं। तो इस तरह की शरारतें आपके घर में क्या हुई है वो हमें लिखकर भेजिए। साथ ही उद्यमी महिला के बारे में हम जानकारी देते हैं हर मंगलवार को, तो आज हमने चुना है अदिति गुप्ता को। और साथ ही मुहावरों की दुनिया, इसमें पानी पानी होना
1: ऊपर से पानी पानी हो रहा है आसमान, और हम पानी पानी होने की बात करेंगे जब स्थितियां ऐसी हो जाती हैं। और आज हम छोटे बच्चों की शरारतों के बारे में भी बात कर रहे हैं, तो मतलब कई बार स्थितियां ऐसी भी हो जाती हैं कि उनकी शरारतों के सामने वो कुछ ऐसी बातें कह देते हैं कि हम पानी पानी हो जाते हैं,
0: माता पिता पानी पानी हो जाते, यानी यूं कह लीजिए राजुल जी कि वो हमारी पोल खोल देते हैं,
1: पोल खोल देते हैं। सही बात है। वैसे ये सब जो बातें होती है ना, इनके बीच में अगर थोड़ा थोड़ा गीत भी चलता रहे
0: तो मजा आ जाता है,
1: मजा आ जाता है।
0: सुनते हैं गीत।
2: अरे अरे ए ए ए

0: भाई सोनाली अपनी सवारी तो चल दी है और चलते चलते पहुंच गई है वहां। हम उद्धरकंड
1: पहुंच गए। तो झारखंड से है अदिति गुप्ता, जो भारत की उन प्रेरणादायक महिलाओं में से एक है जिन्होंने माहवारी से जुड़ी हुई झिझक और गलत धारणाओं को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। इन्हें मेंस्ट्रुअल पीरियड्स कहते हैं, माहवारी कहते हैं, मासिक धर्म कहते हैं। इस बारे में लोग खुलकर नहीं बात करते,
0: टैबू है ये एक, और इस बारे में ज्यादातर लोग खामोश रहना। एक जमाना था जब नहीं बताया जाता था, कहते भी नहीं थे।

0: सतर्कताएं हैं, उन्हें इस्तेमाल में लाने की चीज है, ये बताने वाली हैं अदिति गुप्ता। बाकी
1: महिलाओं को यानी बच्चियों को ये हम उस बारे में डरा देते हैं या कुछ बुरा बुरा कह देते हैं, बल्कि उन्हें इस बारे में बताना चाहिए कि जब पीरियड्स आते हैं तभी कोई महिला माँ बन सकती है। तो ये प्रकृति का दिया हुआ उपहार है, बल्कि हम उसे कहते हैं अभिशाप समझ बैठते हैं कि अरे ये क्या हमारे नसीब में है, पर उसे बहुत अच्छे से बहुत प्यारे अंदाज के साथ अगर हम बच्चियों को समझाएं तो ये बहुत वरदान साबित तो हो ही चुका है, तो उसे हम बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं
0: और शरीर की एक आवश्यक क्रिया है
1: जी। तो अदिति गुप्ता का जन्म झारखंड में हुआ था। बचपन से ही उन्होंने देखा कि कई लड़कियां मासिक धर्म को लेकर सही जानकारी के अभाव और सामाजिक संकोच का सामना करती है और इस विषय पर घर और समाज में खुलकर बात नहीं की जाती, जिसके कारण कई सारी लड़कियों में डर और भ्रम पैदा हो जाता था।
0: और अपने जीवन के इन्हीं अनुभवों से अदिति को ये समझ में आया कि केवल चुप रहने से समस्या खत्म नहीं होती, बल्कि सही जानकारी से और इस बारे में बात करके, इस बारे में जानकारी पहुंचा कर ही बदलाव लाया जा सकता है। वैसे उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और बाद में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन से डिजाइन की शिक्षा प्राप्त की,
1: लेकिन उनकी रुचि केवल करियर बनाने तक सीमित नहीं रही राजुल जी, बल्कि वे समाज की वास्तविक समस्याओं को समझकर उनका समाधान खोजने में विश्वास रखती थी और इसी के मद्देनजर उन्होंने मेंस्ट्रुपीडिया नामक कॉमिक बुक की शुरुआत की।
0: अपने पति तुरहिन पाल के साथ मिलकर उन्होंने मेंस्ट्रुपीडिया की शुरुआत की थी और इसका उद्देश्य था कि लड़कियों को मासिक धर्म के बारे में सरल भाषा में वैज्ञानिक और सही जानकारी मिल सके।
1: अब सरल भाषा बच्चों के लिए यानी छोटी बच्चियों के लिए कॉमिक से बढ़कर क्या होगा?
0: क्या होगी? बहुत अच्छी पहल है
1: जी। तो उन्होंने कॉमिक बुक, चित्रों और आसान तरीके से समझाने वाली सामग्री का उपयोग किया ताकि किशोरियां बिना डर बिना झिझक के इस विषय को समझ सके।
0: और इनके प्रयासों से कई परिवारों और स्कूलों में इस विषय पर बातचीत को बढ़ावा मिला। अदिति ने यह संदेश दिया कि स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर जानकारी छिपाने के बजाय जागरूकता फैलानी चाहिए
1: जी। और उनका काम केवल महिलाओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने समाज को ये सोचने के लिए प्रेरित किया कि किसी भी समस्या को समझने और हल करने के लिए संवाद का होना कितना जरूरी है।
0: बिल्कुल। और अदिति गुप्ता को उनके सामाजिक कार्यों के लिए कई मंचों पर सम्मान मिला। उन्हें कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों में अंडर 30 की सूची में स्थान मिला और वो बीबीसी की प्रभावशाली महिलाओं की सूची में भी शामिल रही।
1: और अदिति गुप्ता का जीवन बताता है कि समाज में परिवर्तन लाने के लिए किसी बड़े पद की आवश्यकता नहीं होती, एक छोटी सी समस्या को गंभीरता से समझकर सही दिशा में प्रयास करके बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। और अदिति गुप्ता ने एक ऐसे विषय पर आवाज उठाई है राजुल जी, जिस पर लोग चुप रहते थे, उनकी सोच ने चुप्पी को जागरूकता में बदल दिया।
0: और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये जागरूकता आई तो कम से कम बच्चियों में ये एक विश्वास आया, क्योंकि बहुत सारे घरों में अभी भी ये होता है कि इन दिनों ये छूना नहीं है या दूर रहना है, या बहुत सारे घरों में अगर बेटे भी हैं तो ये बताया जाता है कि अभी ये गंदी हो गई है
1: या चिड़िया ने छू लिया।
0: हाँ, तो इस तरह की बातें सुन के बेटों के मन में पहले से बात आती है कि ये गंदी होती है, ये गंदी, मैं गंदा नहीं होता हूँ,
1: ये गंदी।
0: तो एक चीज वो जो वैषम्य पैदा होता है वो भी एक उन्होंने दूर करने की कोशिश की है, तो ये बहुत बड़ी बात है और इस विषय पर बातचीत होने लगी है। अब देखो ना, हमारे कार्यक्रम में एक ब्रेक लेने का वक्त हो गया है,
1: तो लेते हैं ब्रेक।

0: तो सोनाली, पूरा हुआ अंतराल और हम लौट आए हैं। विषय हम लोग बहुत गंभीर था जिस पर बात कर रहे थे,
1: जी
0: मासिक धर्म की बात कर रहे थे, तो आप कुछ कह रही थी इसके बारे में।
1: जी राजुल जी, ऐसा है ना कि इसके पीछे भी, जैसे पुराने जमाने में आपने जैसे कहा कि महिलाओं को दूर बिठाया जाता था या फिर घर में छूना नहीं है, तो उस जमाने में काम भी महिलाएं बहुत भारी भरकम किया करती थी। जैसे कुएं से पानी निकाल कर लाना है, फिर चक्की से आटा पीसना है, फिर खेतों में काम करना है, तो उस वक्त महिलाओं को थोड़ा आराम की जरूरत होती थी, इसलिए उस जमाने में इस तरह से उन्हें अलग बिठाया जाता था। पर अब हम हल्का फुल्का काम करने लग गए, फिर भी हम उन्हीं बातों को, उन्हीं रूढ़ी वादी बातों को लेकर चले हैं। और तो और स्वच्छता के प्रति भी हम जागरूक नहीं है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि उन दिनों में नहाना नहीं है, पर कितनी गलत बात है। उस वक्त स्वच्छता का, हाइजीन का तो बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, तो हमें रोज नहाना चाहिए, स्वच्छता का कपड़े बदलना चाहिए और जो पैड्स वगैरह उसे भी समय समय पर बदलना।
0: और अब तो इसके विषय में सरकार की तरफ से भी, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी बहुत पहल हो रही है, मुफ्त में पैड्स गांव में दिए जाते हैं। और एक बात और है, ये भी कहा जाता है, जब कई बार कोसते भी देखा है, पढ़े लिखे बच्चियों को भी इस बात को कोसते हुए देखा है कि अरे ये क्या है, तो ये वो समय होता है जब कहा जाता है कि स्त्री सबसे ज्यादा, उसके अंदर जो शक्ति, शक्ति कहा जाता है ना, तो शक्ति उसके अंदर सबसे ज्यादा इस समय होती है। और इस बारे में कई, अगर हम गौर से देखें तो बहुत सारे हमें उदाहरण और कई सारी ऐसी रीतियां भी मिल जाएंगी जो इस बात को बिल्कुल
1: प्रूव करती है,
0: प्रूव करती, प्रमाणित करती है कि भाई ये बहुत खास समय होता है। तो इस खास समय को खास तरीके से बिताने के लिए अलग बिठाया जाता था, ना कि इसलिए क्योंकि गंदे हो जाते हैं। तो गंदगी की यहाँ पर सिर्फ तभी तक रहती है जब तक हम नहाते नहीं है या कुछ भी दूसरी तरह की गंदगी से अपने आप को साफ करने की कोशिश करते हैं, तब गंदगी नहीं रहती। जब हमें कहीं पर आराम करने के लिए छोड़ा जाता है या अच्छे से खाने के लिए कहा जाता है, बहुत जगह ये भी होता है,
1: उस वक्त हमें पौष्टिक आहार लेना चाहिए, बहुत आराम करना चाहिए। इस तरह से हम देखभाल कर सकते हैं अपने घर वाली, जो घर की जो महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, उन्हें इस तरह से आराम दिया जा सकता है, ना कि उन्हें घृणा की दृष्टि से देखा जाए और उन्हें इस तरह से व्यवहार किया जाए कि अरे दूर रहो, छुओ ना, बल्कि उन्हें बहुत आराम और बहुत प्यार से उस वक्त अगर संभाले तो ये दिन भी बहुत आसानी से निकल जाते हैं।
0: और साथ ही साथ अगर हम गीत सुनते हुए ऐसी गंभीर विषयों पर बातचीत करते हैं
1: तो कार्यक्रम में मजा आ जाएगा।

0: चांद कहाँ खोया है ये ढूंढने भी कुछ बच्चे बहुत जिद करते हैं जब अमावस्या होती है या जिन रातों में चांद नहीं निकलता। तो कई बार ऐसा भी होता था कि जैसे मेरे घर के पड़ोस में एक छोटा बच्चा था, तो वो ये बात कहता था कि आप तो कहते हो कि रोज चांद निकलता है, रोज सूरज और चांद तो रोज आते हैं, देखो तुम्हें भी जैसे हम लोग बच्चों को बताने के लिए कहते थे ना कि देखो भाई सूरज चांद रोज समय पे आ जाते हैं, तुम्हें
1: तुम
0: भी सब
1: समय से
0: काम।
1: जाया करो ट्यूशन
0: हाँ,
1: स्कूल।
0: तो उसने कहा कहाँ आते हैं, देखिए चांद तो आ जाया ही नहीं है। तो भाई हमने कहा ये हाजिर जवाबी बच्चों की तो बिल्कुल पानी पानी ही कर देती है।
1: ये जो बच्चे होते हैं हमें बहुत बार शर्मसार कर जाते हैं। ये आज बच्चों की शरारतों के बारे में हम बातें कर रहे हैं, बातें हल्की फुल्की में। तो इसमें एक सखी ने हमारे लिखा है कि मेरे बेटे ने 4 साल का था तब एक कप में मिस्त्री लोग काम कर रहे थे, केरोसिन तेल रखा था, वहां पहुंच गया उसके पास और उसने केरोसिन तेल पी लिया पानी
0: अरे
1: समझ।
0: बाप रे।
1: फिर उसको हम लोग को अस्पताल लेकर भागना पड़ा, 2 दिन अस्पताल में भर्ती रहा, फिर ठीक हो गया। यानी देखिए कितने परेशान हो जाते हैं ना माता पिता दादा दादी जब इस तरह से बच्चे ये कर देते हैं। और एक लिखते हैं कि छोटे बच्चों की शरारतें, छोटे बच्चों की शरण हमारे जीवन में खुशियां भर देती है, उनकी शरारती जब याद आती है तो आप ही चेहरा खिल उठता है। मेरा नाती 2 साल का है, वो सारी छोटी छोटी चीजें छोटी जगह पर छिपा देता है, उसे याद भी रहता है कि कौन सी चीज उसने कहाँ रखी है। पूछो तो बताता है कि जब मैं गुस्सा करती हूँ तो मुझसे कहता है कि नानी मैं पुलिस बोल रहा हूँ, प्रिंस नाम है, और मुझे डांट लगाओगे तो आपको जेल में बंद कर दूंगा।
0: अरे
1: मैं कहती हूँ तुम नानी कहकर किसे बुलाओगे, तो कहता है मैं पहले दरवाजा खोलूंगा फिर आपको नानी कहकर बुलाऊंगा फिर बंद कर दूंगा। बहुत ही लटके झटके से बोलता है, बच्चे तो बच्चे होते हैं, घर भरारा भरा रहता है। हमें सुन के ही इतनी हंसी आ रही है
0: हाँ, तो
1: जो
0: इनके
1: और
0: मतलब
1: जो
0: इन्हें तो डांटना भी मुश्किल हो जाता होगा। एक संदेश में बताया है कि हमारे पड़ोस में रहने वाले दंपति का बेटा अंशु भी बहुत शरारती है। अभी वो 3 वर्ष का है, उसने अभी साइकिल चलाना सीखा है और उसके दादाजी ने छोटी सी सुंदर साइकिल खरीद कर दी है। कुछ दिन पूर्व वो अपने मम्मी पापा के साथ नाना नानी के घर गया था, तो अपनी साइकिल की चाबी अपनी दादी के तकिए के नीचे छुपा कर गया था और दादी को पोल कर गया था कि दादी ध्यान रखिएगा कहीं दादाजी उसकी साइकिल लेकर ऑफिस ना चले जाए।
1: कितनी मासूमियत है कि उन्हें ऐसा लगा कि इतने लंबे चौड़े इतने ऊंचे दादाजी इतनी छोटी सी ट्राइसिकल कैसे
0: हाँ, और
1: चलाएंगे।
0: कितना ये भाव भी होता है ना बच्चों में कि ये मेरी चीज है, ये पता नहीं अभी ये ले लेंगे।
1: नहीं, और उन्हें ऐसा लगता ना कि पापा के पास में बाइक है या कार
0: हाँ
1: है या फिर मम्मी के पास तो पूरा किचन है, उनकी
0: हाँ
1: सारी चीजें मम्मी की, तो ये मेरी साइकिल है या मेरे खिलौने हैं ये मेरे
0: बिल्कुल।
1: हैं। एक साथी ने लिखा है कि मेरा बेटा जब छोटा था तो पूरा दिन उधम मचा कर रखता था। छोटे बच्चों की शरारतें घर आंगन में हंसी खुशियां बिखेर देती है और उनकी मासूम हरकतें नटखट बातें और भोली मुस्कान सभी का मन मोह लेती है। कभी वो खिलौने बिखेर देते हैं तो कभी नई नई बातें सीख कर सबको चौंका देते हैं। उनकी शरारतों में मासूमियत छिपी होती है, इसलिए उन्हें प्यार और सही मार्गदर्शन के साथ समझना चाहिए।
0: और एक हमारे साथी ने एक बड़ी खतरनाक समस्या की तरफ इशारा किया है कि भाई आजकल तो छोटे बच्चों में भी इंटरनेट ने अपने गिरफ्त में ले लिया है और इसके चलते अपनों के आज्ञाओं का उल्लंघन सार्वजनिक रूप से ही देखा जा रहा है और उनके शैतानी भरी शरारत से ना ही उनकी आंखों पर ही चश्मे चढ़े हुए हैं और हम लोग अपने अपने आंखों पर चश्मे चढ़ाए हुए हैं। जाने कैसा ये आश्चर्य है जो उनके द्वारा किए जाने वाली शरारतें ही अब स्क्रीन पर ही देखा जा सकता है। मतलब वो वही शरारतें कर रहे हैं जो वो देख रहे हैं।
1: देख रहे हैं। वही एक साथी लिखते हैं कि बच्चों की शरारत बेहद पसंद आती है, तो कभी हंसी भी आ जाती है, तो कभी कभी नाक में दम भी हो जाता है, तो कभी माहौल एकदम खुशनुमा हो जाता है। हमारे घर में कई छोटे बच्चे थे, एक बार वीसीआर के अंदर उन लोगों ने न्यूज़पेपर के छोटे छोटे टुकड़े करके उसमें डाल दिए।
0: ओ
1: अब वीसीआर चलना बंद हो गया। जब मैकेनिक को बुलाया तो उसने इतने सारे कागज निकाले, पूछने पर किसी ने भी नहीं बताया कि किसने काम किया था।
0: सच में ये शरारतें तो खत्म होने का मतलब
1: नाम ही नहीं लेती।
0: नाम नहीं लेती और लगता है कि चलती भी रहे, बाद में याद करके कितनी हंसी आती है। अच्छा, अब एक मुस्कुराहट और सज जाएगी अगर हम एक गीत सुन लें।
1: सुनते हैं गीत।
2: ओ मेरी,

0: सोनाली, ब्रेक पूरा हुआ और हम लौट आए हैं ब्रेक के बाद।
1: कार्यक्रम है सखी सहेली। और एक साथी ने लिखा है कि बचपन में मैंने भी एक शरारत की थी। 1960 के आसपास हमारे घर बिजली का कनेक्शन आया था और उन दिनों कुतूहल वश वायर से जुड़े होल्डर में लैंप लगाकर वायर को सीधा प्लग में डालकर स्विच ऑन करके जो स्पार्क हुआ उससे मेरी उंगली को झटका लगा। पर चीखने के बाद मेरे बड़े भैया ने स्विच ऑफ कर मुझे छुड़ा तो लिया, लेकिन उंगली पर स्पार्क के निशान के साथ काली पड़ गई थी उंगली, और ऊपर से डांट के साथ मार भी पड़ी थी वो भी झटका अलग से लगा था। साथ ही एक साथी ने लिखा है कि खुद को ट्रंक के अंदर, वुलन कपड़े का जो ट्रंक होता है उसमें सारे कपड़े निकाले और खुद को ट्रंक के अंदर बंद कर
0: दिया। ये बहुत खतरनाक शरारत होती है जो बच्चे करते हैं, क्योंकि कई बार इससे उनकी जान को भी खतरा हो सकता है, चोट भी बहुत गहरी लग सकती है। एक बड़ी मासूम सी शरारत हमारे एक और साथी ने साझा की है कि सर्दियों के दिन में हमारे घर में परिवार और बच्चे आए थे। वो देख रही थी कि सभी बॉडी लोशन और क्रीम का प्रयोग अपने शरीर पे करते हैं। उसने अपने टेडी बियर को पूरा कोल्ड क्रीम निकाल कर टेडी लगा दिया, और बहुत बहुत ज्यादा लगा देने पर उससे संभाला नहीं तो उसने उसे बेड के नीचे छुपा दिया। घर में महक आ रही थी और जहाँ फर्श पर भी गिरा तो पैर में चिपक रहा था। तो बच्ची की बड़ी बहन ने बताया कि इसने कुछ किया है, तो पूरे बेड पर उसने फैला दिया था। जब उसकी माँ ने डांटा तो बोली कि टेडी को ठंड लग रही थी तो इसलिए उसे मालिश कर रही थी, जैसे नानी मुझे करती है तो मैं टेडी को कर रही थी। तो फिर उसे समझाया गया कि भाई तुम टैडी को मत करो, तुम बच्ची हो, तुम्हारी मालिश होगी, तुम नाना नानी की कर दिया।
1: कितना कितना मासूमियत भरा सवाल था और जवाब भी बड़ा ही मासूमियत भरा था। एक ने लिखा है कि एक बच्चा बहुत देर से एक घर की बेल बजाने की कोशिश कर रहा था लेकिन पहुंच नहीं पा रहा था, तो हमने सोचा कि उसकी मदद कर दे, हमने बेल बजा दिया। फिर बच्चों को वॉशरूम जाना था तो बोला अंकल अब भागो, वो घर का मालिक आ जाएगा तो हमें बहुत डांट देगा। यानी उन्हें ऐसा लगा कि किसी उसे जाना है अंदर, तो बच्चा तो शरारत कर रहा था। उसके बाद में एक ने लिखा है कि मेरे बहन के छोटे बेटे ने उनके घर के बोरिंग यानी बोरवेल में पाना पंचेश और ना जाने सारे औजार उसमें डाल दिए थे और सारे नए खरीदने पड़े।
0: क्या क्या तो गजब गजब शरारतें हैं। और बच्चों की ये जो मासूम शरारतें होती हैं इन पर बिगड़ते भी हैं हम कई बार, लेकिन अगर इन्हें अगर इससे कोई नुकसान नहीं हो रहा है तो उन्हें ये शरारत करने देनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं शरारतों से उनके दिमाग का भी विकास होता है, उनके व्यक्तित्व का भी विकास होता है, और वो मेलजुल कर या किसी कठिन समय में अपने आप को कैसे निकालना है ये भी सीखते हैं। तो बस नजर रखनी पड़ती है बच्चों पे कि क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। जैसे कुछ बच्चे होते हैं कि एक बच्चा था, नया खिलौना जैसे ही उसको मिला तो वो तुरंत उसका सब ऊर्जा बराबर कर देता था। उसको बहुत शौक था मोटर कार का, हेलीकॉप्टर का, तो बस वो देखते ही तुरंत उसको उसको चाहिए पेचकस, पेचकस से उसने तुरंत खोला वोला और सब अलग। तो भाई लोग कहते थे कि क्या करना है तुम्हें, तो कहता था मैं कोशिश कर रहा हूँ मैकेनिक बनने की, और बाद में आगे चल के वो वास्तव में
1: बहुत बड़ा इंजीनियर
0: बना
1: जी।
0: तो भाई ये कुछ
1: यानी उन्हें रोकी टोकी मत कि आपको लगता है कि भाई इतना महंगा खिलौना खरीदा और इसने तो दूसरे दिन तोड़ दिया, पर क्या पता उसकी जो क्रिएटिविटी है उससे वो उसे एक दिन बहुत बड़ा इंसान बना दे। साथ ही जो बच्चे ना क्रेयॉन होते हैं ना उससे दीवारें गंदी करते हैं, तो बहुत सारे लोग डांटते हैं पर उन्हें डांटे ना एक छोटा सा कोना उन्हें दे दे, क्योंकि क्या होता है ना जो क्रेयॉन उंगलियों में पकड़ते तो उनकी उंगलियों के मसल मजबूत

0: होते हैं,
1: हाँ
0: तो उन्हें गोदने दीजिए। ऐसा नहीं है कि हाँ पूरा ही घर गंदा मत करने दीजिए, पर उन्हें कह दीजिए कि ये जो है ना ये कोना तुम्हारा है, यहाँ जो, या फिर व्हाइट बोर्ड आते हैं, ब्लैक बोर्ड आते हैं
1: वो लगा सकते
0: वो
1: हैं,
0: लगा सकते
1: बिल्कुल
0: हैं, या फिर ऐसे
1: कागज लगा दे,
0: हाँ
1: एक जो बड़े बड़े चार्ट पेपर्स आते हैं वो
0: हाँ वो
1: लगा
0: लगा
1: दे
0: दे।
1: और कहें कभी कभी कोई कोई आए तो दिखाए भी कि देखिए भाई ये इसने बनाया है, देखिए कितना सुंदर बनाया है। बच्चों की अगर इस तरह से तारीफ भी करते रहें कि गोदने वाले बच्चे, ये गोदने वाली शरारतें बहुत होती हैं,
0: बहुत
1: तो
0: होती है।
1: बस ये कह दिया जाए कि भाई देखो तो कितने सुंदर सुंदर इसने कलर्स, देखा आपने कैसा इस्तेमाल किया है, तो बच्चे को लगता है कि हाँ कुछ बड़ा काम किया, और अगली बार जब वो गोदना शुरू करता है तो उसका ध्यान उन रंगों पर भी जाता है, कहीं ना कहीं उसके अंदर की वो रचनात्मकता विकसित हो रही है।
0: पर एक बात और है कि अगर उसने कुछ गलत शरारत की है, जैसे कि कैंची से काट दिया है, खुद के
1: हाँ
0: बाल ही काट देते हैं, कभी
1: हाँ
0: कभी कभी तो पलकों के बाल भी काटने से नहीं चूकते
1: हाँ
0: हैं
1: या
0: बच्चे,
1: छोटे भाई बहनों के काट देते
0: हाँ,
1: हैं।
0: तो उसकी ना बहुत बार बार लोगों को बता बता के तारीफ ना करे, तो
1: हाँ
0: उन्हें लगता है मैंने तो बहुत बड़ा तीर मार दिया। तब
1: हाँ
0: उन्हें समझाए कि भाई अगर ये आंख में लग जाती तो आंख हमेशा के लिए चली
1: चली
0: जाती,
1: जाती।
0: तो ये इन बातों का हमें बस ध्यान रखना
1: हाँ
0: चाहिए।
1: मतलब ऐसे चुभने वाली चीजें बच्चों की पहुंच से दूर ही रहे तो अच्छा है, नरम नरम से खेल, अच्छे अच्छे खिलौने, ये सब देकर बच्चों का बचपन ऐसा ही बना रहे जैसे कि
0: ये गाने में है।
1: हाँ।

0: सोनाली देखिए, शरारतों की बात चल रही है तो कैसे कैसे कच्चे चिट्ठे खुल रहे हैं। हमारी एक सखी बता रही है कि मेरा बेटा जब 6 साल का था तो एक दिन अकेले खेलते हुए किचन के स्लैब के नीचे छुप गया और सो गया। कुछ देर बाद जब उसके दादा दादी उसको ढूंढने लगे तो वो सोने के कारण रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। वो घबरा गए। मैं दूसरे शहर में थी, मुझे पता चला तो मैंने सीसीटीवी कैमरा की रिकॉर्डिंग में चेक किया तो पता लगा जनाब कहाँ छुपे थे। मैंने तुरंत उसके दादाजी को कॉल किया। जब वो वहां गए तो पता चला कि सो रहा है आराम से। खैर, जान में जान आई।
1: यानी दादाजी नाना जी रहे तो
0: हाँ
1: उसका भी कितना फायदा है ना।
0: बिल्कुल, मतलब बच्चों की शरारतों के बीच में एक अंकुश भी रहता है। वैसे दादा दादी को भी अच्छा लगता है,
1: और एक है
0: अकेलापन
1: ना,
0: नहीं
1: ये
0: लगता।
1: नहीं, परिवार में पुल का काम करते हैं ना, ब्रिज का काम करते हैं
0: बिल्कुल
1: कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच में जो दादा दादी ब्रिज का काम करते हैं कि उनकी बदौलत पूरा परिवार जुड़ा रहता है।
0: मूल से
1: प्यारा
0: सूद ज्यादा प्यारा होता
1: होता
0: है
1: है।
0: कहा भी जाता है। तो भाई वो अपने बच्चों को प्यार भी देते हैं, भरपूर प्यार भी देते हैं, और जो अनुभव होता है ना उनका अपने बच्चों को पालकर वो भी काम आता है।
1: बहुत काम आता है, पर अभी परिस्थितियां थोड़ी विकट
0: अलग हो
1: होने
0: गई
1: लग
0: है।
1: गई है।
0: हाँ
1: एक साथी लिखते हैं कि बुजुर्ग दादा दादी नाना नानी के साथ हम बहुत समय बिताते थे, अभी बच्चों में शायद वैसा समय नहीं है और न ही उतने शौक है उनसे कहानी सुनने के, किस्से सुनने के। सब कुछ तो उनको फोन में और टीवी में मिल जाता है, दादा दादी के साथ समय बिताना पसंद भी नहीं आता उन्हें। इसका नतीजा ये होता है कि अधिकतर बुजुर्ग अकेलेपन में ही समय बिताते हैं, जबकि बुजुर्गों के पास तो सजीव अनुभव और ज्ञान होता है, संस्कार देने की काबिलियत होती है और सोशल मीडिया अब टीवी से जुड़ गए हैं। उस जमाने में कहाँ था सोशल मीडिया और टीवी।
0: बिल्कुल
1: तो ये एक थोड़ी सी समस्या है, परेशानी है ये।
0: परेशानी है। और इस बारे में हमारी एक सखी लिख रहे हैं कि आजकल के समय में ये बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि परिवार बहुत छोटे हो गए हैं। हमारे घर में ये समस्या नहीं है, हमारा संयुक्त परिवार है, 13-14 लोग अभी साथ में हैं। तो बड़े बुजुर्गों को अकेलेपन की भावना नहीं आती है, चहल पहल हमेशा रहती है। मुझे लगता है कि एकल परिवार भी एक कारण है अकेलेपन का।
1: बहुत ही बड़ा कारण है अकेलेपन का, एकल परिवार। और सच मुझे ना, पुराने जमाने की बात की जाए ना राजुल जी, तो उस वक्त प्राइवेसी नाम की ऐसी चीज ही नहीं हुआ करती थी जो आजकल लोगों को चाहिए। लोगों को बस लगता है कि हमें बस हमारा स्पेशल यानी बेडरूम, उसमें अटैच टॉयलेट बाथरूम उनका हो, उसमें किसी को डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। बच्चों को भी सब प्राइवेसी की जरूरत है, पर पुराने जमाने में सब एक दूसरे की चीजें इस्तेमाल करते थे, एक घर में रहते थे, लड़ते झगड़ते भी थे पर फिर एक हो जाते थे, तो एक बहुत सुंदर दिखता था ऐसा घर। पर अभी ये थोड़ा सा इसकी कमी नजर आ रही है। एक साथी लिखते हैं कि बुजुर्ग अगर घर में है तो ये बात का सबसे हमें ध्यान रखना चाहिए कि उनके पास थोड़ी थोड़ी देर जाकर समय देना चाहिए, बैठना चाहिए, उनकी जरूरत का ध्यान रखना चाहिए। सिर्फ हमारी सेवा और समय ही नहीं, उन्हें हमारा थोड़ा सा प्यार भी दे देना चाहिए तो वे बड़े खुश हो जाते हैं।
0: हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि जब रेडियो पर आपके कार्यक्रम सुनते हैं तो अकेलापन नहीं लगता। हार्ड कॉपी में किताब पढ़ते हैं जिससे मन के तूफान शांत होते हैं। सोशल मीडिया कम वापरता हूँ, कसरत करके तंदुरुस्त जीवन जीने का प्रयास है। डॉक्टर ने रिपोर्ट्स देखकर कहा खाओ पियो और मौज करो, सादा जीवन, किसी को मदद करने से भी अकेलापन महसूस नहीं होता।
1: क्या बात है। एक साथी लिखते हैं एकल परिवारों में बुजुर्गों का अकेलेपन की समस्या बहुत ज्यादा है। बुजुर्गों का अकेलापन केवल एक भावनात्मक समस्या नहीं है बल्कि उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को भी गंभीर रूप से प्रभावित करता है। इसके कारण उनमें डिप्रेशन और याददाश्त कमजोर होने की जैसी समस्याएं बढ़ सकती है। उनके इस खालीपन को दूर करने के लिए बातचीत, जुड़ाव और नियमित दिनचर्या बहुत जरूरी है। दो प्यार के बोल, सुविधापूर्ण उनकी दिनचर्या, इस उम्र में उनके अकेलापन दूर करने के लिए मेल मिलाप बहुत जरूरी है जो आजकल बेहद कम हो गया है।
0: और ये एक हमारे श्रोता ने अंग्रेजी में संदेश भेजा है। आई एम अ सीनियर सिटीजन रिटायर्ड फ्रॉम बैंक एंड स्टार्टेड अ न्यू जर्नी इन रेडियो एज आरजे ऑन कम्युनिटी रेडियो, इंजॉइंग अ लॉट। आई लव रेडियो सिंस माई चाइल्डहुड। विविध भारती साथ हो तो बोर होने का सवाल ही नहीं है।
1: क्या बात है।
0: तो भाई इस तारीफ के लिए शुक्रिया, विविध भारती के साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। और एक बात और इनके संदेश से पता लगती है कि अगर बुजुर्ग कोई अपना शौक डेवलप
1: जो
0: कर
1: रह
0: लेते
1: गया
0: हैं,
1: है।
0: हाँ डेवलप कर लेते हैं उस समय भी, ये सोचकर नहीं कि ये जिंदगी का अवसान है, बल्कि ये एक नया पड़ाव है, एक नई यात्रा है।
1: जी
0: और अगर वो एक कोई शौक अपना शुरू कर लेते हैं तो उससे निश्चित रूप से उन्हें अकेलापन कम महसूस होगा। ये तो सही बात है। एक हमारे पढ़ रही थी तो भी एक संदेश में शायद ये भी कहा गया है कि आजकल बच्चों के पास समय नहीं होता। सही बात है, समय नहीं होता। बड़े जब होने लगते हैं तो कम समय रहता है।
1: पर अगर ऐसा है ना कि बच्चे नहीं बात कर रहे हैं तो बुजुर्ग खुद भी जाके बोल सकते हैं कि कैसे हो बेटा, क्या हाल चाल है, पढ़ाई में ध्यान लगाओ। नहीं तो ऐसा लगता है ना कि अरे वो बात नहीं कर रहे, वो नहीं जा रहे, तो पहल दोनों तरफ से होनी
0: दोनों
1: चाहिए।
0: दोनों तरफ से होनी चाहिए। और अगर मान लीजिए कि बच्चे बहुत ज्यादा व्यस्त हैं, तो अगर बच्चे को उस समय उसको जो चाहिए, मान लीजिए कि बहुत व्यस्त है, पढ़ाई कर रहा है या किसी प्रोजेक्ट में अपने बिजी है, और आप सिर्फ इतनी सहायता कर रहे हैं कि मान लीजिए प्रोजेक्ट बनाने में उसको कुछ काटने की जरूरत है, आप काट कर उसे वो पकड़ा देते हैं, वही बहुत बड़ी बात हो जाती है।
1: उन्हें भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगता है।
0: और हमें गीत सुनना भी बहुत अच्छा लगता है।
1: सुनते हैं गीत।

0: भाई देखो, हमारे एक श्रोता ने अपनी दिनचर्या साझा करके बताया है कि सुबह पूजा पाठ, फिर शिवालय, फिर भोजन, फिर 1 बजे सुरीला सफर सफर, फिर सखी सहेली, फिर 5 बजे फिर आराम, और फिर 5 बजे 5 किलोमीटर वॉकिंग, फिर भोजन, फिर टीवी प्रोग्राम, फिर 5 या 6 घंटे नींद। यही है 70 साल के बुजुर्ग की दिनचर्या।
1: क्या बात है, ये तो किसी 17 साल के जो है ना युवा को भी शर्म आएगी, इतनी परफेक्ट दिनचर्या है आपकी।
0: हाँ सही बात है।
1: वैसे पानी पानी मुहावरे का मतलब है शर्म से पानी पानी होना। तो हमारे एक साथी ने लिखा है कि पानी पानी होना, इस मुहावरे से एक बात याद आ गई। तब मेरा बेटा बहुत छोटा था और उसे लेकर मैं एक परिचित के घर गई। बातचीत के बाद मेरी परिचित चाय बनाने के लिए उठी तो मैंने बोल दिया मैं चाय नहीं पीती, और मेरे बेटे से पूछा दूध पियोगे, तब भी मैंने मना कर दिया क्योंकि मेरा बेटा भी दूध नहीं पीता था। लेकिन जैसे ही मैंने मना किया, मेरा बेटा तुरंत बोल पड़ा कि मुझे खूब गर्म दूध दीजिएगा। और आंटी सुनिए ना, मेरी मम्मा चाय नहीं कॉफी पीती है। इसलिए मम्मा के लिए कॉफी बना दीजिए। मुझे उस समय बहुत शर्माई और शर्म से पानी पानी हो गई।
0: ये सही बात है, बच्चे पोल खोल देते हैं,
1: पोल खोल।
0: एक बच्चे ने कहा कि जब उसके पिताजी ने कहा कि भाई हम घर पर नहीं है, जाओ क्या दो अंकल आए, क्या दो घर पे नहीं है, तो उसने जाके कहा, पिताजी ने कहा है कि वो घर पर नहीं है। अब मतलब पिताजी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल पानी पानी, वो झक मार के फिर बाहर निकले और मिले अपने मित्र से, क्योंकि बच्चे ने बता दिया था कि पिताजी ने कहा है कि हम घर पे नहीं है।
1: एक बार एक व्यक्ति थे, उनके मित्र आए थे, तो उन्हें अंदर से आने में थोड़ा टाइम लग रहा था, उनकी छोटी सी बेटी थी। तो अब क्या बात करें बच्चे से, तो उन्हें पूछा कि बेटा तुम्हारे पापा क्या काम करते हैं, पहले नाम पूछा क्या नाम है आपका, फिर आपके पापा क्या काम करते हैं। तो उन्होंने बताया कि मेरे पापा तो घर में झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, कपड़े धोते हैं।
0: सब पोल खोल दी
1: अंदर से पापा ने सुना, अरे ये मैं तो वो पानी पानी हो गए।
0: अच्छा वो बच्चा भी बेचारा क्या करे, उसने काम का मतलब यही समझा कि हम, माँ कहती होगी कि हम काम कर रहे हैं, तो काम का मतलब झाड़ू लगाना। तो कभी कभी अगर पिताजी ने झाड़ू लगा भी दी तो उसने कह दिया कि ये भी काम करते हैं, ये भी काम करते हैं, मतलब वो तो बड़ा ही कर रहा था।
1: और एक बार ऐसे हुआ कि बैठे हुए थे लोग, तो छोटी बच्ची भी थी साथ में, तो उसकी मम्मी बोले कि चलो टाइम हो रहा है हम घर जा रहे हैं। तो बोले नहीं नहीं मम्मी रुको रुको, अंदर से कप प्लेट की आवाजें आ रही है, शायद चाय बनने वाली।
0: सच में ये स्थिति जो है बड़ी खतरनाक होती है, उस समय माँ बाप को समझ में नहीं आता कि देखें रुकें क्या करें। और कभी कभी ये भी कहना पड़ता है भाई बड़ा शरारती है, जैसे कह दे कि कई बार ऐसा होता है कि माएं कहती हैं बच्चा खाता ही नहीं, कुछ नहीं खाता, और इधर बच्चे ने जैसे ही नाश्ते की प्लेट आई और उसने खाना शुरू किया,
1: सब खा लिया।
0: तो ऐसे में एक बात बस यही कहेंगे कि अगर बच्चे हैं, ये तो बच्चे हैं, और हो सकता है कि सामने प्लेट में जो हो वो उन्हें पसंद आ रहा हो इसलिए वो खा रहे हो, तो घर में ऐसा रूल बनाए ना कि बहुत सी बार ऐसा होता ना कि बच्चे, हम बाहर जाके नहीं खाने देते बच्चों को, तो ऐसा रूल अगर आपने बनाया है कि बाहर जाके किसी के यहाँ खाना मत, तो बच्चे का मन फिर मचलेगा।
1: जिसके लिए हम खूब मना करते हैं।
0: हाँ खूब मना करते हैं, बल्कि इसके बजाय ये कर दें कि भाई अगर बच्चे को कोई चीज पसंद आ रही है, जैसे अगर बच्चे ने, छोटे बच्चे ने, मान लीजिए एक मैंने देखा था कि एक बच्चे घर गए, बच्चे छोटी बच्ची थी उनके साथ, और उन्होंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लाकर उसमें रखे और उन्होंने कहा कि खाओ। अब जगह ऐसी थी कि जो माँ गई थी तो उसको लगा कि नहीं खाना चाहिए, तो वो उसने एक ले लिया और कुतरना शुरू कर दिया। बच्ची ने एक किशमिश उठाई, माँ ने देखा, फिर दूसरी किशमिश उठाई, माँ ने देखा, फिर तीसरी किशमिश उठाने वाली थी तो उसे लगा कि टोकना चाहिए, फिर उसे लगा कि अगर हम टोकेंगे तो बच्ची को गलत मैसेज जाएगा, तो उसने क्या किया कि कहा कि अच्छा तुम्हें किशमिश अच्छी लग रही है, और दो चार किशमिश बीन कर उसको अलग से दे दी, बच्ची अपना वो खाती रही, और इस तरह से उसको भी पानी पानी नहीं होना पड़ा और बच्ची की भी शरारत या जो बाल स्वभाव है वो पूरा हो गया।
1: और जैसे पानी पानी होने की बात है, इसके तो कई उदाहरण हैं कि कई बार ऐसा होता है ना कि किसी को कुछ चीज खाने की मनाही होती है, और भाई इच्छा तो होती है, अब मिठाई खाने की मनाही है, घर वाले कह रहे हैं कि भाई डायबिटीज है खाओ मत मीठा खाओ, अब बहुत ललचाया हलवाई के यहाँ जाके खा ले, और घर वालों ने किसी ने देख लिया
0: तो पानी पानी हो गए।
1: ऐसे लज्जित होना स्वाभाविक सी बात है, पर लज्जित हो गए है ना, तो उसके बाद में अपराध बोध से ग्रसित नहीं होना है, उसे वही छोड़ देना है कि हाँ। ठीक है ना, गलती हो जाती है, बड़े हैं बूढ़े हैं कोई भी उम्र के लोग हैं, अगर गलती हो गई है तो उसको हंस के स्वीकार कर ले, उसका दिल पर बोझ ना रखे, जिंदगी को हल्के में लेना चाहिए।
0: और देखो हमारे एक श्रोता ने बड़ा प्यारा सा संदेश हमारे साथ साझा किया है कि वो जो विविध भारती के कार्यक्रम होते हैं जिनमें वो अपने संदेश साझा करते हैं, जैसे सखी सहेली या सुरीला सफर, तो उसमें वो अपनी और अपनी धर्म पत्नी के प्रेम के बारे में अगर कभी कुछ संदेश देते हैं तो वो पढ़कर पत्नी पानी पानी हो जाती है शर्म से, तो ऑफिस में देते हैं पत्नी वहां घर में पानी पानी हो जाती है। तो भाई लेकिन ये कितनी सुंदर यादें स्मृतियां आप लोग साथ साथ संजो रहे हैं
1: सचमुच। और ये यादें हैं ना, ये बहुत सुंदर यादों को हमें संजो कर भी रखना चाहिए कि ये पल ये क्षण जो है फिर से नहीं आएंगे,
0: फिर से नहीं आएंगे, जो बीत गया वो बीत गया, लेकिन हम ये समय नहीं बीतने देंगे, हम गाना सुनेंगे।
1: बिल्कुल सुनते हैं गीत।

0: भाई बड़ी रोचक रोचक बातें हो गई। हम लोगों ने काफी किस्से सुन लिए और उन पानी पानी होने वाली स्थितियों के बारे में भी जान लिया जो कई बार एकदम ऐसा कर देती हैं कि समझ में नहीं आता इधर जाएं कि उधर जाएं, क्या करें कैसे करें।
1: तो बहुत मजा आया, सारे श्रोताओं को दिल से धन्यवाद, इतने सुंदर सुंदर कमेंट्स लिखकर भेजे। तो विविध भारती से जुड़े रहिए और हमें दीजिए इजाजत। तो आप सभी को सोनाली पाठक
0: और राजुल का
1: नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: एक जाने माने शायर, एक जाने माने गीतकार, वो कहते हैं खुद को इतना भी मत बचाया कर, बारिश हो तो भीग जाया कर। दर्द हीरा है, दर्द मोती है, दर्द आंखों से न बहाया कर। शकील आजमी जो कहते हैं परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। कई मशहूर फिल्मों के गाने उन्होंने लिखे। आर्टिकल 15 फिल्म मुल्क
1: सब में है और सब सुनारा
0: और फिल्म थप्पड़
2: एक टुकड़ा अंदर अंदर
0: जाने माने शायर शकील आजमी से बातें की हैं ममता सिंह ने। ये है इस कार्यक्रम का दूसरा भाग।
3: बेखबर दोस्तों नमस्कार, रेडियो सखी ममता सिंह की ओर से आज शायरी की दुनिया, गीतकारी की दुनिया और अदब की दुनिया की खास शख्सियत की आमद है विविध भारती के स्टूडियो में, जिन्हें हमने बड़े एहतराम से विविध भारती के स्टूडियो में आमंत्रित किया है, उनका हम इस्तकबाल कर रहे हैं। वो शायर हैं, गीतकार हैं, शकील आजमी साहब। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमी बैठ के क्या आसमान देखता है। घटाएं उठती हैं, बरसात होने लगती है, जब आंख भर के फलक को किसान देखता है। यही वो शहर जो मेरे लबों से बोलता था, यही वो शहर जो मेरे लबों से बोलता था, यही वो शहर जो मेरी जबां देखता है। शकील आजमी साहब, विविध भारती के स्टूडियो में आपका हम बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार।
4: नमस्कार, बहुत शुक्रिया ममता जी और बहुत शुक्रिया विविध भारती।
3: इन आपके ही चंद अल्फाज के साथ हमने आपका स्वागत किया, तो हमें बताइए कि ये जो अनुभव सिन्हा जी देर से मिले, लेकिन मिले तो दुरुस्त मिले।
4: हाँ,
3: बहुत सारी फिल्मों की आमद हुई आपकी फिल्मी दुनिया में, आर्टिकल 15, भीड़, और इन सब में गाने लिखे, थप्पड़ के सारे गाने आपने लिखे।
4: हाँ, मुल्क के सारे गाने।
3: तो मुल्क के हाँ। तो मैं चाहती हूँ कि मुल्क फिल्म का गाना, फिर आर्टिकल 15 का, क्रमवार आप बताएं और रचना प्रक्रिया बताएं।
4: मुल्क का गाना आप वो सुनाएं, पिया समाए।
3: जी,
4: बहुत अच्छा गाना है,
3: बहुत पसंदीदा कव्वाली।
4: हाँ,
3: कव्वाली।
4: यस यस,
3: कव्वाली की शक्ल में है ये गाना। और हम आपको बताएं कि विविध भारती
4: उसमें हमारा पूरा हिंदुस्तान है उस गाने।
3: जी बिल्कुल। हाँ। पूरी फिल्म बड़ी बेहतरीन है। हाँ। इसमें अनुभव सिन्हा जी को बधाई जाती है सबकी ओर से, विविध भारती परिवार की ओर से।
4: मैं समझता हूँ कि जो मुल्क फिल्म है
3: जी,
4: या आर्टिकल 15 है, ये ऐसी फिल्म है जो हमारे हिंदी सिनेमा में जो ऐसी फिल्में बनी हैं जो याद की जाएंगी।
3: बिल्कुल, जिनका जिक्र किया जाए,
4: जिक्र किया जाए,
3: दर्ज होती हैं आज के समय।
4: हाँ, वो ऐसी फिल्मों में ये फिल्में हमेशा जिंदा रहेंगी, जैसे थप्पड़ है, मुल्क है, आर्टिकल 15 है।
3: बिल्कुल।
4: और मेरी खुशनसीबी है कि मैं इन फिल्मों का हिस्सा हूँ।
3: शकील साहब, ये मुल्क फिल्म की बेहद मकबूल कव्वाली, और विविध भारती से एक प्रोग्राम होता है सुबह चित्रलोक, पहले ये भारत की गूंज के नाम से प्रसारित होता था, इसमें अक्सर हम विविध भारती से प्रसारित किया करते थे, और उसमें आपका नाम लेते हुए बड़ा फक्र महसूस होता था कि शकील आजमी ऐसे शायर गीतकार हैं जिन्हें हम निजी तौर पर भी जानते हैं। तो यहाँ पर हम चाहते हैं कि बात अनुभव सिन्हा जी की चली है, तो आर्टिकल 15, भीड़, कई फिल्में हैं आपके खाते में, तो क्रमवार इनका जिक्र करें, रचना प्रक्रिया बताएं इन गानों का। आर्टिकल 15, इंतजारी, जिसे आयुष्मान हाँ, खुराना हाँ, ने गाया भी है।
4: जी, इंतजारी सुनवा सकते हैं आप।
3: जी
4: बिल्कुल।
3: तो
4: आर्टिकल 15 से।

0: लौटा दो।
1: हाँ।
0: और मुझे ऐसा चाहिए कि ले जाओ।
1: हाँ।
0: ठीक है,
1: संचय करना है यहाँ पर।
0: तो उसमें जो गाना है वो मैंने लिखा है कि मोहब्बत में जो दो लोगों के आपसी जो मूमेंट्स होते हैं, है ना, हंसी है, गम है, रोना है, मुस्कुराना है, है ना, साथ में कुछ कहीं खा रहे हैं, कहीं चाय पी रहे हैं, कहीं आइसक्रीम खा रहे हैं और कहीं किचन में थोड़ा झगड़ लिए हैं, तो ये सारे जितने भी मूमेंट्स हो सकते हैं, तो अब हम बिछड़ गए हैं और मैं इसको अकेला जी रहा हूँ।
1: अच्छा, क्या बात है, ये सारा कुछ एक गाने में आना।
0: हाँ, तुम तो बिछड़ गए हो और खुश हो।
1: हाँ।
0: लेकिन मैं वहां से निकल नहीं पा रहा हूँ। वो साझा जो चीजें हैं हमारी, मैं उसको अकेला जी रहा हूँ और मैं दुखी हो रहा हूँ। तो तुम एक काम करो, ये आओ और इसको ले जाओ। तो ये मैंने एक मतलब स्टोरी बोर्ड बनाया और इसको मैंने शायरी में लिखा और वो इस तरह से गाना बना, इंतजारी
1: जी।
0: हाँ,
1: तो वो शायरी कैसे बनी वो बताइए, मतलब वो शेर अगर याद है तो।
0: हाँ, इसी तरह से बनी वो कि आना आ भी जाना इंतजारी है तेरी,
1: क्या बात है, वाह,
0: ले जा जो रिश्तों की रेजगारी है तेरी,
1: वाह वाह, बहुत सुंदर
0: है ना।
1: तो
0: अच्छा, पहले इसमें ले जा जो रिश्तों की रेजगारी है तेरी, हाँ, ये लाइन पहले नहीं थी, हाँ, उसमें कुछ खुमारी, हाँ, राइमिंग की लाइन थी,
1: हाँ,
0: तो अनुभव सिन्हा साहब ने कहा कि शकील भाई ये इंतजारी लफ्ज बड़ा यूनिक है, इंतजार होता है, इंतजारी लोग नहीं लिखते हैं, तो हमारे बचपन में हम गांव में सुनते थे, अरे हम तुहरी इंतजारी देखत रहे हैं, है ना, इंतजारी कर नहीं रहे थे, इंतजारी देखत रहे हैं, पुराने लोग बोलते थे। तो अब हमारा जो मुल्क है ना, वो बहुत विशाल, बहुत बड़ा मुल्क है,
1: रंगी है
0: और बहुत मतलब भाषाएं बहुत हैं, तो कोई भी शब्द कुछ अलग से आता है तो वो कानों को भला लगता है,
1: बिल्कुल,
0: है ना, कुछ नया लगता है। तो मैंने इंतजारी जानबूझ के, और बोले ये इंतजारी और रेजगारी बड़े कमाल, अरे इंतजारी बड़ा कमाल लग रहा है, ये खुमारी जो है इसको चेंज करो यार, कुछ नया लफ्ज ले आओ। तब उसकी जगह पे ये आया, आना आ भी जाना, ये ट्यून पे लिखा हुआ गाना है
1: जी।
0: और अनुराग साइकिया ने म्यूजिक किया है इसका। आना आ भी जाना इंतजारी है तेरी, ले जा जो रिश्तों की रेजगारी है तेरी, वो जो हम रोए साथ थे वो सब आके लेके जा। तो वो उसका उल्टा गाना था जो गुलजार साहब का था, ये उसके बरक्स था। तो ये सारा मैंने एक स्टोरी बोर्ड बना लिया कि इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं, और फिर मैंने इसको लिखा और गाना इस तरह से बना।

0: जो गाना हम सुनते हैं बहुत एंजॉय करते हैं हम स्टूडियो में बैठकर और हमारे श्रोता स्टूडियो के बाहर, लेकिन उस गाने के बनने के पीछे कहानियां होती हैं और कई बार मुश्किलात भी होती हैं कि आप जैसे बता रहे हैं कि अनुभव सिन्हा जी आपको दृश्य बता रहे हैं और आप लिख रहे हैं फिर चेंजेस, तो एक कितना आसान नहीं होता है सफर। तो फिल्म मुल्क में जो कव्वाली है बड़ी हिट, पिया समय हम सबका पसंदीदा कव्वाली हम सबकी, इस गाने की बनने की क्या कहानी थी?
1: ये तो बहुत ही मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने, और वो तो चले गए शूटिंग करने। मेरे साथ अक्सर होता है यही, उनकी फिर उनके गानों को लेके कि हाँ हाँ कर लेंगे और ऐसा, फिर वो शूटिंग पे चले जाते हैं और फिर जब जरूरत होती है तब कहते जल्दी करो गाना चाहिए। तो अब वो शूटिंग कर रहे हैं उधर लखनऊ के पास मलिहाबाद वगैरह में, और
0: ये अभी गाना लिख दो जल्दी।
1: हाँ, और हम जो हैं मैं और अनुराग साइकिया ने ये इसका किया था म्यूजिक, वो और
0: थप्पड़ में भी अनुराग साइकिया का संगीत था। हाँ, आर्टिकल 15 में भी
1: थप्पड़ सोलो था
0: और मुल्क में,
1: और मुल्क में एक ही गाना था उनका ये, बाकी प्रसाद साष्ठे ने दो गाने किए थे
0: जी जी।
1: हाँ, तो हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है, वो रूट पता नहीं चल रहा है कि जाना किधर है।
0: यहाँ पर अनुभव सिन्हा जी का भरोसा भी आप पर अटूट है।
1: हाँ,
0: कि वो गाना देकर चले गए हैं।
1: हाँ, अब मैं फोन कर रहा हूँ कि इसमें लिखना क्या है। अब वो क्योंकि उधर बिजी है शूटिंग में, ध्यान उधर लगा हुआ है, कह रहे मैं बताता हूँ। अब हम इंतजार कर रहे हैं, फिर उनका फोन आया, कह रहे हैं मैंने आपको एक वीडियो भेजा है वो देख लीजिए आप, सुन लीजिए। मैंने कहा सर आप बताइए ना कि उसमें क्या है और आप क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा कि साइंस ये कहती है कि जब सारे रंगों को हम मिलाते हैं तो सफेद रंग बनता है, सारे रंगों को मिलाने से सफेद रंग बनता
0: जी,
1: है
0: जी।
1: मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है सर?
0: बिल्कुल सही बात है, सफेद रंग तो अपने आप में सफेद रंग है, उसमें कोई भी रंग मिलाएंगे तो वो तो दूसरा हो जाएगा।
1: तो, हाँ, तो बोले नहीं ऐसे ही होता है, यही थॉट है। और ये गाना मुझे देशभक्ति इसमें होनी चाहिए और कौमी एकजहती होनी चाहिए,
0: जी, जी, जी।
1: ठीक है, पूरा देश एक साथ चलना चाहिए इस गाने में। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने उसको लिखा, मुश्किल गाना था बहुत
0: जी।
1: मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी,
0: बेहतरीन फिल्म थी,
1: डिफिकल्ट सिचुएशन थी
0: जी।
1: तो मैंने लिखा उसमें के पिया समाए जिया में मोरे पिया समाए, ये हुक है, उससे पहले लाइन आती है सात रंग हैं सातों पिया के,
0: सात रंग हैं सातों पिया के।
1: हाँ, क्या सात रंग होते हैं
0: जी।
1: अब मुझे सफेद पर खेलना है और उसको ऐसा बनाना है उसमें पूरा देश एक साथ जुड़ना चाहिए
0: जी, जी।
1: ठीक है, सारे समुदाय जो है वो एक साथ जुड़ने चाहिए, तो वो सारे जो है एक

0: साथ जुड़ने चाहिए। तो अच्छा, अभी इसमें जो पिया है ये वो भी पिया है जो मतलब जो जमीन पे है ना, और वो भी पिया है जो खुदा है, ईश्वर है, भगवान है,
1: खुदा है,
0: हाँ, और महबूब भी है हमारा, ठीक है, डबल मीनिंग है। इस तरह के बहुत सारे लागा चुनरी में दाग और फलाना, वो
1: छुपाऊं कैसे,
0: है ना, घर जाऊं, घर जाने का मतलब वो मरने के बाद की जिंदगी,
1: बिल्कुल,
0: है ना,
1: बिल्कुल, दो अर्थी,
0: तो हाँ, तो ये दो अर्थी, ये भी मैंने इसको करके आगे बढ़ाया। सात रंग हैं सातों पिया के, देख सखी कभी तू भी लगा के,
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया।
0: तो ये दूसरे वाले को वो कटाक्ष कर रही है कि तू भी कभी लगा के देख, तुझे भी वो सब पिया के ही लगेंगे,
1: रंग दिखाई,
0: हाँ, अलग अलग मत देख, हम सब एक हैं, सात रंग हैं सातों पिया के, देख सखी कभी तू भी लगा के, सातों से मिलके भई मैं उजली,
1: वाह क्या बात है,
0: सातों से मिलके भई मैं उजली, कोई हरा कोई गेरुआ बताए,
1: क्या बात,
0: पिया समाये, पिया समाये, जिया में मोरे पिया समाये। अभी देखने वालों की नजर है कि कोई मुझे हरा बता रहा है, कोई गेरुआ बता रहा है, लेकिन मैं तो सातों से मिलके उजली हो गई हूँ,
1: जी जी,
0: और तू भी लगा के देख कभी। तो ये बड़ा ही मतलब टेढ़ा गाना था, और ऐसा वो सटीक आया है ऐसा कि एक लाइन भी चेंज नहीं हुई, बड़े खुश हुए, बोले आगे बढ़ो।
1: तो ये जो फिल्म है वो एक संदेश देती है, ये गाना भी संदेश देता है, सब एकजुटता का संदेश है, और बेहतरीन फिल्म का बेहतरीन गाना ये सुनवाते हैं हम।

0: शकील साहब, अभी आपकी जर्नी के बारे में बहुत सारी बातें करनी हैं। अब यहाँ हम आते हैं आपकी फिल्म धोखा में। फिल्म धोखा
1: हाँ
0: एम एम करीम साहब ने गाया है और
1: जी
0: कंपोज भी किया है गाना,
1: जी
0: इसके बारे में एकदम संक्षेप में बताएं, क्योंकि
1: मतलब आप
0: आपके
1: भट्ट साहब के दरवाजे पर पहुंची हैं।
0: पहुंच गए, दस्तक दे रहे हैं। और महेश भट्ट साहब के साथ आपने बहुत सारा काम किया है और आपकी फिल्में दुनिया में उनका बहुत बड़ा योगदान, कह ले योगदान भी है, और काफी दोस्ती मित्रता है।
1: हाँ प्यार रहा बहुत उनका भट्ट साहब का उस जमाने में। तो ये फिल्म उनकी जो बेटी
0: पूजा
1: है
0: भट्ट,
1: पूजा भट्ट, उन्होंने डायरेक्ट की थी। और ये गाना जो है एम एम करीम साहब के साथ मुझे काम करने का मौका मिला, मेरे पसंदीदा कंपोज़र हैं वो। और उनको हिंदी नहीं आती ठीक से, है ना, तो भट्ट साहब के ऑफिस में उन्होंने मुझे धुन दी, ट्यून बताई हारमोनियम प्ले करके। मैंने उसको तब वो छोटे वाले जो टेप चलते थे मैंने रिकॉर्ड किया उसमें, और वहीं बैठ के मैंने गाना लिखा वो। और गाना लिखा जब उन्होंने उसको गाना शुरू किया, कहीं कहीं अटके लेकिन फिर वो रवां हो गया। जब उनके मीटर में पूरी तरह से रवां हो गया वो गाना
0: जी,
1: तो मुस्कुराहट उनके चेहरे की बढ़ती गई,
0: क्या बात है।
1: हाँ वो जो वो ट्यून में पूरी तरह से वो गाना, तो वो गाना जो है वो पूजा को भी बहुत पसंद था, बहुत खुश थी उस गाने से वो। लेकिन इससे पहले भट्ट साहब के यहाँ मेरी पहली जो फिल्म थी वो थी जहर। हाँ,
0: जिसका गाना बहुत मशहूर हुआ था, फिल्म का गाना इनकी आवाज, श्रेया घोषाल की आवाज में जो गाना था, अगर तुम मिल जाओ, बहुत बहुत मशहूर हुआ था।
1: जी जी, तो ये गाना दरअसल पाकिस्तानी गाना था, ये उसको यहाँ पर अनु मलिक साहब ने रिक्रिएट किया था। रेशमा की आवाज में भी आपको मिल जाएगा वो गाना, कई लोगों ने गाया हुआ है, पुराना गाना है। और ये फिल्म मोहित सूरी की भी पहली फिल्म थी, मोहित सूरी थे इसके डायरेक्टर, वो भी मतलब उनके भट्ट साहब के भांजे होते हैं
0: जी।
1: और ये फिल्म बड़ी कामयाब रही, इसके सारे गाने सुपरहिट हुए और सारे गामा म्यूजिक कंपनी ने इसके गाने रिलीज किए थे। और हमें जो है वो पहली बार आउटस्टैंडिंग म्यूजिक सेल नाम से हमें ट्रॉफी बांटी गई, उसका एक एक फंक्शन हुआ, एक तकरीब हुई उसकी, और बड़े खुश थे वो लोग क्योंकि म्यूजिक बहुत बड़ा हिट था और फिल्म भी हिट हो गई थी, सिल्वर जुबली का भी उसका ट्रॉफी मिला था हम लोगों को
0: जी।
1: तो उसमें गाना था वो के ने गाया था वो ऐ बेखबर ऐ बेखबर
0: जी जी जी
1: तो वो भी बहुत बेहतरीन गाना था। और एक गाना वो था जाने जा
0: जी जी
1: तुझसे बिछड़ के मैं जाऊं कहां, वो भी बहुत, सारे गाने ही बहुत हिट हुए थे उसके और बड़ी कामयाब फिल्म रही वो। तो वो पहली फिल्म थी मेरी भट्ट साहब के यहाँ।
0: जी जी, तो यहाँ पर कौन सा गाना सुनवाया श्रोताओं को?
1: आई बेखबर
0: सुनते हैं। हाँ। ये गाना

0: रूप कुमार राठौड़ के साथ आपने और भी काम किया है, और भी गाने उन्होंने गाए हैं, वो उनके बारे में।
1: हमारी शुरुआत ही साथ में हुई थी
0: जी।
1: रूप कुमार राठौड़ साहब के बारे में मैं बताऊं, जब मैं यहाँ नया नया आया था तो जो कामयाब म्यूजिक डायरेक्टर थे, बड़े म्यूजिक डायरेक्टर थे, वो पकड़ में नहीं आ रहे थे। रूप कुमार राठौड़ साहब से मेरी मुलाकात हुई
0: जी,
1: तो वो गजल सिंगर होते थे
0: जी जी,
1: और प्लेबैक सिंगर भी होते थे
0: जी, बिल्कुल
1: है ना। फिल्मों में उन्होंने कम गाया, लेकिन एज ए गजल सिंगर उनको ज्यादा
0: नाम शोहरत
1: और इज्जत है उनकी। लेकिन कुछ गाने भी उन्होंने गाए हैं और उसमें से कई गाने बड़े हिट हैं, जैसे ऐ जाते हुए लम्हों
0: जी, जी, जी।
1: संदेशे आते हैं, या वीर जारा का गाना है, है ना। इस तरह के कई गाने हैं जो उनके बड़े हिट हैं। तो जब मैं आया तो मेरी मुलाकात हुई तो वो मेरी गजलें सुनते थे और उसमें से चूज करते थे और गजलों को कंपोज करते थे, लेकिन वो गजल का टाइम भी जा रहा था। जब मैं आया हूँ उससे पहले गजल का एक बड़ा दौर आया था, जिसमें जगजीत जी की गजलें और पंकज उदास साहब की गजलें, हरिहरन साहब, रूप कुमार राठौड़ साहब, मतलब नए गजल सिंगर भी आते थे, उनके एल्बम भी खूब चल रहे थे
0: जी, जी।
1: लेकिन जब मैं आया हूँ तो ये दौर खत्म हो रहा था
0: जी, जी।
1: गजल का मार्केट डाउन हो रहा था जब मैं आया था। तो मेरे सामने ही वो रूप भाई ने कैफी आजमी साहब का एल्बम किया मेरे सामने, मीर तकी मीर का एल्बम किया मेरे सामने, तो मेरी वो गजलें कंपोज करते थे। अच्छा, मेरे पास कोई बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर नामी नहीं था, तो मैंने सोचा कि रूप भाई इतने अच्छे कंपोजर हैं, तो ये अगर फिल्म के गाने कंपोज करें और मैं लिखूं तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, और उनका नाम भी है। तो मैंने उनसे कहा कि आप फिल्म के गाने क्यों नहीं करते। उन्होंने कहा भाई मैं इसलिए नहीं करता कि लोगों को पता चलेगा दूसरे म्यूजिक डायरेक्टरों को, तो जो गाने गवा रहे वो भी बंद कर देंगे। ठीक है, ऐसा होता है हर प्रोफेशन में। तो थोड़े दिन तक तो वो इस बात पर टिके रहे और मैं उनके अंदर वो म्यूजिक कंपोजर को, जो फिल्म का म्यूजिक कंपोजर होता है, उसको मैं जगा चुका था, मगर
0: जी जी
1: है ना, कहीं ना कहीं उनके भीतर भी था वो, क्योंकि हर म्यूजिशियन का वो सपना होता है
0: जी जी,
1: वो म्यूजिक डायरेक्टर बनने का। तो एक दिन उन्होंने कहा चलो ठीक है यार, लाओ मुखड़े कंपोज करता हूँ। तो मैंने लिखने शुरू किए, उन्होंने कंपोज करने शुरू किए, और हमारा आज भी 500 गानों का बैंक है, जो हमारे गाने रूप कुमार राठौड़ साहब के बैंक में मेरे लिखे हुए
0: दर्ज है।
1: हाँ, और 400-500 गाने होंगे।
0: बहुत सारे नॉन फिल्म एल्बम भी हैं आपके नाम, एक जोगिया हमें याद आ रहा है।
1: हाँ, हाँ, हाँ,
0: जोगिया मन, तो वो कैसे बना वो गाना?
1: जोगिया मन तो अभी बात का है, वो एक नया कंपोजर है और बहुत अच्छा सुरीला है, हरीश सगा ने
0: जी
1: उनके साथ किया था मैंने, बहुत अच्छा लड़का है। और हरीश सगने के साथ हमने एक फिल्म की थी, विक्रम भट्ट साहब की एक फिल्म थी, उन्होंने मुझे फोन किया कि शकील भाई मैं फिल्म शुरू कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ आप गाने लिखें। तो मैं गया उनके यहाँ, तो उन्होंने मुझे हरीश सगने से मिलवाया
0: जी जी,
1: और उनकी एक फिल्म आई थी 1921 जिसमें जरीन खान थी हीरोइन, और वो फिल्म भी बहुत अच्छी चली, हिट हुई पिक्चर, और उसके सारे गाने आप सुनेंगे बहुत अच्छे गाने।
0: थोड़ा सा हम पीछे क्यों चलते हैं, 2004 में जब आपकी पहली फिल्म आई थी, तो वो फिल्म कैसे मिली आपको, पहली फिल्म तक आप कैसे गए? वो तेरा नाम था,
1: वो तेरा नाम था बिल्कुल।
0: तो यहाँ मतलब फिल्मी दुनिया में आपका प्रवेश कैसे हुआ? हम तो एंटर कर चुके हैं लेकिन आप हमारे श्रोताओं को बताइए कि शायरी की दुनिया से फिल्मी दुनिया में एंट्री कैसे हुई आपकी?
1: ये बात तब की है, 2000 का जो सन है उससे पहले की बात है।
0: अच्छा,
1: तब मैं सूरत में रहता था
0: जी जी,
1: और सूरत से मैं बॉम्बे आता जाता था, पैसे जब तक होते थे यहाँ रहता था, पैसे खत्म होते थे फिर सूरत चला जाता था।
0: अच्छा।
1: फिर पैसे इकट्ठा करता था फिर आता था। तो इस आने जाने में मेरी मुलाकात दिलीप सेन, समीर सेन से हुई। हाँ, दिलीप सेन से हुई और दिलीप सेन के साथ मेरा स्ट्रगल शुरू हुआ। तो दिलीप सेन एक फिल्म कर रहे थे, उसके गाने रिकॉर्ड कर रहे थे सहारा स्टूडियो में, जुल्मी फिल्म थी, अक्षय कुमार
0: जी जी जी।
1: तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई यहाँ सहारा में आ जाओ और अपनी किताब लेके आना,
0: वहाँ तनवीर खान भी के।
1: हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ तो मैं वहीं आ रहा हूँ तनवीर खान साहब तक आ रहा हूँ मैं। तो मैं सूरत से अपनी एक किताब, मेरी पहली किताब छप चुकी थी धूप दरिया, तो वो 96 में छपी थी वो किताब। तो ये 96 से 2000 के बीच की बात है। तो मैं वो किताब लेके आया और सहारा स्टूडियो में मैं बैठा था मिलने के लिए, तो तनवीर खान साहब की नज़र उस किताब पर पड़ी
0: जी।
1: उन्होंने कहा मैं देख सकता हूँ? मैंने कहा बिल्कुल देखिए। तो उन्होंने दो चार पेज इधर उधर पलटे और वो किताब जो थी उसका इंतसाब माँ के नाम था।
0: अच्छा।
1: हाँ, तो एक शेर जो है वो कैप्शन के तौर पर नीचे था कि अब भी सोते में ऐसा लगता है,
0: अब भी सोते में ऐसा लगता है, क्या बात है,
1: सर के नीचे तेरी हथेली है।
0: ओ क्या बात है।
1: ठीक है, तो ये शेर और कुछ शेर उनको बड़े पसंद आए। उन्होंने कहा यार ये किताब मुझे चाहिए। मैंने कहा ये तो मैं दिलीप सेन जी के लिए लाया हूँ, आप मुझे एड्रेस दे दें तो मैं सूरत जाऊँगा, आपको भेज दूंगा। अच्छा, मैं उनको नहीं पहचानता था, वो मुझे नहीं पहचानते थे, जबकि तनवीर भाई ने बहुत सारे फिल्मों के डायलॉग, बड़ी कामयाब फिल्मों के डायलॉग लिख चुके थे। इस फिल्म के डायलॉग राइटर भी वही थे। तो मैंने वो किताब उनको सूरत जाके भेजी और वो किताब पढ़ के इतने इम्प्रेस हुए, वो किताब वो मेरी शायरी दोस्ती का जरिया बनी।
0: ओ, क्या बात है।
1: तो हमारी दोस्ती हो गई। फिर उन्होंने मुझे कहा कि अगर आपको फिल्मों में काम करना है तो आपको बॉम्बे आना पड़ेगा, मुंबई में रहना पड़ेगा आपको। अब मैं डरता था कि मैं कहाँ रहूँगा, क्या करूँगा, कैसे सरवाइव करूँगा, इसलिए मैं लेट हो रहा था मुंबई आने में। लेकिन फिर मैंने सोचा यार एक ना एक दिन तो ये कदम उठाना ही पड़ेगा, तो आज ही क्यों ना उठाया जाए। और इनसे मुझे बड़ी उम्मीदें थी तनवीर साहब से, क्योंकि ये बड़ी फिल्मों के डायलॉग राइटर होते थे
0: जी जी,
1: तो एक जरिया था। तो मैं सूरत से मुंबई आ गया 2001 फरवरी में
0: जी।
1: और फिर तनवीर भाई के साथ घूमना फिरना, उनके सेट पे जाना, शूटिंग में जाना, ये सब मीटिंग में उनके साथ जाना, ये सब हो रहा था। उसी जमाने में रूप भाई से मुलाकात मेरी थी
0: जी।
1: तो ये दो लोग थे जिनसे मेरी उम्मीदें जुड़ी थी। तो रूप भाई मेरे गाने कंपोज कर रहे थे। अच्छा, दोनों से एक दूसरे के बारे में मैं बात करता था। मैं इनसे कहता था भाई रूप भाई को सुन लीजिए, मेरे गाने उन्होंने कंपोज किए हैं। अरे मैं सुन के क्या करूंगा, मैं ना डायरेक्टर हूं ना प्रोड्यूसर हूं। तब वो डायरेक्टर नहीं बने थे, बाद में डायरेक्टर भी बने। तो ये जो फिल्म थी वो तेरा नाम था, इसके वो डायलॉग लिख रहे थे और इस फिल्म के डायरेक्टर थे कुकू कोहली जी, और इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे बहुत बड़े आदमी, अलग बिजनेस से रेमंड के मालिक विजयपत सिंघानिया साहब, उन्होंने ये फिल्म प्रोड्यूस की थी। तो बड़े लोग बना रहे थे पिक्चर, अमरीश पुरी साहब का इसमें बहुत बड़ा किरदार था। फिल्म उन्हीं की थी सच पूछो तो, बाकी दो लड़के और दो लड़कियां थी उसमें। तो उन्होंने कहा कि भाई रूप भाई को फोन करो, उनको बुलाओ, मैं सेटिंग कराता हूँ कुकू जी के साथ, फिल्म कर रहा हूँ मैं। तो मैंने फ़ोन किया रूप भाई को, तो उन्होंने कहा कि मैं तो स्विट्ज़रलैंड या ऑस्ट्रेलिया में कहीं थे वो, मैं तो यहाँ हूँ। अरे मैंने कहा कि भाई ये सेटिंग करनी थी तो कब आएंगे, तो कुछ 15-15 दिन बताया कि बाद आऊँगा। तो खैर जब तक वो आते तब तक उस फिल्म के कई गाने दिलीप सेन समीर सेन जी ने रिकॉर्ड कर लिए थे और वो गाने लिखे थे निदा फाजली साहब ने। अब जब रूप भाई आए तो हमारी सेटिंग शुरू हुई, तो उनके पास एक गजल थी कतील शिफाई साहब की, जिसकी झनकार में दिल का आराम था वो तेरा नाम था।
0: क्या बात है।
1: तो वो तेरा नाम था इसी गजल से लिया गया था।
0: ओ अच्छा, क्या बात है भाई, अच्छी दिलचस्प कहानी।
1: हाँ मतलब पहले से कुछ नाम भरे रहा हो पिक्चर का, लेकिन जब ये गाना रिकॉर्ड हुआ ये गजल, तो वो तेरा नाम था कतील शिफाई साहब की गजल से लिया गया। ये नहीं कि गजल बाद में, गाना बाद में बना
0: जी,
1: पहले जो है गाना आया उसी में से नाम निकाला गया। जैसे मदहोशी थी उसका नाम मुमकिन था।
0: अच्छा।
1: हाँ, मदोशी के डायरेक्टर तनवीर खान साहब थे, राइटर डायरेक्टर, उसका नाम मुमकिन था। जब हमने ये गाना रिकॉर्ड किया मदोशी, तो इंदर कुमार साहब थे उसके प्रोड्यूसर, उनकी वाइफ थी और उनके साले, तो इंदर कुमार साहब ने कहा कि यार इसका नाम बदल दो, मदहोशी कर दो, ये जो गाना रिकॉर्ड किए हो ये टाइटल सॉन्ग बन जाएगा। तो इस तरह से मुमकिन हटा के मुमकिन नाम से उसका प्रचार भी शुरू हो गया था, बाद में वो मुमकिन हटा के मदहोशी किया गया। तो इस तरह से वो टाइटल आया, वो तेरा नाम था। फिर उसमें मेरे दो गाने लिए गए और उसमें कतील शिफाई साहब का भी गाना है, निदा फाजली साहब का है, मतलब दो बड़े शायर और गीतकारों के साथ मेरी शुरुआत हुई फिल्म में। उसमें एक गाना था जो मेरी जिंदगी का पहला गाना, वो ये था कि सुबह हो रही है, भोपाल का माहौल है, 1947 मुल्क आजाद हुआ है और भोपाल जो है वो मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया जा रहा है। ये उस टाइम की कहानी थी और समद खान कोई वहां के बड़े क्लासिकल सिंगर थे। तो सुबह हो रही है और पूरा उस जमाने की एक्टिविटी थी वो सब हो रहा है और समद खान वो छत पे रियाज कर रहे हैं अपने महल के और उनकी बेटी जो फिल्म की हीरोइन है वो कहीं वादियों में गा रही है। तो ये सिचुएशन थी
0: जी।
1: और फिल्म इसी गाने से शुरू होती है। तो वो मैंने लिखा था, मुझे पसंद है वो जी, जो राइटिंग है। और वो गाना इतना, मतलब अलका जी ने गाया उसको और उनको इतना अच्छा लगा, उन्होंने अपनी माता जी को फोन करके बुलाया और उनको सुनाया कि देखो आज भी ऐसे गाने लिखे जाते हैं। फिर वो गाना रिकॉर्डेड रूप भाई ने ले जाके लता जी को सुनाया, है ना दीदी, मैंने ये मेरी पहली फिल्म शुरू हुई है ये गाना रिकॉर्ड किया मैंने। तो उन्होंने गाना सुना लता जी ने, तो डांटा उन्होंने प्यार से
0: कि मुझे,
1: अरे ये गाना तो मेरा था, तूने मुझसे क्यों नहीं गवाया।
0: बड़ा कॉम्प्लीमेंट था।
1: हाँ, तो ये गाने में जो एक तो कंपोजिशन और दूसरे जो इसके लिरिक्स हैं के पूरे साहित्यिक, उसका मैं मुखड़ा सुनाता हूँ आपको
0: जी।
1: सुबह हुई दिन निकल रहा है, सुबह हुई दिन निकल रहा है, नदी के तट पर नहा के सूरज सुनहरे कपड़े बदल रहा है।
0: क्या बात है,
1: सुबह हुई दिन निकल रहा है।
0: वाह, बहुत।
1: आपके उदयपुर के रेडियो स्टेशन पर ये सुबह इसी गाने से होती है, डेली ये गाना बजता है।
0: हम यहाँ पर कौन सा गाना सुनवाए,
1: मदहोशी का टाइटल सॉन्ग सुना दे, मदहोशी है, मदहोशी है।

0: शकील साहब, एक बहुत जरूरी सी बात है और आपके करियर में भी बहुत ये उम्दा बात है, खास बात है। अपने श्रोताओं को बता दें कि आपने कहीं बहुत सारी जगहों पर, आपके बारे में पता है कि बहुत ऊंचे दर्जे की तालीम नहीं ली, स्कूल में जाने का मौका नहीं मिला आपको, लेकिन एक ऐसी तालीम है जो आपके भीतर है, आपने खुद से ली होगी। राम के वनवास पर आपकी बहुत सारी नज़में हैं, जिस पर किताब भी आई है और जिसका आप अक्सर जिक्र करते हैं, तो ये कहाँ से आइडिया आया, कहाँ से खोज की आपने, इतने बड़े फलक पर आपने कैसे कुछ कोशिश की, बताइए।
1: मेरी उर्दू में 8 किताबें हैं।
0: जी
1: मैं साहित्य से, उर्दू साहित्य से ही फिल्मों में और मंचों पर आया। 20 साल तक मैंने सिर्फ साहित्य लिखा, साहित्य के मैगजीन में छपता रहा। मैं बाद में इधर आया फिल्मों की तरफ और मंचों की तरफ। तो ये जो काम है मेरा, ये मैं जंगल पर लिख रहा था और लिखते लिखते उसी दरमियान उर्मिला का जो किरदार है वो कहीं से मेरी जिंदगी में आया। उर्मिला जो लक्ष्मण की बीवी है, लक्ष्मण की जो पत्नी
0: जी
1: है,
0: जी
1: उस किरदार ने मुझको झकझोर के रख दिया, मुझे हिला दिया उस किरदार ने, उसके बलिदान ने, उसकी कुर्बानी ने।
0: कि वनवास होता है लक्ष्मण को 14 वर्ष।
1: हाँ, और अहिल्या, ये दो ऐसे किरदार हैं जिन्होंने मुझे बहुत परेशान किया, बहुत बेचैन किया मुझे। और उसी जमाने में जब मैं अहिल्या के दर्द से दो चार था, उसको जी रहा था, और जब ये नज्म हुई उर्मिला, जब ये नज्म मैं लिख चुका, तो मुझे लगा कि यार जो रामायण है
0: जी
1: वो पूरी घटना जो है वो जंगल में है, वनवास जो राम जी का है 14 बरस का, तो क्यों ना रामायण के किरदारों पर नज़में लिखी जाएं। तो मेरी जो रामायण है वो वाल्मीकि जी से लेके अब तक जितनी भी रामायणें लिखी गई हैं,
0: तुलसीदास की
1: तुलसीदास की,
0: रामचरितमानस।
1: जी हाँ, तो और भी हमारे दूसरे लोगों ने लिखी हैं, मैथिली शरण गुप्त जी का काम है इस उर्मिला पे।
0: उर्मिला सखी वे मुझसे
1: हाँ
0: कहकर
1: हाँ
0: जाते,
1: हाँ हाँ
0: बहुत बढ़िया।
1: तो सभी ने मतलब कहानी के माध्यम से कहानी कही है। मैंने एक नया रास्ता निकाला, पात्रों के जरिए से, किरदारों के जरिए से मैंने रामायण कही है मैंने कहानी। तो मैंने तकरीबन सभी किरदारों पर नज़में लिखी, एक के बाद एक, जीता गया और
0: जी
1: लिखता गया। इस तरह से वो पूरी एक अलग सी रामायण हुई। और पहले मैंने उसका नाम सोचा था जंगल यात्रा, उस
0: ओह
1: किताब का, क्योंकि
0: जी
1: जंगल पे काम कर रहा
0: हाँ
1: था मैं,
0: हाँ
1: तो उस किताब का एक बड़ा हिस्सा जंगल भी है,
0: हाँ हाँ
1: रामायण और जंगल दोनों हैं उसमें। तो वो मेरे लेखन क्षेत्र में आता था, मेरा जो टॉपिक था जंगल उसमें वो वनवास आता था वो। तो जब ये रामायण उसमें शामिल हो गया, तब मुझे, मैंने सोचा कि यार क्यों ना इसका नाम वनवास रख दिया जाए,
0: हाँ
1: उससे बेहतर क्या नाम हो सकता है।
0: जी
1: अगर जंगल पर किताब है, रामायण पर किताब है, तो वो जो है इस तरह से उसका नाम वनवास रखा गया। और वो किताब इतनी सराही गई है, उर्दू में उसको कई अवार्ड मिले, और उर्दू के जितने भी बड़े क्रिटिक्स और पोएट हैं उर्दू साहित्य में,
0: जी
1: तकरीबन सभी ने उस किताब पर आर्टिकल्स लिखे हैं, लेख लिखे हैं, मजामीन लिखे हैं।
0: जी
1: तो किताब पर किताब का आ जाना बहुत बड़ी बात होती है, मतलब उस किताब पर इतने आर्टिकल लिखे
0: समीक्षात्मक
1: गए
0: किताब। जी
1: कि वो अलग से एक किताब आई है, उसको प्रोफेसर कौसर मजहरी साहब हैं जो जामिया मिल्लिया यूनिवर्सिटी में हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं
0: जी
1: उर्दू के, उन्होंने वो किताब कंपाइल की है।
0: क्या बात है।
1: हाँ, तो इस तरह से उस किताब पर किताब आई, और सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, पाकिस्तान के राइटरों को भी उस किताब ने बहुत इम्प्रेस
0: जी
1: किया। वहाँ पर एक बड़े राइटर थे, अभी उनकी डेथ हुई है, जो फिल्म के भी राइटर थे, साहित्य के भी थे और मंचों के भी थे, जिस तरह हमारे यहाँ जावेद साहब है, गुलजार साहब है, इस तरह का वो नाम थे, अमजद इस्लाम अमजद साहब,
0: जी जी
1: अभी इंतकाल हुआ उनका। उन्होंने इस पर आर्टिकल लिखा है,
0: जी
1: और किस तरह से मतलब हिंदू माइथोलॉजी और रामायण को लेके जो उनकी मालूमात थी वो भी कमाल है, वो जो लिखा है उन्होंने, बहुत
0: जी
1: अच्छा
0: जी
1: लिखा है। ये किताब हिंदी में जब आई तो पिछले 3 सालों से बेस्ट सेलर है, कविता की सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताबों में एक है ये,
0: क्या बात है।
1: पिछले 3 साल से लगातार। और अभी को दैनिक जागरण ने बेस्ट सेलर अवार्ड दिया गृह मंत्री अमित शाह जी के हाथ से मुझे।
0: क्या बात है,
1: तो
0: बहुत
1: हाँ बहुत शुक्रिया
0: और बहुत बढ़िया बात कही है। और आपके मुशायरों का जिक्र तो हुआ, शुरुआती मुशायरों का, लेकिन बाद के मुशायरों में हमने खुद देखा है, मेरी खुशनसीबी कि हमने आपको खुद देखा है और कलिंगा फेस्टिवल में देखा, प्रयागराज में हमने आंखों से देखा था जहां अनुभव सिन्हा जी भी उपस्थित थे, और आपकी जो शायरी थी वो आपके खजाने से निकल रही थी और पूरा हॉल खचाखच भरा था। ऐसे तमाम अनुभव हैं, तमाम वाक्यात हैं जिनकी बातें हम आपसे और फिर कभी करेंगे। आज तो बस इतना हम कहना चाहते हैं, धुआं धुआं है फजा, रोशनी बहुत कम है, सभी से प्यार करो, जिंदगी बहुत कम है, आपके ही अल्फाज हैं। आप क्या कहेंगे, आप विविध भारती के श्रोताओं को क्या पैगाम देंगे, क्या कहेंगे चलते चलते?
1: मैं यही कहूंगा कि अभी आपने जो सुनाया है, सभी से प्यार करो जिंदगी बहुत कम है, तो प्यार बहुत जरूरी है, और दुनिया में कुछ भी हो जाए ये जो मोहब्बत का जज्बा है ये हमेशा बड़ा रहेगा, बड़ा था, बड़ा है, बड़ा रहेगा। तो मोहब्बत कीजिए, सबसे पहले तो खुद से मोहब्बत कीजिए।
0: कुछ शायर अंदाज में एक शायर से हम उम्मीद करते हैं शायरी में ही कुछ बोले शेर के साथ
1: जी,
0: कोई अशार।
1: मैं अभी इधर एक नई गजल कही है मैंने, उसके दो तीन शेर सुना देता हूँ, और उसमें एक शेर है खास तौर से उसके लिए मैं ये शेर सुना रहा हूँ कि उसमें ये भी एक शेर है, सीख है कि भाई ठीक है ऊंच नीच होती है, कुछ हमारे अलग अलग सोच होती है, लेकिन उस सब को हटा के आगे की तरफ बढ़ते रहो।
0: क्या बात है,
1: मोहब्बत करते रहो। कि आबाद मेरी बाहों का घेरा नहीं हुआ, आबाद मेरी बाहों का घेरा नहीं हुआ,
0: क्या बात है,
1: मैं हो गया हूँ उसका वो मेरा नहीं हुआ।
0: वाह वाह वाह,
1: मैं हो गया हूँ उसका वो मेरा नहीं हुआ। वो शेर ये है जो मैं कह रहा हूँ कि ठीक है वो आप आगे बढ़ें, सांपों को मैंने रहने दिया उनके हाल पर।
0: क्या बात है,
1: सांपों को मैंने रहने दिया
0: उनके हाल पर,
1: उनके हाल पर, मंत्र भी सीख कर मैं सपेरा नहीं हुआ।
0: वाह वाह वाह,
1: ठीक है, मैंने उसे बदला नहीं लिया, मैंने मंत्र आता था मुझे, लेकिन ठीक है यार, तुम तुम्हारे रास्ते मैं अपने रास्ते। इसका एक शेर आखिरी खास तौर से कि देखिए ज्ञान जो है ना
0: जी,
1: शायरी में ज्ञान की बहुत जरूरत नहीं होती, लेकिन जब आपके पास ज्ञान भी होता है अलग अलग, तो वो शेर में आता है रचना के तौर पर, रचनात्मक तौर पर आता है,

0: तख्लीकी तौर पर, तो बहुत असर करता है। तो एक महाभारत का एक इल्म है, एक ज्ञान है जो इस शेर में आता है, मैं सुनाता हूँ। ये जिंदगी भी एक महाभारत का युद्ध है।
1: क्या बात है, ये जिंदगी भी एक महाभारत का युद्ध है, वाह।
0: ये सीख है हम सबके लिए, ये जिंदगी भी एक महाभारत का युद्ध है
1: जी।
0: लड़ते रहो शकील, अंधेरा नहीं हुआ।
1: क्या बात है, वाह वाह वाह। तो अब अपने श्रोताओं से, हमारा तो दिल नहीं कर रहा है कि हम इजाजत लें, और लग रहा है कि आपसे गुफ्तगु जारी रहे, और बहुत सारी अभी बातें हैं जो बाकी हैं आपसे पड़ताल करनी। आजमगढ़ जैसे छोटे से शहर से आप मुंबई जैसे महानगर में आकर और इतना नाम रोशन किया है, शायरी की दुनिया में, फिल्मों की दुनिया में आपने नाम रोशन किया है, इसके लिए आपको पूरे विविध भारतीय परिवार की ओर से बहुत बहुत मुबारकबाद हम दे रहे हैं, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया शकील साहब।
0: आप भी बहुत शुक्रिया ममता जी।
2: जानी मानी शायर और गीतकार शकील आजमी से ममता सिंह की बातचीत का दूसरा और आखिरी भाग अभी आपने सुना। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन रीमा जोशी और प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: उनके बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
3: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
2: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध

जिधर देखें उधर मस्तियां हैं, शोखियां हैं, तेरी निगाहों के ए सनम, जरा घबरा के जरा शर्मा के लूटते जाना, जलवे हैं तेरी निगाहों के ए सनम।

सीने में मोहब्बत का अंगारा, कोई क्या जाने कैसे बनेगा सहारा, ये बादल आवारा इसे कौन पहचाने।

ये रुत, ये नजारे, ये मस्त निगाहें, भूलना नहीं है ये पहली मुलाकात, ये प्यार भरी बातें, जीने के सहारे इन्हें भूलना नहीं है।

0: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत।
1: ये आँखें उफ़ यम्मा, ये सूरत उफ़ यम्मा।

तूफान उठाएगा ये जमाना, उठाने दो, दिल तो दौड़ता ही जाएगा अपनी मंजिल की ओर। नजरें मिली हैं तो सपनों की महफिल में शमा जलती ही रहेगी, दो दिल बढ़ते ही जाएंगे अपनी मंजिल की ओर।

सितारों का झिलमिलाना, चिरागों का जलना, दे रहा है इशारा, तुझे रोके तो कैसे। दिल पहले भी कब भरा था, आज भी प्यासा है, ये आजमाइश होती ही रहेगी, ऐ सनम तुझे रोके तो कैसे।

सायंकालीन सभा में हम अपने सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। अब से थोड़ी ही देर में यानी शाम 5:35 पर आप सुनेंगे युवा दोस्तों को संबोधित कार्यक्रम युववाणी। शाम 6 बजे प्रादेशिक मुख्य समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। शाम 6:02 पर कृषकों एवं ग्रामीणों को संबोधित कार्यक्रम होगा खेती बाड़ी। चर्चा होगी कृषि वानिकी का महत्व, साथ ही चर्चा में सुनिएगा लतर वर्गीय सब्जियों की किस्में। भेंट वार्ता आप सुनेंगे मोटे अनाजों में शामिल फसलें एवं उसकी वैज्ञानिक खेती। भेंट वार्ताकार हैं डॉक्टर प्रमोद कुमार, कृषि विशेषज्ञ क्षेत्र कृषि अनुसंधान केंद्र छिया की से भेंट करता हैं संतोष कुमार। शाम 6:30 पर कृषकों को संबोधित कार्यक्रम होगा किसान वाणी। चर्चा होगी समसामयिक कृषि कार्य पर। आज की बात में अरहर एवं तिल की खेती पर चर्चा सुनेंगे। भेंट वार्ता आप सुनेंगे खरीफ की उन्नत कृषि यंत्र पर। भेंट वार्ताकार हैं डॉक्टर अशोक कुमार सिन्हा, कृषि विशेषज्ञ चिया की पलामू से भेंट करता हैं प्रतिमा वर्मा। आज की नसीहत में सब्जियों में मल्चिंग विधि, आज का मौसम और जानेंगे आज के बाजार का भाव इसी कार्यक्रम के अंतर्गत।

शाम 7 बजे प्रादेशिक समाचार 7:10 पर जिले में आजकल प्रसारित करेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। शाम 7:15 पर आप सुनेंगे ICC वेमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के आंखों देखा हाल का सीधा प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 8:45 पर हिंदी में समाचार, 9 बजे अंग्रेजी में समाचार, 9:15 पर उर्दू खबरें आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

रात 9:30 पर आप सुनेंगे पुनः ICC वुमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 का प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। मैच समाप्ति के बाद आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। रात 11:00 हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। हमारी ये सभा समाप्त होगी हमेशा की तरह रात 11:10 पर। तो अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण।

आकाशवाणी के ये डाल्टनगंज केंद्र है FM 103 मेगा हर्ट्स पर। प्रस्तुत है युवा दोस्तों को संबोधित कार्यक्रम युववाणी।

आज की शाम युवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मोहम्मद फखरुल हसन का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है बहुत बहुत आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में। दोस्तों, झमाझम बारिश से मन प्रफुल्लित हो उठा है और बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। यस, और क्या कहें, जब बारिश होती है तो खुदा की रहमत बरसती है। बहुत बहुत शुक्र है खुदा का कि उसने इतनी अच्छी बारिश बरसाई और इस बारिश में सब जो हैं इसका आनंद लिए। दोस्तों, इस कार्यक्रम में आज हम चर्चा करेंगे सफलता का मूल मंत्र आत्मविश्वास। इसी कार्यक्रम में जयपूर्णा विश्वकर्मा की वार्ता भी हम आपको सुनवाएंगे। विषय होगा अधिक उम्र में शादी, और कुछ मनोरंजन भी हम आपका करवाएंगे फिल्मी गीतों के माध्यम से। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं चर्चा से। दोस्तों, इंसान कभी परिस्थितियों का गुलाम नहीं होता, परिस्थितियां इंसान की गुलाम होती है, लेकिन परिस्थितियां उन्हीं लोगों की गुलाम होती है जिनमें आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा होता है। मित्रों, जो लोग स्वयं पर विश्वास रखते हैं, परिस्थितियां उन्हें कभी तोड़ नहीं पाती, बल्कि स्वयं पर विश्वास रखते हैं वे परिस्थितियों को तोड़ देते हैं। सदा याद रखिए दोस्तों, आत्मविश्वास व्यक्ति की सबसे बड़ी शक्ति होती है। स्वामी विवेकानंद का कथन है, प्रतिभा क्षमता होते हुए भी उसे अभिव्यक्त होने पर हर तरह की परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। जो लोग धैर्य, लगन एवं आत्मविश्वास रखते हैं, संसार उन्हीं की प्रतिभाओं का लाभ ले पाता है। मित्रों, चुंबक को लोहे के पास ले जाने पर चुंबक लोहे को आकर्षित करता है। ठीक इसी प्रकार आत्मविश्वासी व्यक्ति को सफलता स्वयं में आकर्षित करती है। दुनिया का कोई भी कार्य कठिन नहीं है, बस आवश्यकता है स्वयं पर पूर्ण विश्वास रखते हुए उसकी ओर बढ़ने की। मित्रों, पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्पष्ट लिखा है, कौन सा काज कठिन जगमाही, जो नहीं होए तात तुम नाही। अर्थात इस संसार में ऐसा कौन सा कार्य है जो तुम नहीं कर सकते। कोई भी कार्य कठिन नहीं होता, परिश्रम करने से सभी कुछ आसान हो जाता है। दोस्तों, आप स्वयं पर पूर्ण विश्वास रखिए, अपनी शक्तियों को पहचानिए एवं जान लीजिए कि संसार का कोई भी लक्ष्य आत्मविश्वास का सहारा लेकर प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों, आत्मविश्वासी व्यक्ति परिश्रमी, साहसी और ऊर्जावान होता है। उसके पास कोई संकट या रोग हावी नहीं हो पाता, शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से मजबूत और स्वस्थ रहता है। इसलिए दोस्तों, आत्मविश्वास विश्वास की शक्ति से किसी भी प्रकार की परेशानियों पर विजय प्राप्त कर सफलता अर्जित की जा सकती है। बस दोस्तों, थोड़ी धैर्य और आत्म साथ रखें, फिर क्या है, आप अवश्य जिस कार्य में हैं सफलता अवश्य आपके कदम चूमेगी। अपनी कोशिश को दोस्तों हमेशा जारी रखें और कभी भी हौसले को पस्त ना करें, हमेशा बुलंद रखें और आगे बढ़ते जाएं। दोस्तों, एक शेर अर्ज है, बुलंदियां उसे ढूंढती हैं जो आज परिस्थितियों में संभल रहा है, कल फूल उसी के राहों में होंगे जो आज कांटों पे चल रहा है। तो दोस्तों, ये हुई कुछ बातें। चलिए दोस्तों, बारिश का मौसम है तो चलिए सुनवाते हैं इसी पर एक आपको प्यारा सा नगमा।

0: अब आइए दोस्तों जय अपूर्णा विश्वकर्मा की वार्ता सुनते हैं। विषय है अधिक उम्र में शादी।
1: विलंब से विवाह, अकेलेपन का खतरा एवं चिकित्सकीय दुष्प्रभाव। प्रस्तावना। विवाह भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है। इसे केवल एक सामाजिक अनुबंध नहीं बल्कि जीवन को संतुलन और पूर्णता प्रदान करने वाला संस्कार माना गया है। विवाह वह संस्था है जहां व्यक्ति को न केवल जीवन साथी मिलता है बल्कि एक परिवार, सामाजिक प्रतिष्ठा और भावात्मक सहारा भी प्राप्त होता है। किंतु आधुनिक युग में शिक्षा, करियर और आत्मनिर्भरता के दौर ने विवाह की परंपरागत धारणाओं को बदल दिया है। पहले जहां विवाह एक निश्चित आयु तक कर दिया जाता था, वहीं अब लोग इसे अपने बेहतर जीवन स्तर की चाह में सपनों और महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति तक टालते रहते हैं। आजकल युवाओं में देर से विवाह करने की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ रही है। विवाह को टालना व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हिस्सा है, परंतु इसके कुछ गहरे और बहुआयामी सामाजिक, मानसिक और चिकित्सकीय परिणाम भी हैं जिन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता। सामाजिक एवं मानसिक पहलू। भारत जैसे समृद्ध देश में विवाह केवल दो व्यक्तियों का निजी निर्णय नहीं बल्कि यह एक सामाजिक संस्था है। यहाँ विवाह परिवार, कुटुंब और समाज को जोड़ने वाली कड़ी के रूप में देखा जाता है, परंतु पिछले कुछ दशकों से शहरीकरण, उच्च शिक्षा और नौकरी के अवसरों ने विवाह की औसत आयु को काफ़ी आगे बढ़ा दिया है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुषों की औसत विवाह आयु लगभग 26 वर्ष और महिलाओं की 22 वर्ष थी, परंतु 2020 के बाद महानगरों में यह औसत बढ़कर पुरुषों में 30 वर्ष और महिलाओं में 27 वर्ष तक पहुंच गई है। सपनों के संग जीना चाहा पर राह में छूट गया सहारा, भीड़ में रहकर भी तन्हा हूँ, मन खोजे अपनापन प्यारा। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, उसे हर हाल में भावात्मक सहारे की आवश्यकता होती है। यदि समय पर विवाह न हो तो अकेलापन धीरे धीरे मानसिक तनाव और अवसाद का रूप ले लेता है। विवाह में देरी करने वाले लोगों में डिप्रेशन, एंग्जायटी और सामाजिक अलगाव की समस्या अधिक पाई जाती है। जीवन साथी न मिलने से जीवन में अधूरापन का अनुभव बना रहता है। 35-40 वर्ष की आयु में अकेलापन और अधिक गहराई से महसूस होता है, जब मित्र और रिश्तेदार अपने परिवार में व्यस्त हो जाते हैं। मानसिक कारण, डर और अनिश्चितता, गलत साथी मिलने का डर, समाज की सोच का डर, असफल वैवाहिक जीवन का डर, तलाक दर में वृद्धि। कोर्ट कचहरी में तलाक के केसों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिससे विवाह को लेकर अनिश्चितता अधिक हो गई है। अकेलेपन का खतरा। अकेलापन केवल शारीरिक

0: परिस्थिति का अभाव नहीं बल्कि मन का खालीपन है। जब उम्र बढ़ती है तब व्यक्ति की समायोजन क्षमता कम हो जाती है, छोटी छोटी बातों पर समझौता कठिन हो जाता है, जिससे देर से किए गए विवाह में संबंधों की मधुरता प्रभावित होती है। साथी की तलाश में उम्र गुजर जाते हैं, अपनापन बातों में ही ढूंढते रह जाते हैं, देर से मिले तो रिश्ता भी नाजुक होता है, मन की थकान में सपने बिखर जाते हैं। विवाह जीवन के अकेलापन को अवश्य दूर कर सकता है, पर अगर जीवन साथी अच्छा ना मिले तो विवाहित होते हुए भी व्यक्ति जीवन में अकेला रह जाता है। सपनों का घर टूटा, सब कुछ चुपचाप बिखर गए, वचन जो निभाने थे वे आज टूट कर रह गए। अकेलेपन की चुप्पी ने ही मन को घेरे रखा है, तलाक की ठंडी हवा में सब कुछ उजड़ गए। चिकित्सकीय दुष्प्रभाव। विलंब से विवाह केवल सामाजिक या मानसिक समस्या नहीं है, इसका प्रभाव शरीर पर भी पड़ता है। महिलाओं में, भारतीय महिलाओं में देर से मातृत्व की प्रवृत्ति अब आम होती जा रही है, लेकिन भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के अध्ययनों के अनुसार 35 वर्ष से अधिक उम्र में गर्भधारण करने पर गर्भपात की संभावनाएं लगभग 30% अधिक होती है। सिजेरियन डिलीवरी के मामले में वृद्धि होती है। डाउन सिंड्रोम जैसे जन्मजात विकारों का जोखिम बढ़ जाता है। अधिक उम्र में विवाह व मातृत्व की देरी से गर्भधारण की संभावना कम हो सकती है। उम्र बढ़ने के साथ हार्मोनल असंतुलन, गर्भावस्था संबंधी जटिलताएं जैसे उच्च रक्तचाप, मधुमेह और संतानोत्पत्ति की कठिनाइयां सामने आती हैं। पुरुषों में प्रजनन क्षमता में धीरे धीरे कमी, जीवन शैली संबंधी रोगों का बढ़ना तथा मानसिक तनाव जैसे दुष्प्रभाव देखे जाते हैं। देर से विवाह करने वाले पुरुषों में हृदय रोग और तनाव जनित बीमारियां बढ़ सकती हैं। भारत में पुरुष अक्सर करियर स्थिर होने के बाद विवाह करना चाहते हैं, लेकिन 45 वर्ष के बाद पिता बनने वाले पुरुषों में संतान में ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का खतरा बढ़ जाता है। शुक्राणुओं की गुणवत्ता और गतिशीलता घटती है। गर्भाधारण की प्रक्रिया लंबी और जटिल हो सकती है। मानसिक स्वास्थ्य। अवसाद, चिंता और आत्मविश्वास में कमी भी विलंब से विवाह और लंबे अकेलेपन का परिणाम हो सकती है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में विवाह न होने पर व्यक्ति अक्सर सामाजिक बहिष्कार, ताने और असुरक्षा का अनुभव करता है। कई बार यह स्थिति अवसाद और चिंता का कारण बनती है। संतुलित दृष्टिकोण। विवाह शीघ्र करना या देर से करना दोनों ही व्यक्तिगत निर्णय हैं, परंतु यह ध्यान रखना आवश्यक है कि जीवन केवल करियर या आर्थिक स्थिरता तक सीमित नहीं है, बल्कि भावात्मक और सामाजिक संतुलन भी उतना ही जरूरी है। समय पर विवाह करने से न केवल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर रहता है, बल्कि जीवन में एक साथी का सहारा भी मिलता है। भारतीय संस्कृति में परिवार और विवाह को जीवन का आधार माना गया है। यद्यपि आधुनिकता ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बढ़ावा दिया है, परंतु शोध और अनुभव दोनों बताते हैं कि अनावश्यक विलंब से विवाह करने के परिणाम न तो सामाजिक रूप से सुखद होते हैं, न मानसिक और चिकित्सकीय रूप से। करियर का उजाला जरूरी है, सपनों का उड़ान भी जरूरी है, संतुलित जीवन जीने के लिए जीवन का साथी भी जरूरी है। निष्कर्ष। विवाह में अनावश्यक विलंब करना आधुनिक प्रवृत्ति तो है, परंतु इसके परिणाम गहरे और बहुआयामी हैं। यह अकेलेपन, मानसिक तनाव और चिकित्सकीय कठिनाइयों का कारण बन सकता है। सामाजिक दृष्टि से व्यक्ति अलग थलग और अकेला हो जाता है। मानसिक दृष्टि से आत्मसम्मान की कमी, अवसाद और तनाव बढ़ता है। चिकित्सकीय दृष्टि से प्रजनन क्षमता घटती है, गर्भधारण में कठिनाई और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं सामने आती हैं। भारतीय संदर्भ में सामाजिक दबाव, रिश्तों की कठिनाई और पारिवारिक अपेक्षाओं का बोझ यह परिवार और समाज दोनों के लिए चिंता का विषय बनता है। अतः उचित यही है कि व्यक्ति करियर और जीवन की आकांक्षाओं को पूरा करते हुए भी विवाह और परिवार को संतुलित महत्व दे। समय पर विवाह न केवल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, बल्कि यह जीवन में अपनापन, सुरक्षा और स्थिरता का आधार भी है। जीवन तभी पूर्ण होता है जब उसमें सपनों की पूर्ति के साथ साथ भावनाओं का सहारा और अपनापन भी मौजूद हो। समय पर विवाह न केवल व्यक्ति को संतुलन देता है बल्कि उसे जीवन की वास्तविक सुख समृद्धि से भी जोड़ता है।
1: अभी आप सुन रहे थे जयपूर्णा विश्वकर्मा की वार्ता, विषय था अधिक उम्र में शादी। दोस्तों, अब कुछ बातें, कर भला तो हो भला। जी हाँ, खुश रहना है तो दूसरों की खुशहाली की कामना करना ही ईश्वर की सच्ची प्रार्थना है। जब व्यक्ति ईर्ष्या, द्वेष, अभिमान आदि मनोविकारों से स्वतंत्र होता है तो उसका मानसिक स्तर स्वतः ही पवित्रता की ओर गतिमान होता है। ये तो सारी दुनिया जानती है कि केवल अपने लिए तो पशु तक नहीं जीते, वे भी अपने बच्चों का यथाशक्ति पालन करते हैं। परोपकार की भावना फलदायी होती है। दोस्तों, आत्मा, परमात्मा एवं परोपकार के विचार व्यक्ति को निर्भय, साहसी और शक्तिशाली बनाते हैं। व्यक्ति की यही विशेषताएं उसे सफलता के बेहद करीब लाकर खड़ा कर देती है। इसके विपरीत अगर व्यक्ति में स्वार्थ, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष आदि के बुरे विचार होते हैं तो वे उसके आंतरिक संतुलन को छिन्न भिन्न कर देते हैं। इससे न केवल व्यक्ति की मानसिक शांति भंग होती है बल्कि कार्य क्षमता भी घटती जाती है। इसी सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सारे व्यक्ति देखें एवं किसी को भी दुख ना हो, यही तो वो भाव है दोस्तों जो कहता है कि सभी से प्रेम करो, किसी से नफरत ना करो, जो तुम्हें बुराई दे तुम उसकी भी भलाई करो, ईश्वर तुम्हारा भला करेगा, तुम्हें प्रेम करेगा। जी हाँ दोस्तों, बेशक संत कबीर जी ने समूचे ज्ञान का सार प्रेम बतलाया है। ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, और रहीम ने सचित किया है, रहमन धागा प्रेम का मत तोरियो चटकाए, टूटे से फिर ना जुरे जुरे गांठ पर जाए। इसलिए दोस्तों इसका ख्याल रखें, और इन्हीं बातों के साथ अब युवाणी कार्यक्रम से हमें दीजिए इजाज़त।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवाणी। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 मेगा हर्ट्स पर। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से।

नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं समीर बाखला। SIR अभियान शुरू होते ही राज्य में सियासत गर्मा गई है। भाजपा के वरिष्ठ नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि इससे संताल क्षेत्र में अवैध घुसपैठियों की पहचान हो सकेगी। वहीं झामुमो के सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि चुनाव आयोग को निष्पक्ष तरीके से अपना काम करने देना चाहिए। पश्चिमी सिंहभूम जिले में भी आज से SIR के तहत एन्यूमरेशन चरण की शुरुआत हो गई है। पहले दिन उपायुक्त मनीष कुमार ने चायबासा के विभिन्न मतदान केंद्रों का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि वे BLO का सहयोग करें। लोहरदगा व्यवहार न्यायालय परिसर में आज भूमि बोध पर एक दिवसीय विधिक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन करते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजकमल मिश्रा ने कहा कि समाज में होने वाले 90% विवाद जमीन से जुड़े होते हैं। गढ़वा जिला पुलिस ने शहर के रंका मोड़ के पास गुप्त सूचना पर छापेमारी कर जुआ खेल रहे 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 51,820 रुपए नगद, 5 मोटरसाइकिल, 8 मोबाइल फोन और ताश के पत्ते बरामद किए हैं। पश्चिमी

0: देहरादून जिला प्रशासन ने आगामी पर्व त्योहारों के मद्देनजर आज चाईबासा में विधि व्यवस्था को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक की। उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक की संयुक्त अध्यक्षता में हुई इस बैठक में संवेदनशील इलाकों में नियमित पुलिस गश्ती बढ़ाने के निर्देश दिए गए। गोड्डा में आज हुल क्रांति दिवस के अवसर पर वीर शहीद सिद्धू कान्हू को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उप विकास आयुक्त श्रीकांत विस्पोते और झामुमो जिला अध्यक्ष प्रेमानंदन मंडल ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर गोड्डा कॉलेज के आदिवासी कल्याण छात्रावास के सैकड़ों छात्र छात्राओं ने एक विशाल रैली निकाली और शहीदों के आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक मुख्य समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है FM 103 MHz पर। प्रस्तुत है कृषकों एवं ग्रामीणों को संबोधित कार्यक्रम खेती बारी।

0: खेतीबाड़ी कार्यक्रम सुनने वाले तमाम श्रोताओं को रागनी कुमारी का प्यार भरा नमस्कार।
1: प्रतिमा वर्मा का भी नमस्कार।
0: स्वागत है आप सबों का कार्यक्रम खेतीबाड़ी में। श्रोताओं, आज हम बात करेंगे कृषि वानिकी का महत्व के बारे में। कृषि वानिकी का अर्थ कृषि भूमि पर एक साथ फसलें, पशुपालन और पेड़ पौधे उगाना है। यह प्रणाली मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करती है, अतिरिक्त आय और लकड़ी प्रदान करके किसानों को आर्थिक सुरक्षा देती है और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में मदद करती है।
1: जी हाँ किसान भाइयों, हम बात कर रहे हैं कृषि वानिकी यानी एग्रो फॉरेस्ट्री की। कृषि वानिकी के कुछ लाभ हम आपको बता दें, जैसे मृदा स्वास्थ्य में सुधार, पेड़ों की पत्तियाँ गिरकर प्राकृतिक खाद यानी मल्च बनाती है जिससे मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ती है और नमी बनी रहती है। अतिरिक्त आय और सुरक्षा भी कृषि वानिकी का एक महत्वपूर्ण गुण है। मुख्य फसल के अलावा किसान लकड़ी, फल और चारा बेचकर अतिरिक्त आय कमा सकते हैं जिससे उन्हें आर्थिक मजबूती मिलती है। पर्यावरण संरक्षण भी होता है इससे। यह पेड़ों की जड़ों द्वारा मिट्टी कटाव को रोकता है और कार्बन डाइऑक्साइड को सोख कर जलवायु परिवर्तन को कम करने में सहायक है। पेड़ गहरी मिट्टी से पोषक तत्व खींचते हैं और हवा को रोककर फसलों को नुकसान से बचाते हैं, यानी प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर उपयोग भी इससे होता है।

0: गायन भाइयों, अभी आप भरत सिंह भारती की आवाज़ में लोकगीत सुन रहे थे। आइए भेंटवार्ता सुनवाते हैं आपको। विषय है मोटे अनाजों में शामिल फसलें और उसकी वैज्ञानिक खेती। भेंटवार्ताकार हैं क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र चिया की पलामू के कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर प्रमोद कुमार, बातचीत कर रहे हैं संतोष कुमार।
1: अपने खेतों से घर वापस आए, गांव घर के कार्य में लगे चौपाल में उपस्थित सभी किसान भाई बहन, बालकों, बुजुर्गों को संतोष कुमार का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका कार्यक्रम किसान वाणी में। जी हाँ किसान भाइयों, हम बहुत सारी फसलों की बातें आपसे करते हैं, ढेर सारी योजनाओं की बात करते हैं, तरह तरह की बातें किसान वाणी कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपसे साझा करते रहते हैं। आज हम बातें करेंगे मोटे अनाजों की खेती की। जी हाँ, जिसकी आज आवश्यकता है और सरकार इस पर बहुत बल दे रही है ताकि हमारे किसान भाई मोटे अनाजों की खेती करके वो देश को स्वस्थ रख सकें और अधिक से अधिक मुनाफा भी प्राप्त कर सकें। और मोटे अनाजों में कौन सी फसलें मुख्यतः शामिल हैं और इसकी वैज्ञानिक खेती हम कैसे करें, इसके अतिरिक्त और भी ढेर सारी बातें हैं मोटे अनाजों से संबंधित। इस विषय पे संबंधित आज हम विस्तृत जानकारी साझा करेंगे पलामू जिला के क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र चियांकी के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर प्रमोद कुमार जी से। स्वागत है आपका कार्यक्रम में, नमस्कार।
2: नमस्कार।
1: सर्वप्रथम तो हमारे श्रोताओं को, हमारे किसान भाइयों को ये बताया जाए कि हमारे किसान भाई मोटे अनाजों में किसको शामिल कर सकते हैं।

0: भाई, मोटे अनाज का मतलब आप लोग जान जाएं कि इसमें ज्वार, बाजरा, रागी और फॉक्सटेल बाजरा की चार चीजें आती है मुख्य रूप से। ऐसे तो बहुत सारे कोदो, सावा, आप लोग पलामू, लातेहार, गढ़वा के आसपास के किसान हैं तो ये जानते होंगे कि पहले लोग जो अनाज करते थे तो सावा, कोदो, ये सब चीजों की भी खेती करते थे। और ज्वार जिसको हम लोग बात कर रहे हैं उसको आप लोग जिनोर भी बोलते हैं। तो जिनोर, बाजरा, रागी और फॉक्सटेल मिलेट, इसके जो हम अब इसकी चर्चा करते हैं कि जो ये फसलें जो होती हैं, इस फसल में सभी जगह इसकी खेती की जा सकती है और खास करके इस फसल में जलवायु परिवर्तन का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो जलवायु परिवर्तन हम लोग बार बार सुनते हैं कि जलवायु परिवर्तन, मौसम हमारी पलामू की कम वर्षा हो रही है, ज़्यादा तापमान हो रही है, समय पर वर्षा नहीं हो रही है, कभी ज़्यादा वर्षा हो रही है, कभी कम वर्षा, इसी को जलवायु परिवर्तन करते हैं। और ये जलवायु परिवर्तन में आप ज्वार, बाजरा, रागी, मड़ुआ, ये सब की खेती बहुत अच्छे तरह से कर सकते हैं और इसकी जो है पानी की भी रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है, कम पानी में ये फसलें होती है। और इसके लिए मिट्टी भी बहुत अच्छी मिट्टी नहीं चाहिए। आप जब देखते हैं टाण वाली मिट्टी जिसमें बहुत अच्छा उपजाऊ नहीं है, उस सब चीजों के लिए आप जो है ज्वार बाजरा की खेती करेंगे तो उसके लिए उपयुक्त है। और इसमें जो है कार्बन का उत्सर्जन कम भी होता है। इस फसल में और फसलों की तुलना में उर्वरक की मात्रा कम लगती है तो हम उर्वरक से भी बच जाएंगे। और पूरे भारत वर्ष में मिलेट का जो ज्वार बाजरा का उत्पादन है इसमें हमारा जो देश है जो है ये जो है बहुत अन्य देशों की तुलना में बहुत अच्छे पहले नंबर पे आता है। और रागी, कुटकी और इस सब के क्षेत्रों में झारखंड का जो है छठा स्थान पूरे अपने राष्ट्र में है। तो हम लोग देखें भाई, किसान भाई, कि बाजरा के इसके फायदे क्या है। हमारे प्रधान माननीय प्रधानमंत्री ने 2023 वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय जो है बाजरा दिवस के रूप में मनाने का घोषणा की है। ये हमारा प्रस्ताव, भारत ऐसा देश है जो इसने विश्व पटल पर प्रस्ताव को रखा और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इस प्रस्ताव की स्वीकृति की गई और 75 से 90 देशों ने इसकी जो है मनाने का इसमें हाँ में हाँ मिलाई भारत का। और ये अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया यूएनओ के द्वारा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की। ये हमारे लिए बहुत, भारत वर्ष के सभी लोगों के लिए खुशी का विषय है कि इसको जो है 2023 को हम लोग बाजरा दिवस के, बाजरा ईयर के रूप में मनाने का निर्णय लिया। हालांकि किसान भाई, आप देखते हैं कि हम लोग जो पहले तीन तरह के ग्रेन होते हैं, एक होता है कि निगेटिव ग्रेन। किसान भाई, निगेटिव ग्रेन धान और चावल को बोलते हैं क्योंकि इससे खाने से आदमी बीमार पड़ते हैं।
1: जी जी।
0: और कुछ ग्रेन होते हैं जो कि न्यूट्रल ग्रेन होते हैं जिसको खाने से जो है हम ना स्वस्थ भी ज्यादा रहते हैं और अगर अस्वस्थ है तो स्वस्थ नहीं हो सकते हैं, लेकिन उसके खाने से अस्वस्थ नहीं होते। जैसे हमारा जो है ज्वार वगैरह हो गया और रागी, मिलेट्स, ये सब जो है उसको पॉजिटिव ग्रेन बोलते हैं। यानी कि अगर पहले से हमें कोई रोग है तो उस रोग को ये सभी के आटा खाएंगे या इन सभी के प्रोडक्ट खाएंगे, दलिया खाएंगे तो आपको ये स्वस्थ भी रहेंगे और जो कोई पहले से भी बीमारी है उसको भी ठीक करने की क्षमता इन मोटे अनाजों में है। और हम लोग देखते हैं किसान भाई कि मोटे अनाजों को हम लोग गेहूं के आटा को पहले मानते थे कि ये अच्छा चीज है चावल की तुलना में, लेकिन गेहूं के आटा में ग्लूटीन नामक तत्व होने के चलते वो तुरंत हमारे शरीर में जैसे ही जाता है घुल जाता है और शुगर की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ जाती है। अमूमन आप लोग चीनिया रोग जिसको बोलते हैं, शुगर की मात्रा बढ़ गई तो इसके खाने से बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर शुगर की शिकायतें आ रही हैं। तो हम लोग अगर मोटे अनाज की बात जिसको कहते हैं ज्वार, बाजरा, रागी, जो हमारे 70 के दशक से पहले लोग अपने खेतों में करते थे और बीच में गेहूं को हम लोग खाना शुरू कर दिए क्योंकि गेहूं के अनाज में जो है ग्लूटीन होने के चलते थोड़ा सा हमारा मुलायम हो गया, रोटी खाने में मुलायम हो गया तो हमारा जीभ का टेस्ट हमने देखा, लेकिन इससे बीमारियां हमारी बढ़ती गई। तो मैं यही कहूंगा कि ज्वार बाजरा का जो है इसमें जो है ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है 52 है और गेहूं के आटे में ग्लाइसेमिक इंडेक्स 100 है। यानी कि हमारा जो है ज्वार बाजरा खाने से बहुत ज्यादा अच्छा, जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जितना कम रहेगा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से हमारा है। तो किसान भाई, इसमें देखिए एंटीऑक्सीडेंट है, प्रचुर मात्रा में विटामिन है, आयरन है, मिनरल्स है। हम जो खाना खाते हैं हमारा पोषक तत्व जो है ये पोषण के लिए, भारत सरकार ने इसको जो कहा है कि हम इसकी MSP को बढ़ा दिए। MSP भी भारत सरकार आपको जो खरीदेगी तो ये ज्यादा रेट पे खरीदेगी और साथ साथ हमारे जो जितने भी राशन के दुकानों में या मिड डे मील स्कूलों में है, अपने माननीय प्रधानमंत्री और झारखंड सरकार भी इस दिशा में हमारे कदम उठा रही है कि इसको वहां तक भी पहुंचाना, उपलब्ध कराने की बात हो रही है। इसके फायदे इतने हैं। हैं तो हम लोगों को शुगर की बीमारी भी नहीं होगी, हम लोगों को एंटीऑक्सीडेंट है और हम एंटी कैंसरस है, इन सारे फायदों के हो रही है अगर हम मिलेट की खेती करते हैं। और हमने देखा कि ये सारी खेतियों के अगर हम करते हैं तो ये सारे हमको स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कितने फायदेमंद है। अब रही हम लोग जो किसान भाई

0: कि जो पलामू ऐसे क्षेत्र में है जहाँ की कम वर्षापात होती है और कम वर्षापात में इन फसलों की वाटर रिक्वायरमेंट कम है, यानी कम पानी और खराब मिट्टी में ये हो जाती है, तो जरूरत है इन फसलों की करने की। जैसे कि हम लोग ज्वार की अगर खेती करते हैं किसान भाई खरीफ के मौसम में, तो ज्वार के साथ अगर अरहर दे देते हैं कितनों पलामू में, पिछले बार देखिए धान का रोपा आप लोग के यहाँ 5% पूरे पलामू में गढ़वा में हुआ, यानी कि हम लोग पानी के अभाव में धान की खेती नहीं कर पाए, जिससे हमारा मनुष्य का तो अनाज नहीं पूर्ति हुआ और जानवरों का चारा भी उपलब्ध नहीं हो पाया। तो इसमें दोनों चीज़ों में क्या है कि आपको चारा भी बहुत मिलेगा जानवरों के लिए और अनाज भी मिलेगा। तो ज्वार की अगर खेती करते हैं वैज्ञानिक तरीके से तो हम लोगों को जो है बहुत ही ज़्यादा फायदे, 110 से 115 दिन की फसल है और इसका बीज दर जो है ये 12 केजी प्रति हेक्टेयर, यानी 5 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आप अपने खेतों में लगाएंगे, अपलैंड में टाड़ भूमि में जिस तरह आप मक्का को लगाते हैं। तो इस मक्के को लगा के आप करेंगे तो हमको जो है ज्वार की खेती, जिसको जिनोर भी आप बोलते हैं, तो इसे घबराना नहीं है कि हमको जिनोर है, और इसमें उर्वरक की भी जो कम मात्रा लगती है 60-40-20 की रहती है, तो 110 से 115 दिन की है। और इससे सबसे खास बात यह था कि किसान भाई इससे जो चारा जो है 140 क्विंटल प्रति हेक्टेयर ये अनाज के साथ चारा भी हमको मिलता है।
1: इसकी किस्में क्या होंगी?
0: इसके बीज से, हाँ इसके किस्में है, CSB 17 है, CSB 20 है, SG998 है और CO29 जो है, ये चारे के लिए बहुत ही अच्छा उपयुक्त है। ये क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र चियाकी में भी हम लोग इसका बीज का उत्पादन करते हैं और कितना भी कम वर्षा हो तो ये फसलें होना निश्चित है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कभी कभी कि इसके खेती जो है अरहर के साथ भी आप करते हैं, अरहर और ज्वार के साथ में, एक लाइन अरहर एक लाइन ज्वार या दो लाइन अरहर दो लाइन ज्वार, तो आपको क्या होगा किसी विषम परिस्थितियों में अगर खूब पानी नहीं पानी यहाँ पड़ा तो आपकी ज्वार की फसल होना निश्चित है और अरहर की फसल होना निश्चित है। अगर अगर हम लोग जो है ज्वार अगर फसल हो गए तो कम से कम हम भूखे नहीं मरेंगे, ज्वार की आटा खाएंगे, तो आप इसमें रोग और व्याधियां भी कम लगती है। तो हम लोग किसान भाई इसकी खेती को हम लोग जो है चारे के रूप में भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान देंगे किसान भाई इसकी ज्वार की जब भी कटाई करेंगे तो 45 दिन के अंदर किसानों को चारा के रूप में नहीं खिलाना है, यानी जानवरों को 45 दिनों के बाद खिलाएं, या फिर अगर आप पटवन सुविधा हो रही है बारिश हो रही है अच्छी तो फिर आप खिला सकते हैं, नहीं तो इसमें एक जहरीला तत्व भी रहता है जो कि पानी की कमी के चलते ACN का फॉर्मेशन होता है। तो हम आपको सावधान करते हैं कि 45 दिनों के बाद ही चारे के रूप में इसको काट के आप जानवरों को खिलाएं, और अगर हम लोग अनाज के रूप में लेते हैं तो अनाज के रूप में ये जो फसलें हैं 25 से 30 क्विंटल हमको जो है ज्वार की पैदावार प्रति हेक्टेयर होगी। तो आप ज्वार की खेती, और सरकार जब इस पर आपको MSP ज़्यादा दे रही है, खरीदने का वादा दे रही है, राशन के दुकानदारों में सप्लाई करने की बात कर रही है, तो हम लोग ज्वार की खेती करके भी अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं।
1: अच्छा एक बात हम ये जानना चाहेंगे, अभी हमारे किसान भाई खेत की तैयारी कैसे कर रहे
0: हैं? हाँ किसान भाई अभी मई का महीना हमारा जो चल रहा है, अब कोई किसान अगर गर्मा जुताई नहीं किए हैं तो आप अपने खेतों में गर्मा जुताई कर दें। सबसे उपयुक्त समय ये होता है कि अगर गर्मी के दिनों में अप्रैल महीना में देखे होंगे कि बारिश कुछ हुई थी, तो जस्ट बारिश खत्म होने के बाद अपने खेतों में जुताई कर दें। अगर गर्मा जुताई कर देते हैं तो कीट वगैरह का प्रकोप सब खत्म हो जाएंगे, घास खत्म हो जाएंगे, और इसके बाद अगर खेतों में थोड़ा जल धारण करने की क्षमता बढ़ जाएगी। जैसे ही जून जुलाई के महीना आएंगे, 15 जून से 15 जुलाई के बीच में इसका उपयुक्त समय लगाने का होता है, तो आप इसके जो है लगा सकते हैं। और घास निकालने के लिए हम लोग एट्राजीन का भी प्रयोग कर सकते हैं, अगर ज़्यादा हमारे पास में घास की समस्या आती है तो। ये सारी फसलों को अगर करते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तो हम लोग करते हैं। तो हम यही सलाह देते हैं कि पलामू में पहले ज्वार बाजरा मोटे अनाज, इसमें फाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है तो हमको जो है गैस की प्रॉब्लम नहीं होगी। अन्य लाभों के साथ में तो आप लोग जरूर ज्वार बाजरा की खेती कीजिए। सरकार इसके लिए मोटे अनाजों के लिए जिला कृषि कार्यालय में बीज की भी व्यवस्था कर रही है झारखंड सरकार के द्वारा, और इसको प्रोत्साहित करने के लिए जिला कृषि कार्यालय अंतर्राष्ट्रीय ज्वार बाजरा दिवस मना रहा है, और क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र में प्रशिक्षण पाकर इसकी खेती हम लोग बीज उत्पादन का करते हैं। जो किसान भाइयों को जो हमने प्रभेद बताया, पुनः बता दें CSB 17 और CSB 20, ये जो प्रभेद जो है क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र से अगले वर्ष, इस साल तो नहीं अगले वर्ष उपलब्ध होगा, आप बड़े पैमाने पर यहाँ से अच्छे बीजों को लेकर आप अपने यहाँ खेती कर सकते हैं
1: जी। और इस प्रकार से हमें जो उम्मीद है कि हमारे किसान भाई अगर इसकी खेती करेंगे तो जिस तरह से इसकी मांग बढ़ रही है निश्चित रूप से वो भरपूर लाभ कमाएंगे।
0: हाँ
1: आप थे पलामू जिला क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र चियाकी के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर प्रमोद कुमार जी। आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और मोटे अनाजों की खेती से संबंधित जानकारियां हमारे किसान भाइयों के साथ साझा की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: ग्राइन भाइयों अभी आप सुन रहे थे मोटे अनाजों में शामिल फसलें और उसकी वैज्ञानिक खेती भेंटवार्ता था

0: वार्ताकार थे क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र चिया की पलामू के कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर प्रमोद कुमार, बातचीत कर रहे थे संतोष कुमार। आइए आगे चर्चा करते हैं लत्तर वर्गीय सब्जियों की खेती हमारे ग्रामीण भाई कैसे करें और उससे कैसे फायदा लें। बेलदार या कद्दू वर्गीय सब्जियों जैसे लौकी, करेला, खीरा, कद्दू और तोरई की खेती गर्म और नम जलवायु में सबसे अच्छी होती है। अच्छी पैदावार के लिए जल निकासी वाली उपजाऊ बलुई दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। इन्हें सहारा देने के लिए मचान विधि का उपयोग करने से उपज और गुणवत्ता दोनों बढ़ती है और लत्तर वर्गीय सब्जियों की खेती आप ऐसे कर सकते हैं। तो कौन कौन सी सब्जियां हैं जो आप लत्तर वर्गीय सब्जियों में आती हैं? ये हैं लौकी, करेला, खीरा, तुरई जिसे हम नेनुआ भी कहते हैं, कद्दू, पेठा या कुमड़ा। खेती की कुछ खास तकनीक है जिसका उपयोग कर आप लत्तर वगैरह सब्जियों की खेती कर सकते हैं। ऐसे बुआई का समय आप समझ लें, बेल वाली सब्जियों को साल में दो मुख्य सत्रों में बोया जा सकता है। ऐसे गर्मी की फसल फरवरी मार्च और दूसरा जो बरसात का फसल है जून जुलाई, जो अभी आप कर सकते हैं। तो खेत की तैयारी और खाद देने का काम कर लें। खेत की 2 से 3 बार जुताई कर मिट्टी को भूरा बना लें। बुआई से पहले प्रति एकड़ खेत में लगभग 15 से 20 टन सड़ी हुई गोबर की खाद, 50 किलो नाइट्रोजन, 25 किलो फास्फोरस और 25 किलो पोटास अच्छी तरह मिला दें।
1: बीजों को बोने से पहले कार्बनडाजिम या ट्राइकोडर्मा से उपचारित करें ताकि फंगस से बचाव हो सके। बुआई हमेशा नालियों और मेड़ों पर करनी चाहिए। कतार से कतार की दूरी 1.5 से 2 मीटर और बीज से बीज की दूरी लगभग 60 से 75 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। लताओं को जमीन पर फैलाने के बजाय मचान पर आप चढ़ाने के बहुत सारे लाभ हैं। जैसे फल जमीन के संपर्क में नहीं आता है जिससे वे सड़ने से भी बच सकता है। धूप अच्छी मिलने से फलों का रंग और आकार शानदार होता है। कीटों और बीमारियों का प्रकोप कम होता है। अब बात करते हैं सिंचाई और खरपतवार प्रबंधन की। तो गर्मी के मौसम में पौधों को हर 4 से 5 दिन में पानी की आवश्यकता होती है, जबकि बरसात के मौसम में केवल जल निकासी का ध्यान रखें। समय समय पर निराई गुराई करके खेत को साफ रखें। अब बात करते हैं कीट और रोग प्रबंधन की। तो इसमें सबसे पहले फल मक्खी है जो कीट है या फल में छेद कर देती है, इसके नियंत्रण के लिए आप फेरोमोन ट्रैप का प्रयोग करें। दूसरा है पाउडर फफूंदी, पत्तियों पर सफ़ेद पाउडर जैसा जमा हो जाता है, इसके समाधान के लिए घुलनशील सल्फर का छिड़काव करें। फलों का जब वे कोमल हो तभी तोड़ लेना चाहिए, इससे पौधों की नई उपज क्षमता बनी रहती है। ये हुई बातें लत्तर वर्गीय सब्जियों की खेती की। और अब बातें बरसात के मौसम में पशुओं का आहार का। तो बारिश के मौसम में अक्सर पशुओं को ज़्यादा बीमारी होती है, इसलिए बारिश में पशुओं की खास देखभाल की बेहद ज़रूरी होता है। इसमें पशुओं के रख रखाव पर भी ध्यान देना होता है। पशुओं के दूध उत्पादन में भी इसमें कमी देखने को मिलती है, खासकर तब जब मौसम की वजह से पशु किसी बीमारी का शिकार हो जाते हैं। ऐसे में किसान भाइयों के लिए ज़रूरी है कि पशुओं की देखभाल के लिए वे विशेष इंतजाम रखें। बारिश के मौसम में घास की उपलब्धता काफ़ी हो जाती है, पशुओं को घास के रूप में काफ़ी चारा मिलता है, आसपास हरियाली हो जाती है, मौसम भी हर तरफ हरा भरा और सुहाना होता है। लेकिन बारिश के मौसम के शुरुआती दौर में कई सारी बीमारियां भी साथ आ जाती है जो सबसे ज़्यादा पशुओं को परेशान करती है। मौसमी बीमारियों की वजह से कई बार मवेशियों की मौत भी हो जाती है और छोटे मोटे रोगों की वजह से पशुओं का पाचन तंत्र और उसके खाने की इच्छा भी प्रभावित होती है। कभी बुखार तो कभी घाव का संक्रमण अक्सर पशुओं में देखने को मिलता है।
0: ग्रामीण भाइयों, हर मौसम में पशुओं के लिए विशेष आहार होता है ताकि मौसमी परिस्थितियों के अनुसार मवेशियों का शरीर सही तरीके से सामंजस्य स्थापित कर सके। पशु बेजुबान होते हैं, उन्हें किसान जैसा चारा दे दे।

0: खा लेते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा किसान बारिश के मौसम में ज़्यादा घास दे देते हैं। इस समय घास की पैदावार भी ज़्यादा होती है। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि बारिश के मौसम में ज़्यादा घास या गीला चारा देना पशुओं के पाचन के लिए सही नहीं होता। इससे पशु में दस्त लगने की शिकायत हो सकती है। जब पशु दस्त की समस्या से ग्रस्त हो जाते हैं तो शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं। दुधारू पशुओं के पालन में इस बात का ज़्यादा ध्यान रखें। दुधारू पशुओं के साथ ऐसी समस्या होने पर किसानों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हो जाता है। इसलिए पशुओं को गीला चारा यानी घास के साथ कम से कम 40% तक सूखा चारा जरूर दें। इससे आहार में संतुलन रहेगा। बारिश के मौसम में पशुओं को देने वाले आहार के मामले में कुछ बातों का ध्यान रखें। उतना ही चारा दें जितना वे खाते हैं। सुबह और शाम का चारा एक साथ ना लगाएं। कई बार किसान यह भी सोचते हैं कि दोनों समय का चारा एक साथ लगा देते हैं, इससे समय की बचत होगी और शाम को आसानी से पशुओं को चारा दिया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सूखे चारे में गीलापन आ जाने से उसमें फफूंद की समस्या हो जाती है। फफूंद पशुओं में बदहजमी का कारण बनती है। इसलिए दुधारू पशुओं के लिए इस बात का ध्यान रखें, खास ध्यान रखें बल्कि, ताकि उसे बदहजमी या दस्त की शिकायत ना हो, ताकि पशु कमज़ोर ना हो और पशुओं के दूध उत्पादन की क्षमता में भी कमी ना हो। पशुओं को गंदा चारा पानी से दूर रखें। उन्हें सूखे स्थान में रखने की व्यवस्था रखें। मवेशियों के लिए रोगों का मौसम होता है बरसात का मौसम, इसलिए पशुओं की खास देखभाल और रोगों से बचाव तो जरूरी है ही, साथ ही यदि पशु रोग के शिकार हो जाए तो उसकी प्रभावी रोकथाम भी ज़रूरी है।
1: तो ये हुई बातें बरसात के मौसम में पशुओं के आहार की, और अब हमारा समय भी आपसे विदा लेने का हो चला है, इसलिए बातें आज बस यहीं तक। तो इसी के साथ कार्यक्रम खेतीबाड़ी से अब दीजिए रागनी कुमारी और
0: प्रतिमा वर्मा को
1: अनुमति।
0: नमस्कार।

हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड के 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। अभी हमारे ग्रामीण भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम खेतीबाड़ी, और कुछ ही पलों में आप सुनेंगे किसान वाणी कार्यक्रम किसान भाइयों के लिए।

0: प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसानवाणी कार्यक्रम सुनने वाले तमाम श्रोताओं को प्रतिमा वर्मा का प्यार भरा नमस्कार
1: और साथ ही रागनी कुमारी का भी नमस्कार।
0: आज सबसे पहले बातें समसामयिक कृषि कार्य की। तो किसान भाइयों, मौसम अपेक्षाकृत सुहावना रहेगा। हल्की से मध्यम वर्षा के कारण तापमान में हल्की कमी की संभावना है और वातावरण में नमी बनी रहेगी। गरज चमक, तेज हवाओं और वर्षा की संभावना के कारण मौसम अस्थिर रह सकता है। फसलों का गिरना और फलों का टूटना जारी रहेगा। पिछले दिनों हुई भारी वर्षा और आने वाले दिनों में भी वर्षा की संभावना को देखते हुए किसान भाई किसी फसल की बुआई से पहले जल निकासी जरूर कर लें ताकि बुआई के लिए जाएं। विभिन्न खरीफ फसल की बुआई का उपयुक्त समय 30 जून तक है। धान के फसल को छोड़कर अनसही फसल की बुआई मेड़ बनाकर ही करें। रोपा धान वाले खेतों में जल जमाव के लिए मेड़ को दुरुस्त रखें और विभिन्न सब्जियों और फसलों के खेतों से समुचित जल निकास के लिए व्यवस्था जरूर बनाए रखें। खड़ी फसलों में सिंचाई आप रोक दें किसान भाइयों, और जल निकासी की सुविधा रखें। जो सब्जियां पक गई हैं उनकी तुड़ाई और गर्मा मक्का की कटाई, दोनों के लिए आप साफ मौसम का थोड़ा इंतज़ार कर लें। मौसम साफ होने तक खाद या कीटनाशकों का छिड़काव भी आप रोक दें। वर्षा जल संचयन के लिए अपने खेत के निचले भाग में छोटे छोटे गड्ढे यानी डोभा का निर्माण कर लें। बारिश के बाद जल्दी बोई गई सब्जियों में मुरझाने की समस्या होने पर 1.5 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन और 25 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को 10 लीटर पानी मिलाकर छिड़काव करें।
1: बात करते हैं रागी की, तो मरुआ यानी रागी सूखी और बदलते मौसम को झेलने में बहुत सक्षम फसल है। धान जैसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत वाली फसलों की तुलना में इसे बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है। फसल लेने के लिए किसान भाई खेत की तैयारी करें, 3 से 4 बार की अच्छी जुताई कर लें और पाटा चला दें। गोबर की सड़ी खाद 2 टन प्रति एकड़ की दर से अच्छी तरह से मिला दें। मड़ुआ टाण जमीन में बोई जाने वाली फसल है, इसलिए जल निकासी का अच्छी तरह से प्रबंध करें। अरहर की बुआई के लिए खेत की तैयारी करें। बीज किसी प्रमाणित स्रोत से ही खरीदें। बीजों को बोने से पहले अरहर के लिए उपयुक्त राइजोबियम और फास्फोरस में घुलनशील बैक्टीरिया से उपचार करें और अच्छे अंकुरण के लिए खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। इस उपचार से बीजों के अंकुरण और उत्पादन में वृद्धि होती है। अरहर की उन्नत किस्में हैं LRG 41, बिरसा अरहर 1, नरेंद्र अरहर 1 और 2, बहार ICPH 2671। इनमें से किसी एक किस्म का चुनाव करें। अब बात करते हैं मक्का की, तो मिट्टी में मौजूद नमी का इस्तेमाल करके बुआई का काम पूरा करें और यह पक्का करें कि पानी की निकासी ठीक हो ताकि जड़ों के आसपास पानी जमा ना हो। फॉल आर्मी वर्म के प्रकोप पर नज़र रखें। पौधों के ऊपरी हिस्सों की नियमित रूप से जाँच करें। बारिश के बाद निराई गुराई से जुड़े जरूरी काम और खरपतवार हटाने का काम करें। नाइट्रोजन का टॉप ड्रेसिंग तभी करें जब मिट्टी में पर्याप्त नमी हो। बीज स्थली में समुचित नमी बनाए रखें और बीज स्थली के चारों तरफ जल निकास के लिए बनाई गई नालियों को दुरुस्त रखें। पहले से उगाए गए 10 से 12 दिनों के बिचड़े में यूरिया का भुरकाव 2 किलोग्राम प्रति 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की दर से करें और यूरिया भुरकाव से पहले मिट्टी में उपलब्ध नमी का अवश्य ध्यान रखें। जो किसान भाई अभी तक बिचड़ा तैयार करने के लिए बीज स्थली में नहीं डाल पाए हैं, वे 3 से 4 दिनों के अंतराल पर क्रमशः 3-4 किस्तों में बीज बोएं और बीज स्थली को जमीन की सतह से थोड़ी ऊपर बनाएं। अब बात करते हैं सोयाबीन की, तो सोयाबीन फसल लगाने के लिए किसान भाई वर्षा के शीघ्र बाद बुआई करें। इसके लिए अच्छे जल निकास वाली हल्की दोमट मिट्टी उत्तम होती है। इसके लिए बीज दर 30 से 32 किलोग्राम प्रति एकड़ के दर से लें। इसके उन्नत किस्में हैं बिरसा सोयाबीन 1, बिरसा सोयाबीन 2, JS 97, RKS 18 और बिरसा सोयाबीन 31। बीजों को बुआई से पहले राइजोबियम कल्चर से अवश्य उपचारित कर लें। और बात करते हैं टमाटर की, तो टमाटर की फसल में जल जमाव और जड़ों को बीमारियों से बचने के लिए पानी की निकासी का इंतजाम करें। ज़्यादा नमी से अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट और बैक्टीरियल विल्ट जैसी बीमारियां हो सकती है। इसलिए फसल की नियमित निगरानी करें, पौधों को गिरने से बचाने और बीमारियों का असर कम करने के लिए उन्हें सहारा दें। भिंडी में एलोवेन मोजैक वायरस को नियंत्रित करने के लिए नीम का तेल 2 मिलीलीटर 1 लीटर पानी के साथ सुबह के समय छिड़काव करें, या इस रोग को नियंत्रित करने के लिए पीले चिपचिपे जाल का उपयोग करें। तो ग्रामीण भाइयों, ये हुई बातें समसामयिक कृषि कार्य की, और अब कार्यक्रम में अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। अंतराल के बाद हम पुनः हाजिर होंगे।
2: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना मिलेगा।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान सभी।

0: किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनित।
3: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
4: पुतला बोल रहे?
3: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
4: मतलब?
3: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ,
4: पर हम तो सब ही डाले हैं।
3: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
4: सच है?
3: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
4: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
5: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
6: अंतराल के बाद एक बार पुनः स्वागत है आप तमाम किसान भाई बहनों का कार्यक्रम किसान वाणी में।
7: किसान भाइयों, आज आपको एक भेंट वार्ता सुनवाते हैं। विषय है खरीफ के उन्नत कृषि यंत्र। भेंट वार्ताकार हैं कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक कुमार सिन्हा, और इनसे बातचीत कर रही हैं प्रतिमा वर्मा।
6: तमाम किसान भाइयों को प्रतिमा का प्यार भरा नमस्कार। आज हम हैं कृषि विज्ञान केंद्र चियाकी में, जहां हमारी मुलाकात कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अशोक कुमार सिन्हा से होती है। उनसे विस्तृत बातें होंगी गेहूं की बुआई हेतु उन्नत कृषि यंत्र और तकनीक के बारे में। डॉक्टर साहब, आपको हमारा नमस्कार।
8: नमस्कार,
6: स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम किसान वाणी में। सबसे पहले आप हमें बताइए कि आप हमारे किसान भाइयों को क्या उन्नत तकनीक और यंत्र बताएंगे जिससे वो ज़्यादा पैदावार ले पाएं।
8: पहले मैं किसान भाइयों को नमस्कार अपना करता हूं, और मैं किसान भाइयों को ये बताना चाहता हूं कि
9: खरीफ की उन्नत कृषि यंत्र के बारे में किसान भाइयों से हम चर्चा करेंगे जी। क्योंकि खरीफ का सीजन आ रहा है, और खरीफ में हम जो है धान, मक्का, अरहर ये लगाने वाले हैं, तो इसके लिए कृषि यंत्र की जरूरत पड़ती है। क्योंकि कृषि यंत्र का उपयोग करेंगे तो हमारे जो है लागत खर्च में कमी आएगी, और लागत खर्च में कमी आएगी तो हमारे किसान का जो है आर्थिक लाभ ज़्यादा होगा। तो इसके लिए कृषि यंत्र में जैसे अब धान की खेती करते हैं, तो धान की खेती करने के लिए पहले जो है कि खेत की तैयारी करते हैं, तो खेत की तैयारी के लिए कौन कौन से कृषि यंत्र की जरूरत पड़े। जैसे धान रोपने के लिए खेत की तैयारी करना है, तो पहले हम किसान भाइयों को ये कहेंगे कि खेत की जुताई जो है एक मोल्ड वोल्ड हल आती है, मोल्ड वोल्ड हल से पहले जुताई करें। मोल्ड वोल्ड हल से पहले जुताई करने से क्या होगा कि वो जो मोल्ड वोल्ड हल है वो मिट्टी को पलट देती है। मिट्टी को पलटने से ये फायदा होगा कि जो ऊपर घास वगैरह होगी मिट्टी में, वो नीचे मिट्टी में दब जाएगी, और दब जाने से जो बरसात के जो बारिश की पानी होगी, वो बारिश के पानी में वो सड़ गल करके एक हरी खाद का काम करें। मिट्टी पलटने वाली हर जो मोल्ड वोल्ड है जिसको हल हम कर रहे हैं, तो मिट्टी पलटने वाली हर से करने से ये फायदा होगा। उसके करने के बाद खेत की दूसरी जुताई जो है आप जो है कल्टीवेटर से करें। कल्टीवेटर एक जो है मिट्टी को भुरभुरा बना देगा, तो भुरभुरा बनाने से कल्टीवेटर से तैयारी की करें, या रोटावेटर से भी कर सकते हैं। रोटावेटर से है करने से क्या है कि मिट्टी को अच्छी तरह से मिला करके और जो घास वगैरह उसको छोटे छोटे टुकड़े में भी कर सकता है। तो ये सारे मशीन जो औजार हैं, इस औजार से धान की खेती के लिए वो जो है उपयोग कर सकते हैं। दूसरी बात आती है कि जैसे मक्का लगा रहे हैं या अरहर लगा रहे हैं, तो उसके लिए भी बहुत सारे कृषि यंत्र हैं जो खेत की तैयारी के लिए उपयोग किए जाते हैं, या फिर उसके बाद जो लगाने के बाद भी बहुत सारे कृषि यंत्र हैं जो उपयोग किए जाते हैं। तो उसके लिए खेत की तैयारी वही खेत की तैयारी करनी है। अगर खेत की तैयारी मोल्ड वोल्ड हल से पलटने वाले हल से भी कर सकते हैं, कल्टीवेटर से भी कर सकते हैं। उसके बाद लगाने के बाद उसमें डिबलर एक विधि है, मगर मक्का का लगा रहे हैं तो डिबलर विधि से लगाने से भी क्या होता है कि वो लाइन से आप उसमें बुआई कर सकते हैं डिबलर विधि से। उसके बाद जो आती है निकाई गुड़ाई की बात आती है,

0: तो निकाई गुड़ाई भी जो उसमें जरूरी, क्योंकि मक्का में और अरहर में निकाई गुड़ाई भी जरूरी होती है, तो निकाई गुड़ाई के लिए आप जो है ड्राई वीडर या जो है हैंड वीडर या पावर वीडर का भी उपयोग किया जा सकता है। ये सारे उपयोग करके आप जो है उसमें निकोनी कर सकते हैं, जिससे कि आपका उत्पादन उसमें ज़्यादा है। दूसरी बात है कि एक मिट्टी चढ़ाने वाली भी औजार होती है, उस औजार से भी आप जो है मिट्टी चढ़ा करके मक्का पर मिट्टी चढ़ाया जा सकता है, तो उसका भी उपयोग करके मिट्टी चढ़ाने वाले औजार का उपयोग करके उसके उत्पादन में वृद्धि पा सकते हैं। इस तरह से खेती में बहुत सारे जो औजार है इसका उपयोग करके अगर खेती करते हैं ये सारे औजार का, तो आपका आर्थिक लाभ ज़्यादा होगा और उत्पादन में भी वृद्धि होगी, जिससे कि आपका लागत खर्च भी कमी होगी और वृद्धि भी ज़्यादा होगी, जिससे कि आपका आय इसमें ज़्यादा आएगा। दूसरी बात आती है, जैसे अब उसकी हार्वेस्टिंग की बात आती है, उसको कटाई पकने के बाद कटाई की बात आती है, तो कटाई के लिए भी जो है बहुत सारा यंत्र है। जैसे धान की कटाई करने हैं तो ऊपर आती है जो रीपर जो है मैनुअल भी ऑपरेटेड होती है, या पावर टिलर से भी ऑपरेटेड होती है, पावर से ऑपरेटेड होती है, या फिर कंबाइन हार्वेस्टर, बड़े बड़े जो खेत हैं तो उसमें कंबाइन हार्वेस्टर का भी उपयोग करके उसका थ्रिंग और थ्रेसिंग साथ में कर सकते हैं। अरहर की खेती है, अरहर तो उसमें भी छोटा यंत्र है, जैसे हंसुआ से काट करके दावली से काट करते हैं, तो आसानी से अरहर की कटनी कर सकते हैं। इस तरह से आप इस सब छोटे छोटे यंत्र का उपयोग करके भी आप जो है खेती को आसान बना सकते हैं। दूसरी बात आता है कि बीच में आपका प्लांट प्रोटेक्शन के लिए, जैसे कोई आपका दवा छिड़कना हो या कोई पाउडर छिड़कना हो, कोई रोग लग जाती है तो बीच बीच में ये भी, तो एक यूनिफॉर्म छिटाई होती है दवा का, और जो है सभी जगह यूनिफॉर्म रूप से वो दवा का छिड़काव सभी जगह हो, जैसे आप नैपसैक स्प्रेयर का कर सकते हैं, या पाउडर रूप में दवा है तो डस्टर का उपयोग करके छिड़काव कर सकते हैं, है ना। तो इस टाइप का जो है अगर औजार का उपयोग करके खेती करते हैं तो काफ़ी आपका लागत खर्च में कमी आएगी और उत्पादन भी में भी वृद्धि हो सकती है। देखिए, आजकल धान की रोपनी में भी काफ़ी लोगों को दिक्कत होती है, क्योंकि जिसमें रोपाई होती है जो है आदमी की कमी हो जाती है, तो उसमें भी बहुत सारा औजार आए हैं जो धान की रोपनी कर सकते हैं, जैसे ट्रांसप्लांटर जो आती है, लेकिन ट्रांसप्लांटर के साथ यही है कि उसमें बिचड़ा जो है आपको पॉलीथीन सीट पर तैयार करना होता है, पॉलीथीन सीट पर तैयार करके बिचड़ा को उसमें उस मशीन में डाल करके लगाया जाता है, तो ट्रांसप्लांटर से भी धान की रोपनी कर सकते हैं, उसमें भी काफ़ी आपकी बचत हो सकती है। दूसरी है कि अगर मान लें कि बिचड़ा नहीं डालनी है और डायरेक्ट जो है उसमें धान की छिटाई से पहले जो धान उत्पादन करते हैं, तो उस विधि में भी एक प्लास्टिक ड्रम सीडर आती है मशीन, उस प्लास्टिक ड्रम सीडर से भी धान की सीधी बुआई आप कर सकते हैं, तो उससे भी आपके लागत खर्च में काफ़ी कमी आ सकती है। जैसे अगर उससे बुआई करते हैं तो आपको न बिचड़ा डालने की जरूरत पड़ेगी, न बिचड़ा उखाड़ने की जरूरत पड़ेगी, न बिचड़ा को खेत में ट्रांसप्लांट करने की जरूरत। इसमें सिर्फ जो है मशीन में अंकुरित जो बीज है, अंकुरित बीज को डाल करके कादो किए हुए खेत में उस मशीन को चलाया जाता है, प्लास्टिक ड्रम सीडर जिसको कह रहे हैं, प्लास्टिक ड्रम सीडर से, तो काफ़ी उसमें बचत आपको हो सकती है।
1: बहुत अच्छी बात कही डॉक्टर साहब आपने। किसान भाइयों, आज हम बात कर रहे थे उन्नत कृषि यंत्र और तकनीक की, जानकारी दे रहे थे डॉक्टर अशोक कुमार सिन्हा। इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए डॉक्टर साहब आपका हमारा धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी हमारे किसान भाई सुन रहे थे भेंटवार्ता खरीफ के उन्नत कृषि यंत्र के बारे में। भेंटवार्ता करते हैं डॉक्टर अशोक कुमार सिन्हा, जो कृषि विशेषज्ञ चियां की पलामू के थे, और इनसे बातचीत कर रही थी प्रतिमा वर्मा। और कार्यक्रम में अब बातें अरहर एवं तिल की खेती की। अरहर और तिल दोनों ही खरीफ मौसम की प्रमुख फसलें हैं। इन्हें अक्सर किसान अतिरिक्त मुनाफे के लिए एक साथ सब फसली के रूप में उगाते हैं। अरहर की फसल 120 से 140 दिनों में पकती है, जबकि तिल केवल 85 से 90 दिनों में तैयार हो जाती है। अब अरहर की खेती कैसे करेंगे? इसका बुआई का समय है खरीफ सीजन में मानसून की शुरुआत, यानी जून के अंतिम सप्ताह से जुलाई के मध्य में बुआई का सर्वोत्तम होती है। इसकी उन्नत किस्में हैं, जल्दी पकने वाली किस्में हैं जो 120 से 130 दिन में, वो है प्रभात पंत अरहर 16, पूसा अरहर 161।

0: मध्यम अवधि वाली है 135 से 140 दिन में, वो है AL-15, AL-201 और PPH।
1: अब बातें अरहर और तिल की कर रहे हैं तो इसकी खेत की तैयारी और बीज दर की ही बात कर लें। खेत की मिट्टी पलटने वाले हल से एक जुताई करें, फिर 2-3 बार हैरो या कल्टीवेटर चलाकर मिट्टी भुरभुरी बना लें। कतार में बुआई करें किसान भाइयों, 2 लाइनों के बीच 45 से 60 सेंटीमीटर और पौधों के बीच 25 सेंटीमीटर की दूरी रखें। अरहर को कम पानी की आवश्यकता होती है, जल निकास की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। फूल आने के समय और फलियों में दाना भरते समय हल्की सिंचाई करना फायदेमंद रहता है। बुआई के समय खेत में पर्याप्त मात्रा में सड़ी हुई गोबर की खाद मिला लें। और हम बातें अरहर के बाद तिल की करें तो तिल की खेती कैसे करें, इसका समय भी जून के अंतिम सप्ताह से जुलाई के पहले सप्ताह तक इसको बोया जा सकता है। तिल के लिए अच्छी जल निकास वाली रेतीली दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। जल भराव वाली जगह पर इसकी खेती ना करें। प्रति एकड़ खेत के लिए लगभग 1.2 से 1.6 किलो बीज पर्याप्त रहता है। बुआई से पहले बीजों को कार्बेंडाजीम या ट्राइकोडर्मा से उपचारित जरूर कर लें। आप अरहर की लाइनों या कतारों के बीच खाली जगह में तिल की फसल आसानी से उगा सकते हैं। इससे दोनों फसलों का अच्छा उत्पादन मिल जाता है और अतिरिक्त मुनाफा होता है।
0: तिल की फसल को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है, अगर बारिश अच्छी हो जाए तो सिंचाई की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन सूखा पड़ने पर 1 से 2 हल्की सिंचाई करें, लगभग 85 से 90 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। अरहर और तिल की खेती की और अब बातें बत्तख पालन की।

किसान भाइयों, बत्तख पालन करने वाले किसान को बहुत ही अल्प लागत में अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है, क्योंकि बत्तख 6 माह में ही अंडे और मांस देने योग्य हो जाते हैं। बत्तख पालन का काम इस दौर में बेरोजगार युवाओं के लिए आय का अच्छा साधन है। मुर्गी पालन के मुकाबले बत्तख पालन कम जोखिम भी होता है। बत्तख के मांस और अंडों के रोग प्रतिरोधी होने की वजह से मुर्गी के मुकाबले बत्तख की मांग अधिक है। बत्तख का मांस और अंडे दोनों ही प्रोटीन से भरपूर होते हैं। बत्तखों में मुर्गी के मुकाबले मृत्यु दर बहुत ही कम है। इसका कारण बत्तख रोग प्रतिरोधी भी है। अगर बत्तख पालन का काम किसान भाई बड़े पैमाने पर करें तो यह बेहद लाभदायी साबित हो सकता है। बत्तख पालन अंडे और मांस के उत्पादन के लिए किया जाता है। अंडा और प्रोटीन के अच्छा स्रोत माने जाते हैं। कुपोषण के खिलाफ लड़ाई में भी अंडे को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। बत्तख पालन शुरू करने के लिए सबसे ज़रूरी आसपास में पानी का स्रोत का होना है, जहां पर बत्तख आसानी से प्रजनन कर सके और अंडे दे सके और विचरण भी कर सके। किसान भाई कृत्रिम तालाब बनाकर भी बत्तख पालन कर सकते हैं। बत्तख पालन के आहार, आवास आदि सभी चीज़ों में बहुत कम खर्च लगता है, इसलिए इसे कोई भी अपनाकर अपना आर्थिक स्थिति सुधार सकता है। बत्तख पालन व्यवसाय की हमारे देश में बड़ी संभावनाएं हैं। उन्नत नस्ल की बत्तख 300 से अधिक अंडे एक साल में देती है और बत्तख के अंडा का वजन 65 से 70 ग्राम होता है। बत्तख अधिक रेशेदार आहार पचा सकती है, साथ ही पानी में रहना बहुत ही पसंद है।

बत्तखों के खान पान पर अपेक्षाकृत कम खर्च करना पड़ता है। व्यावसायिक दृष्टि से देखें तो बत्तखों की उत्पादन अवधि अधिक होती है। मुर्गियों की अपेक्षा बत्तखों की उत्पादन अवधि अधिक है, तो इसकी कम बीमारियां भी होती हैं। बहता हुआ पानी बत्तखों के लिए काफ़ी उपयुक्त होता है, किंतु अन्य पानी के स्रोत वगैरह में भी बत्तख पालन अच्छी तरह किया जा सकता है। हमारे देश में अंडा उत्पादन तालिका में मुर्गियों के बाद बत्तख का स्थान है। किसान भाइयों, बत्तख लंबी अवधि तक अंडे देती है और जीवन के दूसरे और तीसरे वर्ष में भी लाभदायक उत्पादन देती है, इसलिए बत्तख की उत्पादन आयु अधिक है। मुर्गी के अंडे की तुलना में बत्तख के अंडे का वजन भी 15.20 ग्राम अधिक होता है और प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। आमतौर पर दलदली, अधिक वर्षा वाला और कच्छ प्रदेश, इसमें नमी और पानी की रिक्तता होती है, मुर्गी पालन व्यवसाय के लिए उपयुक्त नहीं होता, परंतु वहाँ बत्तख पालन बहुत सफलतापूर्वक किया जा सकता है। इसलिए किसान भाई इस प्रकार की भूमि को बत्तख पालन के लिए उपयोग करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तालाब, झील और अन्य जल बाहुल्य क्षेत्र में कवक, फंजाई, शैवाल, एल्गी, जल में उगने वाले घास, घोंगे, मछलियाँ, कीड़े इत्यादि बत्तखों के लिए बहुत अच्छा आहार है, इसलिए बत्तख के ऊपर किया जाने वाला जो आहार व्यय है वो कम हो जाता है। ये एक समझदार पक्षी भी है जो आवश्यकतानुसार समय पर बाहर घूम फिर कर अपने निश्चित डरबे में बिना किसी विशेष प्रयत्न के आ सकते हैं। मुर्गी की तुलना में बत्तख की देखरेख कम करनी पड़ती है और उसमें विशेष कुशलता की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि बत्तख की प्रतिरोधक शक्ति स्वभावतः कुछ अधिक होती है और बत्तख को घर की आवश्यकता नहीं होती। रात के समय भी बत्तख घर में रखे जाते हैं और दिन के समय अहाते में खुले छोड़ दिए जाते हैं। बत्तख के अंडे का छिलका मोटा होने के कारण इनके स्थानांतरण में भी टूट फूट का भय कम रहता है और कम टूट फूट के कारण इनसे होने वाले अंतर लाभ में वृद्धि होती है। किसान भाई, हम बातें कर रहे थे बत्तख पालन की और अब मौसम की जानकारी। आज पलामू में आज का तापमान रहा 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता 57% और न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता 29% रिकॉर्ड की गई। झारखंड में अगले 7 से 10 दिनों तक रुक रुक कर बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। राज्य के अधिकांश हिस्सों में मानसून के प्रभाव और चक्रवाती परिसंचरण के कारण मौसम का मिजाज बदला हुआ है, जिससे अगले सप्ताह तक हल्की से मध्यम बारिश जारी रहने का अनुमान है।

0: और किसान भाई, चलते चलते आज की नसीहत। आज की नसीहत में हम बात करते हैं सब्जियों में मल्चिंग विधि की। पौधों के आसपास की मिट्टी को जैविक या प्लास्टिक की शीट में ढकने की एक आधुनिक कृषि तकनीक है। यह मिट्टी की नमी को बचाती है, खरपतवार रोकती है, तापमान नियंत्रित करती है और पैदावार में 30-50% तक की भारी वृद्धि करती है। जैविक मल्चिंग की बात करते हैं तो इसमें सूखी पत्तियां, पुआल, घास, लकड़ी के बुरादे या कंपोस्ट का उपयोग किया जाता है। यह सड़ने के बाद मिट्टी को उपजाऊ और जैविक कार्बन से भरपूर बनाती है। प्लास्टिक मल्चिंग की बात करते हैं तो यह व्यावसायिक खेती के लिए सबसे उत्तम है। इसमें अलग अलग रंगों जैसे काला, सफ़ेद, चांदी की प्लास्टिक शीट का इस्तेमाल होता है। सब्जियों के लिए ब्लैक प्लास्टिक मल्च सबसे बेहतरीन मानी जाती है क्योंकि यह पूरी तरह से सूरज की रोशनी रोककर खरपतवार को ख़त्म कर देती है।
1: मल्चिंग करने का सही तरीका भी हम आपको बता दें। क्यारी और बेड्स तैयार करना, खेत की जुताई करके उचित आकार के उठे हुए बेड बनाएं। यदि संभव हो तो मल्चिंग शीट के नीचे ड्रिप सिंचाई की पाइपलाइन बिछाएं। बेड पर मल्चिंग शीट को कसकर फैलाएं और उसके किनारों को मिट्टी से अच्छी तरह दबा दें ताकि हवा से उड़े नहीं। सब्जियों की फसल के अनुसार उचित दूरी जैसे 1-2 फीट पर शीट में गोल छेद करें। इन छेदों में ही बीज बोएं और तैयार की गई पौध को लगाएं। पानी की बचत, खरपतवार नियंत्रण, तापमान नियंत्रण और साफ सब्जियां इसके मुख्य लाभ हैं जो आप मल्चिंग विधि से ले सकते हैं।
0: तो किसान भाइयों, इसी नसीहत के साथ कार्यक्रम किसान वाणी से अब दीजिए रागनी कुमारी और
1: प्रतिमा वर्मा को
0: अनुमति। नमस्कार।
2: प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं, FM 103 MHz पर। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल का प्रसारण आकाशवाणी के रांची केंद्र से। कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें।

0: भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है। वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।

0: श्रोता मित्रों, हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से। शाम के 7 बजने वाले हैं, आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार
1: आकाशवाणी रांची से।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं समीर बाखला। पहले मुख्य समाचार। राज्य में शुरू हुआ SIR अभियान, 2,64,00,000 से अधिक वोटरों को अद्यतन करने के लिए घर घर जाएंगे 31,000 से ज्यादा BLO। ऐतिहासिक हुल दिवस पर पूरे राज्य में अमर शहीद सिद्धो कान्हू और चांद भैरव को दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने वीरों के त्याग को किया नमन। राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने। भाजपा ने सरकार को बताया विफल, झामुमो ने भाजपा के आरोपों पर किया पलटवार। राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून पूरी तरह सक्रिय। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक रांची समेत कई जिलों में भारी बारिश और वज्रपात का जारी किया अलर्ट। और नासिक राष्ट्रीय पेंचक सिलाट प्रतियोगिता में झारखंड के खिलाड़ियों ने गाड़े सफलता के झंडे, 4 स्वर्ण समेत जीते कुल 9 पदक। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR अभियान का आज से आगाज हो गया है। निर्वाचन आयोग के आला अधिकारी खुद मैदान में उतरकर इसकी लाइव मॉनिटरिंग कर रहे हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
1: झारखंड निर्वाचन आयोग इस समय पूरी तरह अलर्ट मोड में है। राज्य भर में SIR अभियान का शंखनाद हो चुका है। पहले ही दिन मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने खूंटी के तोरपा का दौरा कर BLO के साथ समीक्षा बैठक की। प्रशासनिक मुस्तैदी का ये दौर कई जिलों में दिखा। गढ़वा में उपायुक्त पशुपति नाथ मिश्र ने 29 जुलाई तक चलने वाले इन्यूमिरेशन फॉर्म वितरण की शुरुआत की। सरायकेला खरसावा में अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुबोध कुमार ने हाई लेवल मीटिंग की, तो वहीं लोहरदगा में उपायुक्त संदीप कुमार और SP सादिक अनवर ने बूथों का औचक निरीक्षण किया। विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 अभियान को

0: गति देने के लिए रामगढ़ जिले में #झारखंडSIR के साथ सोशल मीडिया जागरूकता अभियान चलाया गया। इस बार बीएलओ ऐप के माध्यम से डिजिटल एंट्री पर विशेष जोर दिया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
1: इस बीच मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने रांची में प्रेस वार्ता में बताया कि वर्तमान में राज्य में 2,64,63,236 पंजीकृत मतदाता हैं। इस अभियान के लिए कुल 31,892 बीएलओ को लगाया गया है, जो घर घर जाकर जानकारी जुटाएंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने दावा किया कि इस प्रक्रिया में एक भी पात्र वोटर नहीं छूटेगा।
2: 82.10% मैपिंग हुई। अभी एनुमरेशन प्रोसेस में भी वो मैपिंग का कुछ का छूट गया, मतलब उसका मैपिंग भी कर सकते हैं। कितना मैपिंग हुआ उसका भी दो स्टेज का वेरिफिकेशन भी होगा। इसलिए मैपिंग का कुछ यहाँ पर मैं भी फील्ड में जाके देखा था, उसमें कुछ यहाँ पर बाकी है, कुछ यहाँ पर गलत। इसलिए दो स्टेज में वेरिफिकेशन होगा, वो प्रक्रिया शुरू हो गया।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हुल दिवस के अवसर पर विदेशी शासन के अन्याय के विरुद्ध दृढ़ता से संघर्ष करने वाले सिद्धो कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानू सहित सभी वीर आदिवासी योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने कहा कि हुल दिवस मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले आदिवासी समुदायों के असाधारण साहस और अटूट भावना का सशक्त प्रतीक है। उन्होंने कहा कि आदिवासी गरिमा और सम्मान की रक्षा के लिए उनके संघर्ष और बलिदान की गाथा देशवासियों को नई ऊर्जा प्रदान करती रहेगी और प्रेरित करती रहेगी। झारखंड में आज ऐतिहासिक हुल दिवस के मौके पर अमर शहीद सिद्धो कान्हू, चांद भैरव और फूलो झानू को पूरे राज्य में श्रद्धापूर्वक नमन किया गया। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वीरों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए उनका संघर्ष हमेशा समाज को प्रेरणा देता रहेगा।
3: जब देश में आदिवासी समुदाय के लोग शोषण का शिकार हो रहे थे, ये लोग कैसे उस शोषण से बाहर निकले इसकी रणनीति बना रहे थे। अंतोगत्वा उस शोषण के विरुद्ध मोर्चा खोला गया और उस क्रांति के आंदोलनकारी शहीद सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानू जैसे लोगों ने पूरे देश के ऊपर हो रहे शोषण के विरुद्ध बिगुल फूका। और आज हमें गर्व है कि आज इन वीर सपूतों के बदौलत झारखंड को एक वीर भूमि भी हम कहते हैं और उनके सम्मान में उनके आदर्शों पर चलने की प्रतिज्ञा लेते हैं।
1: इधर हुल की ऐतिहासिक धरती भोगनाडीह को लेकर सियासत भी गरमाई रही, जहां पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने भोगनाडीह में सुरक्षा प्रतिबंधों और ग्रामीणों से बॉन्ड भरवाए जाने को लेकर राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला।
4: ये सरकार इस लड़ाई का इतिहास को मिटाना चाहती है। ये गठबंधन सरकार आए, जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी, अरे जिस मट्टी से, जिस गांव से स्वतंत्र का बिगुल बजा, क्रांति का बिगुल बजा, आज उस गांव को स्वतंत्र नहीं है।
1: इधर भारतीय जनता पार्टी ने आज हुल दिवस के मौके पर रांची सहित राज्य के सभी मंडलों में अमर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। रांची के सिद्धो कान्हू पार्क में प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने वीरों को नमन किया। हजारीबाग में आज हुल दिवस पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में भाकपा के राष्ट्रीय महासचिव टी राजा और राज्यसभा सांसद पी संतोष ने वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान पार्टी ने आगामी चुनावों के लिए रणनीति साझा करते हुए राज्य की 7 लोकसभा और 30 से 40 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा ने पुलिस और राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जमशेदपुर में विधायक पूर्णिमा साहू और पूर्व विधायक भानु प्रताप शाही ने प्रेस वार्ता कर आरोप लगाया कि अपराधी बेखौफ हैं और शासन पूरी तरह विफल है।
5: हिमांशु का हत्या जो है वो अलार्मिंग सिचुएशन है। झारखंड के पुलिस के वैन से निकाल करके अपराधियों के द्वारा बीच सड़क पर चाकू से गोद गोद करके मार, आप समझ सकते हैं जमशेदपुर जो शांति प्रिय जिला के रूप में जाना जाता था, आज जमशेदपुर का ये हालत है, तो झारखंड के बाकी जिलों का क्या हाल है।

0: है आरोप लगाना। अभी हाल के दिनों की बात करती हूँ, रांची में जब आरएसएस कार्यालय में हमला हुआ तो कितनी जल्दी पुलिस ने हमलावर को पकड़ा, जो कि शायद भाजपा के कार्यकाल में ऐसा कभी इतनी जल्दी इतनी त्वरित कार्रवाई नहीं हुई थी। तो उसी तरह से हर मामले में यहाँ की पुलिस लगातार सक्रिय है और माननीय मुख्यमंत्री जी का कड़ा निर्देश है कि ऐसे मामलों में बिल्कुल कोताही न बरती जाए।
1: राज्य को कल 4 नए सूचना आयुक्त मिलने जा रहे हैं। लोक भवन के दरबार हॉल में सुबह 11:30 बजे आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार सभी नवनियुक्त सूचना आयुक्तों को पद की शपथ दिलाएंगे। कार्मिक विभाग द्वारा इनकी नियुक्ति की अधिसूचना पहले ही जारी की जा चुकी है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में आज जिला सड़क सुरक्षा समिति द्वारा 16 नेक नागरिकों को सम्मानित किया गया। चाईबासा में उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने संयुक्त रूप से इन गुड समैरिटन्स को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए। इन नागरिकों ने सड़क दुर्घटनाओं के घायलों को गोल्डन आवर के दौरान अस्पताल पहुंचाकर उनकी जान बचाई थी। समिति ने अब हर महीने ऐसे 5 नेक नागरिकों को सम्मानित करने का निर्णय लिया है। राज्य में दक्षिण पश्चिम मॉनसून पूरी तरह सक्रिय हो गया है। राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में रुक रुक कर झमाझम बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने रांची, लातेहार, लोहरदगा और खूंटी सहित कई जिलों में भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। मौसम केंद्र के अनुसार 1 और 2 जुलाई को राज्य भर में भारी बारिश का दायरा और बढ़ेगा। खराब मौसम को देखते हुए लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की गई है। महाराष्ट्र के नासिक में आयोजित 14वीं राष्ट्रीय पेंचक सिलाट प्रतियोगिता में झारखंड के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 9 पदक अपने नाम किए हैं। राज्य की खेल प्रतिभाओं ने 4 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीतकर राष्ट्रीय स्तर पर परचम लहराया। स्वर्ण पदक विजेताओं में इटाशा कपूर, अनाया खलखो, विशाखा थापा और पलक साहू शामिल हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में शुरू हुआ SIR अभियान, 2,64,00,000 से अधिक वोटरों को अद्यतन करने के लिए घर घर जाएंगे 31,000 से ज्यादा BLO। ऐतिहासिक होल दिवस पर पूरे राज्य में अमर शहीद सिद्धो कान्हू और चांद भैरव को दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने वीरों के त्याग को किया नमन। राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने। भाजपा ने सरकार को बताया विफल, झामुमो ने भाजपा के आरोपों पर किया पलटवार। राज्य में दक्षिण पश्चिम मॉनसून पूरी तरह सक्रिय। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक रांची समेत कई जिलों में भारी बारिश और वज्रपात का जारी किया अलर्ट। और नासिक राष्ट्रीय पेंचक सिलाट प्रतियोगिता में झारखंड के खिलाड़ियों ने गाड़े सफलता के झंडे, 4 स्वर्ण समेत जीते कुल 9 पदक। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे कोडरमा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे कोडरमा संवाददाता।
1: कोडरमा जिले के ग्रामीण और सुदूरवर्ती इलाकों को भी अब रेल मार्ग से जोड़ा जा रहा है। इस क्रम में मरकच्चो प्रखंड के नावाडी स्टेशन पर गोड्डा से नई दिल्ली जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव शुरू हो गया है। 17 जून को केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने नावाडी स्टेशन पर रुकने के बाद गोड्डा एक्सप्रेस को नई दिल्ली के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नावाडी स्टेशन पर इस ट्रेन का ठहराव सुनिश्चित होने से डोमचांच और मरकच्चो प्रखंड के ग्रामीण इलाकों के लोगों का अब सीधे दिल्ली से संपर्क हो गया है। यहाँ से दिल्ली आने जाने के लिए लोगों को आसानी होगी। इस मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि
2: कोडरमा लोकसभा की बात करें तो चारों ओर से रेलवे की कनेक्टिविटी बहुत है। यह वाराणसी से लेके सीधा रामपुर हाट तक, यानी कि एक ये धार्मिक एक ये सर्किट के रूप में कि बाबा धाम को भी जोड़ते हुए इसी रूट से, और उसमें बासुकीनाथ तारापीठ होते हुए रामपुर हाट तक ये ट्रेन जाए, एक नई ट्रेन, तो उसको लेकर भी माननीय रेल मंत्री जी को हम लिखे हैं।
1: रेडियो पर फरमाइशी गीतों के लिए फेमस कोडरमा के झूमरी तिलैया शहर को केसरिया कलाकंद के जरिए एक नई पहचान मिली है।

0: राज्य के 11 विशिष्ट उत्पादों में एक कोडरमा के केसरिया कलाकंद को भी जीआई टैग मिला है, जिससे कोडरमा को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है। कोडरमा का केसरिया कलाकंद राज्य का एकमात्र खाद्य पदार्थ है जिसे जीआई टैग मिला है। केसरिया कलाकंद को जीआई टैग मिलने से न सिर्फ कलाकंद से जुड़े व्यवसायी उत्साहित हैं, बल्कि आम लोगों में भी इस बात की खुशी देखी जा रही है।
1: बहुत ही खुशी की बात है कि कोडरमा जिला का कलाकंद, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोग जानते हैं, उसे एक जीआई टैग मिल गया है। और मैं बता दूं कि झुमरी तिले कोडरमा को इस मिठाई के वजह से जाना जाता, काफी अच्छा टेस्ट है। मेरे भाई जो अमेरिका में रहते हैं, मेरे कुछ रिश्तेदार जो दुबई में रहते हैं, वो भी जब फोन पे चर्चा करते हैं तो कलाकंद की चर्चा करते हैं, कोडरमा आते हैं तो कलाकंद खाते हैं। तो इसका जो टेस्ट है, मैं बता दूं कि और कहीं नहीं मिलता है।
0: महिला सुरक्षा और महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध को रोकने के लिए कोडरमा पुलिस ने फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया है। एक ही दिन में दो महिलाओं के साथ चैन छिनतई की घटना को महज 24 घंटे में सुलझाते हुए कोडरमा पुलिस ने दो आरोपियों को धर दबोचा है। एसपी कुमार शिवाशीष ने मंचलों और महिलाओं के खिलाफ दुर्व्यवहार करने वालों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि जिले में महिला सुरक्षा से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जरूरत पड़ी तो ऐसे अपराधियों पर नकेल कसने के लिए सीसी एक्ट भी लगाया जा सकता है।
2: आप लोग के थ्रू एक मैसेज देना चाहेंगे कि झारखंड सरकार के निर्देशानुसार महिला सुरक्षा हम लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यदि किसी भी मंचले को ऐसा लगता है कि चेन स्नैचिंग, छेड़खानी या महिला के प्रति कोई भी दुर्व्यवहार वो करेगा और जब बच जाएगा तो इसमें कोई स्कोप नहीं रहने वाला है। हम लोग इसके लिए बहुत स्ट्रिक्ट हैं, जो भी लीगल मीन्स होंगे सारे परस्यू किए जाएंगे, जितना दिन होगा जेल में रखेंगे, जरूरत पड़ेगा सीसीए करेंगे, और जो कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी, जेल से निकलने के बाद भी पुलिस रेगुलर सत्यापन करेगी, ऐसा कर देंगी कोडरमा में रहना उनका दूभर हो जाएगा। तो हमारा आपके थ्रू यही मैसेज रहेगा कि यदि कोई मंचला ऐसा सोच रहा है तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचे, और जिस हद तक रह सके महिलाओं के हम लोग को सम्मान करना है, और महिला के विरुद्ध अगर कोई भी सॉर्ट ऑफ क्राइम किया जाएगा तो उसको बिल्कुल बताएं।
0: पकड़े गए अपराधियों के पास से पुलिस ने छीनी गई सोने की चैन और घटना में इस्तेमाल किए जाने वाले मोटरसाइकिल को भी बरामद किया है। गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा।
3: अभी आप सुन रहे थे कोडरमा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।
4: विकेट गवाया नहीं।

इल्जाम इस फिल्म का गीत सुनिए आशा भोसले और अमित कुमार की आवाजों में। गीतकार हैं अनजान, संगीत है बप्पी लहरी का।

जवानी इस फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं आशा भोसले और अमित कुमार की आवाजों में। गीतकार हैं गुलशन बावरा, संगीतकार हैं राहुल देवबर्मन।

साथियों, जयमाला कार्यक्रम में अब वक्त है एक छोटे से अंतराल पर जाने का। बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए विविध भारती।

अंतराल के बाद एक बार फिर से जयमाला कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम का अगला गीत है किशोर कुमार की आवाज में, नगमा निगार है मजरू सुल्तानपुरी, संगीत है राहुल देव बर्मन का, फिल्म का नाम है बुढ़ा मिल गया।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: हर जाई इस फिल्म का गीत सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में। नगमा निगार है निदा फाजली, धुन है राहुल देव बर्मन की।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: साथियों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जयमाला।

ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम इंद्रधनुष के अंतर्गत आज पॉप एक्सप्रेस में सुनिए कुछ पॉप गीत। आइए सुनते हैं के और महालक्ष्मी की आवाजों में विशाल ददलानी का लिखा गीत। संगीत है विशाल शेखर का, फिल्म का नाम है पॉपकॉर्न खाओ।

अभी आपने सुना पॉप गीत गुल सक्सेना की आवाज में। गीतकार संगीतकार थे किरण प्रगति और सौरभ ठाकुर।

0: पर तो हेवन की चाबी है।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे इंद्रधनुष के अंतर्गत पॉप एक्सप्रेस में कुछ पॉप गीत।

0: आज के हवा महल में सुनवा रहे हैं नाटिका उनके महबूब। लेखिका हैं बिमला रैना, निर्देशक लोचन बख्शी।
1: मंजू, ओ मंजू, अरे मंजू कहाँ हो भाई, जल्दी आओ।
2: क्या है शील, बस जब आती है तो आंधी की तरह आती है और तूफान की तरह चली जाती है।
1: आखिर ऐसी क्या बात हुई जो आज तेरी आंखों में बिजलियाँ कौंध रही है?
2: अरे बिजली बिजली कहाँ कौंधी, मैं क्या जानू रे, जानू तो जानू बस इतना कि बहुत मजा आया।
1: तू इतना ही जान कर रुक जा, नहीं तो
2: नहीं तो
1: नहीं तो मजे में दर्द भर जाएगा। अब तेरी शादी हो जाएगी।
2: शादी वादी बच्चे बच्चे मैं क्या जानू रे, जानू तो जानू बस इतना कि लाइफ इज वंडरफुल फॉर मी।
1: बात सुनो, तुम्हारी तो शादी हो चुकी है लेकिन मैं तो अभी इंडिपेंडेंट हूँ। तुम दोनों को बारी बारी एक दूसरे का हुक्म मानना पड़ता है, फिर मुझ पर कोई हुक्म नहीं चला सकता।
2: हाँ मेरा हुक्म मेरा राजा जरूर मानता है।
1: राजा? कौन राजा?
2: है एक राजा। हाय काश तुम भी चलती मेरे साथ टेनिस मैच में, इतना मजा आया कि।
1: मैं तो चाहती हूँ तू अब जल्दी से जल्दी अपना मैच बना ले। कितने रिश्ते आए पर तू अभी अकेली ही घूमती है। मैं पूछती हूँ आखिर तुझे कैसा लड़का चाहिए?
2: ओह लड़का, कैसा लड़का? जैसा मेरा राजा है।
1: अरे रे रे, ये किस राजा महाराजा के सपने देख रही है तू?
2: अपने राजा के। ओ मंजू हाउ ही लव्स मी।
1: हु? कौन? हु लव्स यू? कौन है, कहाँ से आया, क्यों आया, क्या करता है, किसका बोता है, किसका पोता है?
2: ओफो, तुम्हारे सवालों की तो बढ़ बढ़ती ही जा रही है, मेरे दिमाग में फ्लड आ गया। तो पहले किस बात का जवाब दूं? मुझे बताओ नहीं तो डूब जाऊंगी।
1: ओहो उसके खानदान का भी कुछ पता है?
2: अरे मंजू जी जी उसका खानदान पानदान पीकदान सबका पता है। मेरा राजा ऐसा वैसा नहीं है, भगवान कसम वो तो अकेला कमरे में दरवाजे पर टकटकी लगाए

0: मेरे इंतजार में बैठा होगा।
1: टक टक ही लगाए, उसे अपने साथ नहीं ले गई थी? किसका मैच देखने गई थी?
0: दीपक का। बहुत अच्छा खेला, वो यूनिवर्सिटी का चैंपियन बन गए है।
1: दीपक? कौन दीपक?
0: अब वो कौन सा दीपक या किसका दीपक है ये मैं क्या जानू, वहाँ सब बकअप दीपक, वेल डन दीपक, लवली शॉट दीपक कह रहे थे, तो मैं जान गई उसका नाम दीपक है बस।
1: सुन, कहीं हमारा दीपक तो नहीं है?
0: ये तो मैं नहीं जानती कि वो किसका दीपक है, पर आपका घर रोशन करते कभी नहीं देखा उसे?
1: नहीं देखा तो क्या हुआ? सुन, वो कुछ गोरा गोरा सा, कुछ लंबा सा, हसोर सा था।
0: अब मैंने गोरा वोरा लंबा उम्बा हसोड़ सोड़ की बात तो ठीक से देखी नहीं, पर हाँ टेनिस बहुत अच्छा खेलता है।
1: तो क्या आंखें बंद करके टेनिस मैच देख रही
0: थी? नहीं, आंखें तो खुली थी पर उसके खेल पर लगी थी। अभी याद करती हूँ, हाँ कुछ गोरा गोरा लंबा सा ही है, पर आपके घर तो शायद मैंने कभी नहीं देखा उसे।
1: तुझे मेरे पास आए अभी कौन ज्यादा दिन हुए हैं, और फिर तुझे अपने राजा से फुर्सत कहाँ है? आता है तीज त्योहार पर।
0: अच्छा, मुझे क्या मालूम, जहाँ भी जाऊँ दिखते तो रहते हैं पर ठीक से कभी बात नहीं हुई, नहीं तो ये तो पता चल ही जाता कि वो आपके दीपक हैं। अच्छा मंजू, राजा बेचारा इंतजार करता होगा। बाय बाय।
1: कर दिया।
2: भाभी भाभी भाभी, वो मतलब भाभी,
1: हाँ।
2: वो आपकी बहन है ना?
1: हाँ।
2: उससे मिलना चाहता हूँ।
1: क्यों, टेनिस चैंपियन हो गया है इसलिए?
2: अरे तुम्हें कैसे मालूम भाभी?
1: अरे वही बता रही थी, तुम्हारे खेल की बहुत तारीफ कर रही थी।
2: कौन? वो मेरे खेल की तारीफ?
1: हाँ हाँ, कह रही थी दीपक बहुत अच्छा खेला।
2: वो मेरा नाम जानती है?
1: क्या तुम उसका नाम नहीं जानते?
2: नहीं मतलब, हाँ मतलब मैं उनका नाम जानता हूँ। दरअसल मंजू भाभी, बात यह है भाभी कि मैं उनके करीब से जब भी गुजरा बहुत चाह कि एक बार शील जी कहकर उन्हें पुकारूं, पर जाने क्या हो जाता है भाभी, मुंह से आवाज ही नहीं निकलती, जुबान को जैसे लकवा मार जाता है। और फिर भाभी, अगर सबके सामने वो मेरी तरफ अजनबी निगाहों से देखकर मुंह मोड़ लेती है तो मेरा कलेजा फ्लैट हो जाता है। और भाभी, फिर पता चला वो तुम्हारे पास रहने लगी है तो
1: के बच्चे, तो तुझे भाभी की याद आई? चल कुछ कहेगा भी?
2: जरूर कहूंगा।
1: तो कहना।
2: कहूं? कह तू भाभी। भाभी असल में बात यह है भाभी, भाभी मैं उनसे, मैं उनसे शादी करना चाहता हूँ। लो कह दिया, कह दिया भाभी,
1: कह दिया। अब जब अपने राजा के गुण गाया करती है।
2: राजा के? कहाँ के राजा के?
1: अब ये तो तुम उसी से पूछो, और अगर पूछने की हिम्मत ना हो तो दुम दबा के चले जाओ। डरपोक कहीं के, कब से मैंने सोच रखा था कि एक दिन शील और दीपक की सगाई करवाऊंगी, मगर वो निर्लज्ज शील चाचा ने कहां से एक राजा नाम के लड़के को पकड़ लाई है और उसे अपने ही पास ठहराया हुआ है। निर्लज्ज कहीं की, छोड़ उसका ख्याल।
2: भाभी ये सब तुम किसके लिए कह रही हो? भाभी वो तो देवी है, देवी, कभी उसे किसी लड़के से हंसी मजाक करते हुए नहीं देखा, इतनी कोमल गंभीरता, इतने आत्म गौरव से आती जाती है, तभी तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ी बात करने
1: की। अब मैं क्या करूं, जिसकी हिम्मत पड़ी वो आ गया, आप शील से मिलकर कौन सी पहलवानी दिखाओगे?
2: पर भाभी ये राजा है कौन, कब से उसके साथ रहता है?
1: मैं क्या जानू कौन राजा है निगोड़ा, ये बात तो अभी मालूम हुई जब वो तुम्हारा टेनिस मैच देख के लौटी।
2: ओ भाभी, शील जी मुझसे कभी नहीं बोली तो क्या, बरसों साथ एक ही कॉलेज में पढ़ी है, एक बार तुम मुझे मिलवा दो, प्लीज भाभी एक बार मिलवा दो मुझे, मैं अकेले में कुछ बातें कर लूं। भाभी आखिर मैं इंसान हूँ, कोई उल्लू तो नहीं हूँ, उन्हें मालूम तो हो जाए कि मैं भी उन्हें चाहता हूँ, फिर देखूं उनका राजा मेरे सामने कैसा लगता है।
1: अच्छा सुन दीपक, सुन मुझे ख्याल आया।
2: क्या? हा?
1: मैं शील को बुलाती हूँ, और सुन उसे शेर शायरी का बहुत शौक है, जब वो आए तो तू उसे बेखबर सा बनकर कोई गजल वजल सुना ले।
2: तुम फिक्र ना करो भाभी, एक से एक बढ़िया शेर मुझे याद है, देखो तो सही उनका राजा मेरे आगे कैसे ठहरता है। भाभी ये राजा का नाम सुनकर तो मुझ में बजरंग बली का बल आ गया है। पर भाभी शील जी से मिलने से पहले मुझे एक झलक उनके महबूब की दिखा तो दो, आखिर मुझे मालूम तो हो जाए मुझे मुकाबला किससे करना है।
1: उस दरवाजे के पीछे शील का कमरा है। अरे उधर कहाँ जा रहा है? इधर आ। देख मैं नौकर को भेजकर उसे अभी बुलवाती हूँ।
2: अच्छा,
1: तू शेर शायरी का ध्यान रखना। अरे नंदू, ओ नंदू, जरा शील से कह मैंने बुलाया है, जरूरी काम है, जल्दी आए। अच्छा सुन, इधर आ, उधर पीठ कर ऐसे खड़े होकर कोई फड़कती हुई गजल गुनगुनाना शुरू कर।

0: कर दे। अच्छा। जैसे तुझे मालूम ही नहीं कि वो आ रही है।
1: तू छू जा भाभी।
2: लबों पे तबस्सुम निगाहों में बिजली, कयामत की धर से चली।

0: मैं आपका मतलब समझा नहीं शील जी।
1: शील सुन तो, ये वही हमारा दीपक है कि वो कोई दूसरा दीपक था? मैं क्या जानू, पर हाँ शायद यही थे। ये मेरी बहन शील है दीपक
0: जी। जानता हूँ जी, मतलब ये जानता तो नहीं था, पर भाभी अब जान गया।
1: मैं अभी कॉफी को कहे।
0: हाँ भाभी तुम कॉफी लेने जाओ। मंजू भाभी से सुना आपको टेनिस मैच बहुत पसंद आया।
1: जी
0: हजार हजार धन्यवाद शील जी।
1: हजार हजार किस बात के?
0: अरे हजार हजार बातों के।
1: पर मैंने तो आपसे पहले कभी बात नहीं की।
0: ओ शील जी, पर मैंने तो आपसे हजारों बातें की हैं, बहुत ख्वाब देखे हैं जिनमें आप शरीक थी।
1: ओ
0: न जाने क्या क्या कहा मैंने, न जाने आपने मुझसे क्या क्या कहा, हजारों बातें।
1: हो सकता है, पर ख्वाबों का क्या?
0: एक शेर कहा है, सुना दूं?
1: जरूर।
0: हमें गिला न होता हकीकत से, ख्वाबों का अगर जरिया होता, वो सामने होते साहिल पर, जज्बातों का मैं दरिया होता। कभी मेरी तमन्ना भी सजकर

0: क्या होता।
1: वाह वाह,
0: पसंद आया?
1: क्या शेर है जी, बहुत अच्छा।
0: आपको मेरा खेल पसंद आया, मेरे शेर पसंद आए, बस मैं ही पसंद नहीं आया। सुना है कोई राजा साहब है जिन पर आपकी बड़ी इनायत है, क्या ये सच है शील जी?
1: जी जी हाँ, सच तो है।
0: सच है तो क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ?
1: उनसे मिलकर क्या करेंगे, आप तो शायद मुझसे मिलना चाहते हैं।
0: शील जी प्लीज मजाक मत करिए, असल में बात यह है कि मैं आपसे।
1: जी जी जी क्या?
0: देखिए शील जी, अगर आप बीच में यूं ही टोकते रहीं तो मैं आपसे जो आज कहने का फैसला करके आया हूँ कह ना पाऊंगा। मुझे यूं ही ये बात कहने की हिम्मत बटोरने में इतने दिन लग गए, साय के समान आपका पीछा करता रहा पर आपसे भूल न सका। अब आप प्लीज उधर को मुंह कर लीजिए ना, जिससे मैं एक बार आपसे कहकर अपना जी तो हल्का कर लूं।
1: जी बहुत भारी है क्या?
0: शील जी प्लीज आप उधर देखिए ना। खैर कोई बात नहीं, आप नहीं देखती तो मैं ही इधर देख लेता हूँ और कहता हूँ। शील जी मैं मतलब आई मतलब मैं मतलब आई लव यू।
1: लेकिन क्यों
0: क्यों क्यों क्या राजा आपको क्यों लव करता है जी?
1: पता नहीं
0: तो आप उसे क्यों लव करती हैं जी?
1: क्योंकि वो मुझे बहुत लव करता है।
0: तो मैं भी तो आपको बहुत बहुत मतलब वेरी वेरी मच लव करता हूँ।
1: वो बहुत बहादुर है।
0: आपको मेरी बहादुरी पे शक है क्या?
1: पर वो बहुत वफादार बहुत लॉयल है।
0: और मैं वफादार नहीं, मेरी लॉयल्टी पे शक है आपको, तो इम्तहान ले लीजिए, अपने राजा से एक बार मिलवा तो दीजिए, जरा मैं भी तो देखूं मैं उससे किस बात में कम हूँ।
1: वो मेरा हर हुक्म मानता है।
0: आप मुझे भी कोई हुक्म देकर देखिए।
1: देखो
0: देखिए।
1: अच्छा देखूंगी।
0: शील जी आपके महबूब आपके कमरे में है क्या, मैं उनसे मिलने जा सकता हूँ?
1: शौक से जाइए, मगर जरा संभल के जाइएगा, बड़े बड़े पहलवान भी उनसे डरते हैं।
0: आप फिक्र न करिए शील जी, वो कट लगाऊंगा कि मेरी गेंद उठाए ना उठेगी। और फिर शील जी अगर मैं मर भी जाऊं तो क्या, कम से कम आपको मेरी बहादुरी का यकीन तो आ जाएगा।
1: तो जाइए, कमरा खुला है।
0: कमरा खुला है लेकिन लेकिन आप साथ नहीं चलेंगी क्या?
1: हाय राम, आपको मेरे साथ उसने देख लिया तो आपकी जान पर बन आएगी। वो बहुत जेलस है। अब वैसे मेरी जरूरत पड़ी तो आ जाऊंगी।
0: कोई बात नहीं बहुत अच्छा, तो मैं ही जाता हूँ। आपके कमरे में जाने की इजाजत तो है ना?
1: मेरे कमरे में जाने की इजाजत तो राजा ही दे सकता है।
0: ये बात है तो हो जाए आज फैसला। मेरी महबूबा के महबूब ने ललकारा है, मौत बेहतर है जिसे जिंदगी ने मारा है। अरे शील जी मैं जाता हूँ।
1: जाइए।
0: ओ माय गॉड, ये राजा इनका महबूब। सच में शील जी ये कुत्ता तो बहुत

0: हैंडसम है, बहुत बहुत ही हैंडसम, मुझसे भी ज्यादा, बहुत बहादुर है, बहुत वफादार है। शील जी, आपने एक काम बड़ा अच्छा किया जो इसे चेन में बांध रखा था, नहीं तो ये तो सचमुच मेरे भाई।
1: राजा, राजा, बी क्वाइट, चुप हो जा मेरे राजा। हाँ तो आपने देख लिया मेरे राजा को?
0: देख तो आया आपके राजा को, पर शील जी मतलब आप मतलब समझ गई ना?
1: समझ तो गई, पर आप मेरे राजा को मुझसे अलग तो नहीं करते?
0: कभी नहीं, कभी नहीं, तुम मेरी महबूबा हो, वो तुम्हारा महबूब सही। खुशी महबूबा की अपनी खुशी बना दूंगा, उनके महबूब के यानी कुत्ते के कदमों पे सर झुका दूंगा।
2: उनके महबूब, अभी आपने विमला रैना की लिखी ये नाटिका सुनी। निर्देशक थे लोचन बख्शी। आकाशवाणी दिल्ली की इस प्रस्तुति के साथ ही आज का हवा महल कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

विविध भारती से प्रस्तुत है नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रलोक। सभी सुनने वालों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। लीजिए सुनिए सलमान खान श्रेया घोषाल की आवाजों में उस गीत को जिसे लिखा है कुमार ने, संगीत है मीत ब्रदर्स अनजान का और फिल्म का नाम है किक।

0: ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
0: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफ

चित्रलोक कार्यक्रम की अगली पेशकश आपको सुनवाते हैं मोहित चौहान, तरन्नुम मलिक और साथियों की आवाजों में। नगमा निगार है कौसर मुनीर, संगीत है सोहिल सेन का और फिल्म का नाम है एक था टाइगर।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: चित्रलोक कार्यक्रम में अब हम लेंगे एक छोटा सा अंतराल। बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। साथियों, आइए सुने शान और श्रेया घोषाल की आवाजों में स्वानंद किरकिरे का लिखा गीत। संगीत है शांतनु मोइत्रा का, फिल्म का नाम है पीके।

कार्यक्रम में आइए सुने अगला गीत अरिजीत सिंह की आवाज में। गीत है AM तुरास का, संगीत है संजय लीला भंसाली का, फिल्म का नाम है पद्मावत। नाम एक बार फिर सुनिए, इस गीत को लिखा है AM तुरास ने।

साथियों, चित्रलोक कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश आपको सुनवाते हैं सिद्धार्थ महादेवन और शिल्पा राव की आवाजों में। गीत को लिखा है समीर अंजान ने और फिल्म का नाम है धूम 3।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था, हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: साथियों, इसके साथ ही कार्यक्रम चित्रलोक अब समाप्त होता है।

0: नमस्कार, संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 कल से लागू होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिक सेवाओं में सुधार के लिए विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड का शुभारंभ किया। दिल्ली, झारखंड, मेघालय, कर्नाटक और महाराष्ट्र में मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया शुरू। मॉनसून के अगले 2 से 3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब की ओर बढ़ने की संभावना। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात टेक्सस में आइवरी कोस्ट का मुकाबला नॉर्वे से। अब समाचार विस्तार से। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 कल से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो जाएगा। इसके राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन की पूर्व संध्या पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक दिन भी बेरोजगार नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध करा दिए गए हैं, कार्यान्वयन प्रणालियां पूरी तरह से तैयार हैं और चल रहे कार्य बिना किसी रुकावट के जारी रहेंगे। श्री चौहान ने कहा कि 125 दिनों के वेतन भोगी रोजगार की बढ़ी हुई गारंटी से ग्रामीण आजीविका मजबूत होगी। ये अधिनियम प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार के लिए वैधानिक वेतन भोगी रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विद्यार्थियों से शिक्षा के माध्यम से समान और समावेशी समाज के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया है। वे आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थी। राष्ट्रपति ने कहा कि विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। उन्होंने
1: जनजातीय विश्वविद्यालय से विशेष रूप से ये अपेक्षा भी की जाती है कि वे जनजातीय भाषा बोलियां के संरक्षण पर मिशन मोड में काम करेंगे। मुझे बताया गया है कि संस्था के ट्राइबल स्टडीज विभाग द्वारा कुई और सावरा समेत अनेक जनजातीय बोलियों के डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के इसी प्रकार से जमीनी कार्य किया जा रहा है।
0: भारतीय रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। रेलवे ने दक्षिण पूर्वी रेलवे में लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से शेष 48 फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने की मंजूरी दी है। इससे देश में रेलवे नेटवर्क की डिजिटल संचार व्यवस्था मजबूत होगी। ये परियोजना दक्षिण पूर्वी रेलवे के 4 प्रमुख डिवीजनों में 1600 किलोमीटर से अधिक मार्ग पर फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। पूर्वी रेलवे के आसनसोल डिवीजन के हाई डेंसिटी नेटवर्क और हाईली यूटिलाइज्ड नेटवर्क मार्गों पर स्थित 27 स्टेशनों या डिब्बों में रिले आधारित इंटरलॉकिंग को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग से बदलने की परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। स्वीकृत कार्य में 28 रिले आधारित इंटरलॉकिंग को अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणालियों से बदला जाएगा। परियोजना की लागत 400 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके अलावा रेलवे ने करीब 500 करोड़ रुपए की लागत से पूर्वी मध्य रेलवे के 44 किलोमीटर से अधिक लंबे मानसी सहरसा खंड के दोहरीकरण को भी स्वीकृति दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम FCRA 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी भारतीय नागरिक यानी EOCI कार्ड सेवा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इन दोनों पहलों से नागरिक सेवाएं बेहतर होंगी और FCRA पोर्टल के माध्यम से विदेशी चंदा प्राप्त करने वाली संस्थाओं को होने वाली कठिनाइयां दूर होंगी। उन्होंने कहा कि सख्त निगरानी व्यवस्था से देश की सुरक्षा और मजबूत होती है। गृह मंत्री ने बताया कि नई ईओसीआई व्यवस्था में पहले की कई समस्याओं का समाधान किया गया है। इससे 50 लाख से अधिक ओसीआई कार्ड धारकों को सुविधा मिलेगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत ने 26 से अधिक देशों के साथ प्रवासन और आवागमन संबंधी 28 साझेदारी समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासन, मानव तस्करी, धोखाधड़ी करने वाले बिचौलियों और शोषण जैसी चुनौतियों से निपटना सभी देशों की साझा जिम्मेदारी है। वे आज नई दिल्ली में मानव संसाधन आवागमन मंच को संबोधित कर रहे थे। विदेश मंत्री ने कहा कि सुरक्षित और कानूनी प्रवासन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता ई माइग्रेट प्लेटफॉर्म से साफ दिखाई देती है।
2: One key pillar which has brought about a transformation.
3: प्रवासन से जुड़े प्रबंधन में बहुत बड़ा बदलाव डिजिटल व्यवस्था और प्रणालियों से आया है। सुरक्षित और कानूनी आवाजाही के प्रति भारत की प्रतिबद्धता ई माइग्रेट प्लेटफॉर्म में दिखती है। इसकी शुरुआत के बाद से ही 50 लाख से ज्यादा लोगों को विदेश जाने की मंजूरी दी जा चुकी है। यह डिजिटल तंत्र लोगों की आवाजाही को आसान बनाने के साथ साथ प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का एक वैश्विक उदाहरण बन गया है।
0: विदेश मंत्री ने आज आयरलैंड की विदेश मंत्री हेलेन मैकेंटे को यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभालने पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि उन्होंने व्यापार और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर भी चर्चा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि मजबूत अर्थव्यवस्था से ही देश की रक्षा क्षमता मजबूत होती है। वे आज गुजरात के वडोदरा में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। रक्षा मंत्री ने कहा कि रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है।
4: 2014 में हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन अप्रोक्सीमेटली 46,000 करोड़ था, लेकिन आज हमारा डिफेंस प्रोडक्शन बढ़कर 1,78,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। इसके अलावा भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट अप्रोक्सीमेटली 39,000 करोड़ का कर लिया है और आत्मनिर्भरता के इस लक्ष्य को प्राप्त करने में गुजरात अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकता है।
0: रक्षा मंत्री ने कहा कि वडोदरा अब देश की निजी क्षेत्र की पहली सैन्य विमान निर्माण इकाई का केंद्र बन गया है। ये टाटा समूह और एयरबस मिलकर C-295 परिवहन विमान बना रहे हैं। जनरल धीरज सेठ ने आज देश के 31वें सेना प्रमुख के रूप में पदभार संभाल लिया है। उन्होंने जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लिया है। जनरल धीरज सेठ पुणे स्थित खड़कवासला की राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र हैं। उन्हें दिसंबर 1986 में बख्तरबंद कोर में कमीशन मिला था। इससे पहले जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 2 वर्षों में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
5: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
0: दिल्ली और 4 राज्यों कर्नाटक, झारखंड, मेघालय तथा महाराष्ट्र में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत दिल्ली में 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक घर घर जाकर सभी मौजूदा मतदाताओं को पूर्व मुद्रित गणना प्रपत्रों की 2 प्रतियां वितरित करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पहले दिन 1,68,200 से अधिक गणना प्रपत्र मतदाताओं को वितरित किए गए। वहीं 7,600 से अधिक गणना प्रपत्रों का डिजिटलीकरण किया गया। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दाखिल की जा सकेंगी। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। मतदाता अपना गणना प्रपत्र ऑनलाइन भी voters.eci.gov.in पर भर सकते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज अपना गणना प्रपत्र जमा किया और राष्ट्रीय राजधानी के सभी पात्र मतदाताओं से मतदाता सूची के चल रहे इस अभियान में भाग लेने की अपील की। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उधर महाराष्ट्र में भी बूथ स्तरीय अधिकारियों ने घर घर जाकर मतदाता रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए सत्यापन अभियान शुरू किया है।
7: ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 5 अगस्त को जारी की जाएगी, जबकि अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। जिन वोटरों का नाम पिछली एसआईआर की मतदाता सूची में शामिल था, उन्हें आमतौर पर कोई नया दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी। बाकी वोटरों को निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 12 दस्तावेजों में से कोई एक जमा करना पड़ सकता है। आयोग का कहना है कि इस अभियान का मकसद ये सुनिश्चित करना है कि जिसका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए उसका नाम जरूर शामिल हो और जो इसके लिए योग्य नहीं है उसका नाम सूची में ना हो। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: उत्तराखंड में मदरसा शिक्षा व्यवस्था में कल से बड़ा बदलाव लागू होगा। नई व्यवस्था के तहत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। अब राज्य के सभी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के तहत संचालित होंगे। नई व्यवस्था के तहत उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को मान्यता देने, उनकी कार्यप्रणाली की निगरानी करने और शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का काम करेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों से बातचीत की। चर्चा दो प्रमुख विषयों पर केंद्रित रही। पहला विषय था व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन में ढील और अन्य सुधार, जबकि दूसरा विषय था आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने समग्र सरकारी दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय अलगाव को तोड़ने के महत्व पर बल दिया। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने जन्मजात नागरिकता को समाप्त करने के उद्देश्य से जारी किए गए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकारी आदेश को रद्द कर दिया है और इस बात की पुष्टि की है कि अमेरिका में जन्म लेने वाले लगभग हर व्यक्ति को स्वतः ही अमेरिकी नागरिकता प्राप्त हो जाती है। न्यायालय ने 6-3 के बहुमत से कार्यकारी आदेश को गैर कानूनी घोषित किया। पश्चिम एशिया संघर्ष को देखते हुए सरकार ने महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर सीमा शुल्क में पूर्ण छूट 15 जुलाई 2026 तक बढ़ा दी है। इससे पहले वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में उत्पन्न व्यवधानों के कारण अस्थायी और लक्षित राहत के रूप में केंद्र ने आज तक पूर्ण सीमा शुल्क में छूट प्रदान की थी। संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान के स्थायी मिशन ने पक्तिया, पक्तिका और कुनार प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। मिशन ने कहा है कि इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित कई अफगान नागरिक मारे गए और घायल हुए। वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था और 55,000 तीर्थयात्रियों के ठहरने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पहले जत्थे को रवाना करेंगे। 3,880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ गुफा की 57 दिनों की तीर्थयात्रा की शुरुआत 3 जुलाई से होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हूल दिवस पर सिद्धो कान्हू, चंद भैरव, फूलो झानो सहित विदेशी शासन के अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने वाले सभी वीर आदिवासी योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की है। हूल दिवस के अवसर पर झारखंड में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2-3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आगे बढ़ने की संभावना है। इस दौरान उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दमनदीव तथा राजस्थान में भी मानसून के आगे बढ़ने की संभावना है। बृहस्पतिवार तक बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, मध्य प्रदेश, केरल, माहे, कोंकण, गोवा, ओडिशा में मूसलाधार बारिश की आशंका है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज आइवरी कोस्ट का सामना नॉर्वे से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 10:30 बजे से अमेरिका के टेक्सास में खेला जाएगा। वहीं देर रात 2:30 बजे फ्रांस और स्वीडन आमने सामने होंगे। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कल से जयपुर में आयोजित किया जाएगा। 2 दिन तक चलने वाला ये सम्मेलन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन पर सचिवों से बातचीत की। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 कल से लागू होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिक सेवाओं में सुधार के लिए विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड का शुभारंभ किया। दिल्ली, झारखंड, मेघालय, कर्नाटक और महाराष्ट्र में मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया शुरू। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: Good evening. This is Akashwani and I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi interacts with secretaries on deregulation for ease of doing business and ease of living. Also discusses promotion of Atmanirbharta. Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Grameen VB G Ramji Act 2025 to come into force from tomorrow. President Draupadi Murmu says students should strive to uplift the weaker sections and contribute to nation building. Railways to launch three projects worth over 1,100 crore rupees to improve communication and operational system. Special intensive revision of electoral rolls begins in Delhi, Jharkhand, Meghalaya, Karnataka and Maharashtra. US Supreme Court strikes down President Trump's order ending birthright citizenship. And in FIFA World Cup, France to take on Sweden in New York while Ivory Coast to clash with Norway in Texas. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today interacted with various secretaries to several ministries at Seva Tirth in New Delhi. The discussion focused on two key themes. The first was deregulation and other reforms for ease of doing business and ease of living, while the second was promoting Atmanirbharta. During the meeting, the Prime Minister stressed the importance of adopting a whole-of-government approach and breaking departmental silos. Highlighting the importance of integrated planning and coordination, Mr. Modi encouraged wider utilization of the PM Gati Shakti as an effective platform for interdepartmental coordination and informed decision-making. He exhorted the secretaries to focus on the tangible impact of schemes on the lives of people. During the interaction, the secretaries outlined the major steps being taken by their ministries and departments in line with the two key themes. The Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Grameen, VB G Ramji Act 2025 will come into force across rural India with effect from tomorrow. On the eve of the nationwide rollout of VB G Ramji Act 2025, Union Minister for Rural Development Shivraj Singh Chauhan said that no eligible rural worker should remain without work even for a single day. Mr. Chauhan said, the government, in close coordination with the states and union territories, has completed all administrative, financial and technical preparations to ensure a seamless transition to the new framework. He added, the enhanced guarantee of 125 days of wage employment will strengthen rural livelihoods, create durable community assets and accelerate the

आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना बेगम। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कारोबार करने और रहन सहन में आसानी को गैर इंज़िबाती बनाने के सिलसिले में सेक्रेटरी साहिबान से बातचीत की है। उन्होंने आत्मनिर्भरता को फरोग देने पर भी तबादला ख्याल किया। रोजगार और आजीविका के लिए विकसित भारत गारंटी मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी एक्ट 2025 कल से नाफिज हो जाएगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने तलबा पर जोर दिया है कि वो कमजोर तबकात की बेहतरी के लिए काम और मुल्क की तामीर में तआवुन करें। रेलवेज मवासलात और अपनी कारकर्दगी के निजाम को बेहतर बनाने के खातिर 1100 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के 3 प्रोजेक्टों का आगाज करेगा। दिल्ली, झारखंड, मेघालय, कर्नाटक और महाराष्ट्र में वोटर फहरिस्तों की खसूसी तफसीली नजरसानी का आगाज हो गया है। अमरीका की सुप्रीम कोर्ट ने सदर ट्रंप के उस हुक्म को मनसूख कर दिया है जिसमें शहरियत के पैदायशी हक को खत्म कर दिया गया था। और फीफा आलमी कप में न्यूयॉर्क में फ्रांस का मुकाबला स्वीडन से और टेक्सास में आइवरी कोस्ट का मुकाबला नॉर्वे से होगा। खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में मुख्तलिफ वजारतों के कई सेक्रेटरी साहिबान से बातचीत की। दो अहम मौजूआत पर तबादला ख्याल किया गया। पहले का ताल्लुक कारोबार करने और रहन सहन में आसानी से मुतालिक गैर इंज़िबाती तरीक़ाकार और दीगर असलाहत से था, जबकि दूसरा आत्मनिर्भरता को फरोग देने से मुतालिक था। मीटिंग के दौरान वज़ीर आज़म ने मजमू हुकूमत के तरीक़ाकार को अख्तियार किए जाने और महकमा जाति सिलसिले को खत्म करने की अहमियत पर जोर दिया। जामे मनसूबाबंदी और तालमेल की अहमियत को उजागर करते हुए उन्होंने बैन महकमा जाति इश्तराक और मालूमात पर मबनी फैसला साजी के लिए पीएम गति शक्ति को एक मौसर प्लेटफॉर्म के तौर पर वसी पैमाने पर इस्तेमाल किए जाने की हौसला अफजाई की। बातचीत के दौरान सेक्रेटरी साहिबान ने इन दो अहम मौजूआत से मुताबकत रखते हुए उनकी वजारतों और महकमों की जानिब से किए गए इकदाम को उजागर किया। विकसित भारत रोजगार की गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी एक्ट 2025 कल से पूरे देही भारत में नाफिजुल अमल हो जाएगा। वीबीजी रामजी एक्ट 2025 के मुल्कीर सतह पर आगाज के मौके पर देही तरक्की के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोई भी अहल देही वर्कर एक दिन के लिए भी काम से महरूम नहीं रहना चाहिए। जनाब चौहान ने कहा कि नए फ्रेमवर्क के बिला रुकावट निफास को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के साथ नजदीकी तालमेल कायम किए हुए है और सभी इंतजामी, माली और तकनीकी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने तलबा पर जोर दिया है कि वो तालीम को एक मसावी और सबकी शमूलियत वाले मुआशरे की तश्कील की खातिर वसीला बनाएं। उन्होंने कहा कि तालीम याफ्ता नौजवानों को न सिर्फ खुद आगे बढ़ने के लिए काम करना चाहिए बल्कि कमजोर तबकात की बेहतरी और मुल्क की तामीर के लिए भी तआवुन करना चाहिए। आज विशाखापट्टनम में आंध्र प्रदेश की मरकजी कबायली यूनिवर्सिटी के पहले जलसे तकसीम असनाद से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने यह बात कही। सदर जमहूरिया ने कहा कि हर तालीम याफ्ता नौजवान को जो पीछे रह गए हैं उन्हें आगे लाने की भरपूर कोशिश करनी चाहिए और 2047 तक एक तरक्की याफ्ता मुल्क के हदफ को हासिल करने के लिए

1 से जीत हासिल करके ब्राजील ने भी प्री क्वार्टर फाइनल के लिए अपनी जगह पक्की कर ली है। आज रात अमरीका के टेक्सास में आइवरी कोस्ट का मुकाबला नॉर्वे से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक 10:30 बजे से खेला जाएगा। एक दूसरे मुकाबले में आज देर रात फ्रांस का मुकाबला स्वीडन से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक 2:30 बजे से खेला जाएगा। और आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कारोबार करने और रहन सहन में आसानी को गैर इंजिबाती बनाने के सिलसिले में सेक्रेटरी साहिबान से बातचीत की है। उन्होंने आत्मनिर्भरता को फरोग देने पर भी तबादले ख्याल किया। रोजगार और आजीविका के लिए विकसित भारत गारंटी मिशन ग्रामीण वीबीजी राम जी एक्ट 2025 कल से नाफिज हो जाएगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने तलबा पर जोर दिया है कि वो कमजोर तबकात की बेहतरी के लिए काम करें और मुल्क की तामीर में ताउन करें। रेलवेज मवासलात और अपनी कारकर्दगी के निजाम को बेहतर बनाने की खातिर 1,100 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के 3 प्रोजेक्टों का आगाज करेगा। दिल्ली, झारखंड, मेघालय, कर्नाटक और महाराष्ट्र में वोटर फहरिस्तों की खसूसी तफसीली नजरसानी का आगाज हो गया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी की संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट हैं वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखिए सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित का मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुँह हाथ धोना है, काम काज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

लेकिन कल्याण जी और आनंद जी की जोड़ी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। इसीलिए आज के इस कार्यक्रम में ज्यादा जिक्र तो कल्याण जी का होगा, लेकिन कुल मिलाकर ये बात कल्याण जी और आनंद जी पर केंद्रित रहेगी। यानी जोड़ी कल्याण जी आनंद जी की बातें होंगी आज के इस प्रोग्राम में।

कल्याण जी भाई दोनों भाइयों में सबसे बड़े हैं। 1929 में उनका जन्म हुआ था, जबकि आनंद जी का जन्म कच्छ में सन 1933 में हुआ था। मजे की बात यह है कि आनंद जी तो बचपन में कच्छ गुजरात में रहे, लेकिन कल्याण जी मुंबई में बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने चले आए। आगे चलकर इनका परिवार मुंबई आ गया। दोनों भाई चाल के अपने घर में, पड़ोसियों के घरों में रेडियो सुना करते थे, क्योंकि रेडियो तब एक लग्जरी हुआ करता था और सबके घरों में रेडियो नहीं होता था। जब घर में ग्रामोफोन आया तो दोनों भाई मिलकर सुरेंद्र, शांता आप्टे, कुंदनलाल सहगल और पंकज मलिक के गीतों को बड़े चाव से सुना करते थे। सन 1954 अचानक कल्याण जी वीरजी शाह शोहरत की ऊंचाई पर पहुंच गए। दरअसल शशधर मुखर्जी की फिल्म नागिन में उन्होंने संगीतकार हेमंत कुमार के निर्देशन में क्ले वॉयलिन पर बीन की आवाज निकाली थी। ये अपने आप में एक करिश्मा था, क्योंकि इससे पहले फिल्म संगीत में जब भी बीन के सुर सुनाई पड़ते थे तो वो असली बीन होते थे, लेकिन इस बार वाद्य बदल गया था और सुर कुछ तरोताजा हो गए थे।

इस गाने के वादक, जी हाँ वादक यानी म्यूजिशियन कल्याण जी को बड़ी प्रसिद्धि मिली। कल्याण जी वीरजी शाह ने बतौर अकेले संगीतकार फिल्म सट्टा बाजार में भी संगीत दिया था। अभी तक आनंद जी उनके साथ नहीं आए थे।

सन 1958 में निर्माता निर्देशक कीकू भाई देसाई ने दोनों भाइयों को सम्राट चंद्रगुप्त नामक फिल्म में बतौर स्वतंत्र जोड़ी पहला मौका दिया। हम आपको बता दें कि कीकू भाई मनमोहन देसाई के पिता थे।

दिलचस्प बात यह है कि मनमोहन देसाई ने सन 1960 में जब छलिया फिल्म बनाई तो भी कल्याण जी आनंद जी को मौका दिया। छलिया का संगीत बड़ा ही लोकप्रिय हुआ।

सन 1964 की बात है। मनोज कुमार फिल्म उपकार बना रहे थे। उनकी इच्छा थी कि इसका संगीत शंकर जयकिशन दें, लेकिन इस जानी मानी जोड़ी के बीच तनाव चल रहा था, इसलिए बात कुछ बनी नहीं। लेकिन जयकिशन ने कल्याण जी आनंद जी के नाम की सिफारिश मनोज कुमार से की।

उपकार वो फिल्म है जिसने कल्याण जी आनंद जी को शंकर जयकिशन के प्रभाव से मुक्त किया। यहाँ से वो संगीत आया जिसमें रिदम का अनूठा पैटर्न था।

सिन्हा ने संगीत के कद्रदान केवल रिदम और अरेंजमेंट को सुनकर कल्याण जी आनंद जी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी का फर्क समझ लेते हैं।

ताशी और बांसुरी और साथ में ग्रुप वायलिन, सब कुछ कल्याण जी आनंद जी के संगीत में अनूठा और निराला है।

कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। ये गाना मेरे छोटे भाई आनंद जी ने कई सालों पहले हिंदी ओजी का लिखा हुआ वो तैयार करके रखा हुआ था। तो मनोज जी नए नए डायरेक्टर हुए थे, उपकार पिक्चर बना रहे थे, तो उनको ये गाना बहुत पसंद आ गया। उन्होंने बोला कि कल्याण जी भाई ये गाना मेरे लिए रख लीजिए, मैं उपकार फिल्म में प्राण जी के पास गाऊंगा। तो हमने सोचा कि ये उनको उस टाइम प्राण जी फिल्मों में गाया नहीं करते थे, तो हमने सोचा कि बिल्कुल नए डायरेक्टर हैं और शायद हमें भी नए कर देंगे। लेकिन मनोज जी ने उपकार फिल्म में वो गाना प्राण जी से इतना अच्छा गवाया और प्राण जी ने भी इतना अच्छा गाया है कि जब अपन फिल्म देखते हैं तो लगता नहीं है कि किसी प्लेबैक सिंगर ने ये गाना गाया होगा। बिल्कुल प्राण जी ऐसी इसी तरह गा रहे हैं कि जैसे वो ही गा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली गाना मन्ना डे जी ने गाया हुआ है।

मुकेश और कल्याण जी आनंद जी की जोड़ी ने कुछ बड़े अद्भुत नगमे दिए हैं। दरअसल शंकर जयकिशन के बाद अगर मुकेश की प्रतिभा को किसी ने पहचाना तो वो कल्याण जी आनंद जी ही थे।

ये ख्वाब हूँ, इस ख्वाब से तू प्यार न कर। आपको शायद मालूम होगा कि ये गाने के लिए हम लोगों को सिने म्यूजिक डायरेक्टर का फर्स्ट टाइम अवार्ड मिला था। और मुझे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि कोई भी गाना मैं जब अनाउंस करता हूँ तो सब लोग चाहते हैं कि इसके साथ कोई हंसी मजाक जरूर होनी चाहिए। तो इसमें तो सही वाक्या होगा हो गया था, वो मैं आपको सुनाता हूँ। क्योंकि मुझे एक दिन एक ये गाना रिकॉर्ड होने के बाद किसी एक लड़की का फोन आया कि भाई हमें आपका मैं तो एक ख्वाब हूँ ये गाना बहुत पसंद आया और मैं चाहूंगी कि आपके मुंह से ये गाना सुनूं। तो हमने उनको म्यूजिक हॉल पे बुला लिया, तो एक दफे सुनाया। उसके बाद फिर वो दो चार दिन के बाद आई कि मुझे हमें ये फिर गाना सुनाइए। तो तीन चार दफे उन्होंने जब हमसे सुना तो मैं उनके सामने देख रहा था। तो बाद में चौथी दफे जब मैंने ये गाना सुनाया तो मैंने ये गाना बोला कि मैं तो एक बाप हूँ, इस बाप से तो प्यार न कर, क्योंकि उसकी निगाहों से लग रहा था कि इसमें और कुछ चक्कर है।

कल्याण जी आनंद जी की जोड़ी ने भारतीय शास्त्रीय संगीत और पाश्चात्य संगीत को मिला दिया। वे प्रगतिशील संगीतकार थे। प्रगतिशील इस मायने में कि उन्होंने संगीत के बने बनाए ढर्रे को तोड़ा, लगातार नए प्रयोग किए, नई ध्वनियां अपने संगीत में पिरोई और बनाया अद्भुत संगीत। ढोल बजा

चाहे उदास नगमा हो या ढमाढम संगीत, कल्याण जी आनंद जी की कोई सानी नहीं। आइए कुछ उदास नगमे सुने जाएं इस संगीतकार जोड़ी के।

0: समझौता।
1: समझौता हमों से कर लो जिंदगी में।
2: समझौता हमों से कर लो जिंदगी में गम भी मिलते हैं। ये गाना मेरे एक डॉक्टर दोस्त हैं, उन्होंने एक दिन मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन दिया। मैं बोला किस बात की कॉन्ग्रेचुलेशन दे रहे हैं आप? बोले भाई आपका मैं गाना लेके गया था और उससे मेरा एक पेशेंट बहुत अच्छा हो गया। बोला गाने से पेशेंट अच्छा हो गया? बोले आपके गाने के कुछ वर्ड्स ऐसे थे कि उसकी लाइफ में कुछ चेंज आ गया। तो अरे सही वाक्य है कि अगर इस गाने को करेक्ट कोई मीनिंग समझे तो जिंदगी की काफी उलझने कम हो जाती है।

आपको ये जानकर अचरज होगा कि कल्याण जी आनंद जी की इस सदाबहार और सुपरहिट जोड़ी को जीवन में केवल एक बार फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सन 1974 में ये फिल्म थी कोरा कागज। कल्याण जी आनंद जी की संगीत यात्रा इतनी लंबी है कि आधे घंटे के सीमित समय में हम सिर्फ ऊपर ऊपर से उनके सफर पर नजर डाल सकते हैं। कुल मिलाकर ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि ये जोड़ी लगातार हिट संगीत देती रही, लगातार लोगों के दिलों पर राज करती रही।

कल्याण जी आनंद जी की ये जोड़ी टूट गई है। टूटना शायद आपको सही शब्द ना लगे, ये जोड़ी एक दूसरे से बिछड़ गई है। आज कल्याण जी नहीं है लेकिन आनंद जी हैं, और है इस जोड़ी का अनूठा संगीत।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी के कल्याण जी पर। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

छाया गीत के श्रोताओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। कभी कभी जिंदगी में कोई चेहरा यूं ही सामने आ जाता है और फिर वो चेहरा एक आदत, एक दुआ, एक धड़कन बन जाता है। उसे देखते ही मन अनायास कह उठता है, तुझे देखा, लगता है तुझे चाहा। और शायद यही तो प्रेम की सच्ची और मासूम परिभाषा होती है। प्रेम को हमेशा शब्दों की जरूरत नहीं होती, कई बार एक नजर, एक मुस्कान और एक अनकही सी चाहत ही दिल की पूरी कहानी कह देती है। किसी को चाहना उसके साथ होने का नाम नहीं, बल्कि उसके ख्याल से ही मन का महक उठना है।

चलो एक ऐसा संसार बुने जहां सिर्फ प्यार की बारिश होती हो, झीलों पर एक हाउस बोट हो जहां गुजर जाए पूरी जिंदगी, जहां सुबह सुबह हाउस बोट की खिड़की पर कोई धर जाए फूलों की टोकरी, एक ऐसा जहां हो जहां सुबह खिले मुस्कानों के साथ, जहां प्यार भरी गुफ्तगू से नरम धूप खिल जाए, जहां सपनीली आंखों से आसमान की ओर देखें तो शाम खुशगवार हो जाए, मुस्कुराएं तो चांद खिल उठे।

जरा सी बात कहनी थी कि प्यार है तुमसे, पर सदी बीत गई, जुबान से शब्द नहीं फूटे, नहीं कह पाए प्यार है तुम्ही से। पलकों की पंखड़ी में ही बंद रही प्यार की पोटली, शायद सच्चे प्यार की यही है परिभाषा। वो प्यार ही क्या जिसका बार बार बखान किया जाए, वो याद ही क्या जिससे प्यार ना हो, वो याद ही क्या जो हर वक्त दिल के करीब ना हो।

दोस्तों, विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। बंद लिफाफे की तरह है सच्चा प्यार, लिफाफा खुलते ही आंखों को दिख जाती है कागज पर लिखी इबारत। मन की किवाड़ का सांकल खटखटाते ही खुद को खबर हो जाती है कि मन प्यार की गिरफ्त में है। प्यार का वही जमाना भला था जब चुपके से होता था प्यार, पलकों के भीतर रेशमी ख्वाब की तरह बंद, छुई मुई की तरह नाजुक होता था प्यार का वो जमाना। जमाना कोई भी हो, प्यार में इंतजार, समर्पण, किसी के लिए मर मिटने की तड़प हमेशा बाकी रहती है। प्यार में इंतजार बड़ा ही मीठा लगता है।

ढलती हुई रात से गुफ्तगु, चांद का सफर जारी है। चांद का मुस्कुराना उस रोज भी कुछ ऐसा ही था जब हुई थी मुलाकात उनसे। तारों की ओढ़नी पहनकर रात निकल पड़ी थी सैर पर। खूबसूरत हो रात, मनमीत हो साथ, तो बस जिंदगी में और क्या चाहिए।

अभी आप सुन रहे थे ICC वुमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के आंखों देखा हाल का प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर। पेशे खिदमत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। आवाज़ की दुनिया के दोस्तों को मोहम्मद फखरुल हसन का नमस्कार।

मजबूर फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आवाज़ें थी मोहम्मद अज़ीज़ और अनुराधा पौडवाल की। गीतकार थे आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। कार्यक्रम की अगली पेशकश है प्रेम प्रतिज्ञा फिल्म से। आवाज़ें हैं आशा भोसले और बप्पी लहरी की। शब्द रचना इंदिवर की है और तर्ज बप्पी लहरी की।

शेषनाग फिल्म से अभी आपने ये गीत सुना। आवाज़ें थी अनुराधा पौडवाल, सुरेश वाडकर और साथियों की, आनंद बख्शी के बोल थे और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था।

कानून अपना अपना फिल्म से भी आपने ये नगमा सुना। आवाज़ें थी आशा भोसले और अमित कुमार की, शब्द रचना इंदिवर की थी और इसकी तर्ज बनाई थी बप्पी लाहिरी ने। और ये है रजनीगंधा कार्यक्रम की आखिरी पेशकश फिल्म कर्ज से। आवाज़ें हैं मोहम्मद रफ़ी और साथियों की, गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

इसी नगमे के साथ ही अब आज का रजनीगंधा कार्यक्रम समाप्त करने की मोहम्मद फखरुल हसन को दीजिए इजाजत। नमस्कार, हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: रही बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने समग्र सरकारी दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय अलगाव को तोड़ने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने अंतर विभागीय समन्वय और सूचित निर्णय लेने के लिए एक प्रभावी मंच के रूप में पीएम गति शक्ति के व्यापक उपयोग को प्रोत्साहित किया। इस दौरान सचिवों ने दो प्रमुख विषयों के अनुरूप अपने मंत्रालयों और विभागों द्वारा उठाए जा रहे प्रमुख कदमों की रूपरेखा प्रस्तुत की। पहला विषय था व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन में ढील तथा अन्य सुधार, जबकि दूसरा विषय था आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी अधिनियम 2025 कल से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो जाएगा। इसके राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन की पूर्व संध्या पर ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक दिन भी बेरोजगार नहीं रहना चाहिए। श्री चौहान ने कहा कि 125 दिनों के वेतन भोगी रोजगार की बढ़ी हुई गारंटी से ग्रामीण आजीविका मजबूत होगी। ये अधिनियम प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार के लिए वैधानिक वेतन भोगी रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विद्यार्थियों से शिक्षा के माध्यम से समान और समावेशी समाज के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया है। वे आज आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थीं। राष्ट्रपति ने कहा कि विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए।
1: जनजातीय विश्वविद्यालय से विशेष रूप से ये अपेक्षा भी की जाती है कि वे जनजातीय भाषा बोलियां के संरक्षण पर मिशन मोड में काम करेंगे। मुझे बताया गया है कि संस्था के ट्राइबल स्टडीज विभाग द्वारा कुई और सावरा समेत अनेक जनजातीय बोलियों के डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के इसी प्रकार से जमीनी कार्य किया जा रहा है।
0: भारतीय रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसके अलावा रेलवे ने करीब 500 करोड़ रुपए की लागत से पूर्वी मध्य रेलवे के 44 किलोमीटर से अधिक लंबे मानसी सहरसा खंड के दोहरीकरण को भी स्वीकृति दे दी है। ये खंड वर्तमान में मानसी साड़ागढ़ मार्ग पर एक सिंगल लाइन कॉरिडोर है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून के अगले 2-3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आगे बढ़ने की संभावना है। इस दौरान उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दमन दीव और राजस्थान में भी मॉनसून के आगे बढ़ने की संभावना है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में टेक्सस में आइवरी कोस्ट का मुकाबला नॉर्वे से हो रहा है। दोनों टीमें 0-0 से बराबरी पर हैं। देर रात नॉकआउट चरण में 2:30 बजे फ्रांस और स्वीडन आमने सामने होंगे। प्रतियोगिता में पराग्वे ने उलटफेर करते हुए जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। मोरक्को और ब्राजील ने भी अंतिम 16 में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Kiran Jha. Prime Minister Narendra Modi today had a telephonic conversation with the Iranian President Dr. Masoud Pezeshkian. During the talks, President Pezeshkian briefed Mr. Modi on the recent developments in West Asia and the way forward. The Prime Minister welcomed the understanding reached and reiterated India's consistent position that all issues must be resolved through dialogue and diplomacy. Mr. Modi reiterated the need for continued efforts to ensure lasting peace and stability in the region and for safeguarding freedom of navigation and commerce. Prime Minister Narendra Modi today interacted with the various secretaries to several ministries at Seva Teerth in New Delhi. The discussion focused on two key themes. The first was deregulation and other reforms for ease of doing business and ease of living, while the second was promoting Atmanirbharta. During the meeting, the Prime Minister stressed the importance of adopting a whole-of-government approach and breaking departmental silos.

आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 मेगा हर्ट्स पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11:10 हुए हैं। संपन्न होती है हमारी आज की सभा। कल प्रातःकालीन सभा में 5:55 पर हम पुनः उपस्थित होंगे अपने कार्यक्रमों के प्रसारण के साथ आपकी सेवा में। तब तक के लिए हमें अनु